0: और वो जो अमृत रूप है तो उसी की अमृतता को लेकर के सारा अशरीर अमृत रूप होता है। कैसे? तो वहां चर्चा की जाती है कि उससे ही एक एक बूंद अमृत का टपकता है। अब ये अमृत शब्द कह दिया तो अमृत क्या है? वो तेजस ही है, वो ज्ञान ही है, और कुछ अमृत नहीं। तो अब जो है वो जब जब उसका एक एक बूंद करके क्रम से आता है और वो क्रम से श्वास के साथ में, वायु के साथ में क्या होता है, नीचे जाता, गले से होता हुआ, और गले से होता हुआ हमारी रीढ़ की जो रज्जू है, हड्डी है, जहां समाप्त होती मूलाधार बोलते हो, वहां तक पहुंचता है। और जब वहां तक पहुंचता है तभी व्यक्ति ज्ञान करने में, इच्छा करने में, क्रिया करने में समर्थ होता, और ये जब तक नहीं होता है तब तक वो क्रिया आदि करने में समर्थ नहीं होता। ये प्रक्रिया है। तो अब जो है ये प्रक्रिया है, लेकिन भगवान शिव की विशेषता क्या है? भगवान शिव की विशेषता क्या है? भगवान शिव की विशेषता, उन्हें ऊर्ध्व रेतस कहा गया। क्या कहा गया? ऊर्ध्व रेतस। इसलिए हम पढ़ते तो हैं, गीता में भी पढ़ते, ऊर्ध्व मूल मद शाख मस्तम प्राहो छन्नांश्य पर्णानी यस्तम वेद सवेदविद। ये सब चर्चा की जाती। तो अब जो है वो ऊर्ध्व रेतस है, तो इसका मतलब क्या कि वह जब आता है तो भगवान उसे क्या करते, गले से ही वापस कर देते, उसको ऊर्ध्व गति दे देते, वो पुनः वहीं का वहीं पहुंच जाते। इसलिए श्रुति क्या कहती, असंगो ही अयम।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Tisra Narak Bataya Kalaha Priya Parivar, जिसके घर में कलह होता है 24 घंटा, पति पत्नी का, बाप बेटा का, बेटी बहन का, हाँ लड़के का, वही पर कलह प्रिय परिवार। कलह होते ना झगड़ा, हाँ बाप का मुंह इधर तो बेटा का मुंह इधर, तो माँ का मुंह इधर, तो बेटी का मुंह इधर है, हाँ कोई किसी की बात मानने के तैयार नहीं। तो हमने देखा खार में कथा करता था, एक करोड़पति के आदमी है, करोड़पति, अरे होटल में खाने के जा रहा है, रास्ता में बोला कहाँ जा रहे, बोले खाना खाने, कहाँ, बोले होटल में, क्यों घर में, बोले महाराज घर में क्या खावे, ऐसा रोना उसको आंसू आ गया, ऐसा किया सुनाया। तो कहने का मतलब ऐसा परिवार भी एक प्रकार का नरक है कि नहीं, सब कुछ होता हुआ भी शांति नहीं है, अशांत जीवन है। ये तीन प्रकार का नरक यहां प्रत्यक्ष आपको देखने में मिलेगा, परंतु इसके बाद वो यमराज के वहां जो नरक है ना, उसके विषय में राजा जनक की कथा में आता है, आप ख्याल करना। राजा जनक जो है ना, एक बार, हर एक जनक नहीं है, जनक भी कई ये पद है, राजा जनक हो सकते हैं ना, जनक विदेहराज, वो विदेह होना एक पद का नाम है, याद रखना। जैसे हमारा शंकर आचार्य परंपरा आएगी नहीं, ये पद है, ये फलाना शंकर आचार्य हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना, ऐसे जनक भी हो गया, फलाना जनक हो गया, फलाना जनक हो गया, फलाना, तो कोई कोई जनक ऐसा है तो उसके जीवन में कुछ गलत काम हो गया था, तो उसको स्वर्ग में जाने का था पर वह नरक के रास्ता में ले जा रहा था जाना। तो नरक के रास्ता में जब गए, पहले बहुत चिल्ला चिल्ला रहा है, नरक जातना से संतुष्ट होकर के कैदी लोग चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ, इतराही इतराही इतराही, राजा जनक ने पूछा क्या मामला है, कहां से लाया? बोले नरक की रास्ता है, इन नारकीय जीवन नारकीय जीव चिल्ला रहे करार रहे। अच्छा, थोड़ा देर बाद में कहा राजा जनक जरा ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। जनक ने पूछा ये अभी क्या बोलता? बोला आपको यहां रुकने के लिए बोलता। क्यों? कहा आपके शरीर से जो है पवन जा रहा है ना, वो पवन से लगने से उनका नरक जाता ना काम हो गया है, शांति मिल रहा है, आप ठहर जाओ बोलते। जनक ने कहा अच्छा तुम लोग चले जाओ, मैं यहां ठहर जाता हूं। बोले कैसे होगा, इतना नरक की रास्ता है। बोले कैसे भी हो, मेरे को रहने पर इतना प्राणियों को यदि शांति मिलती है, मैं यहां नरक में रहूंगा, हमको स्वर्ग में जाने का नहीं है। तो कहने का मतलब प्रमाण दे रहा है शास्त्रकार कि देखो अनिवार्य कि नरक मरने के बाद भी जाना पड़ रहा है, केवल यहां है स्वर्ग नरक ऐसा नहीं समझना, वहां भी है। समझे कि नहीं? तो जीवन में जो है ना बहुत से कल्पना करते हैं ना, महाराज कोष ने स्वर्ग नरक सब कोष यही है, मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक? बेटा देखेगा, जब देखेगा तब तो चिल्लाएगा, कोई आएगा नहीं तेरे को बचाने के लिए। जो चिल्लाते हैं ना, तो इसी बात को लेकर के विक्रमादित्य महाराज जी लिखते हैं विश्वास प्रतिपन्नेशु ये शिव विश्वासघाती नेयंती नरकम घोरम तज्जमान जमानुगही, जमदूत के द्वारा ताड़ित होकर के सब जाएगा। सेतु वंदे समुद्रे सह गंगा सागर संगमे स्नात्वा नरो विमुक्त विश्वघाती न मुच्यते। का सेतु बंध रामेश्वर में गंगा सागर में स्नान करके मनुष्य पाप से मुक्त हो सकता है, परंतु विश्वघाती मुक्त नहीं होगा। ऐसे बहुत से श्लोक है इसके विषय में। तो कहने का मतलब ये जो स्वर्ग नरक आदि है मरने के बाद भी है, केवल यहां है ऐसा नहीं, वहां भी है। कुछ नरक हुआ है, कुछ नरक यहां है, कुछ स्वर्ग यहां है, कुछ स्वर्ग हुआ है। यहां भी स्वर्ग भी है, सुख भी है। स्वर्ग कहते सुख को, तो यहां भी सुख है, वहां भी सुख है, यहां भी नरक है, वहां भी नरक है। सामान्य नरकों का फल तो यहां भोग जाते भोगना भोगने से मिट जाता है, परंतु विशेष नरक का भोग मिटता नहीं, यहां वहां जाना पड़ेगा। वहां जाना पड़ेगा। तो यहां बात बताते क्यों, भगवान कहते हैं गीता में नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन प्रकाशित प्रज्वलित ज्ञान दीप, दीप तो है बुझा हुआ दीप नहीं, एक दीप होता ना बुझी रहती है, बुझ जाती है ना, उसको भी दीपक कहते हो कि नहीं? भगवान कहते हैं नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन। तो कैसा ज्ञान दीप? भास्वता प्रज्वलित। तो ज्ञान रूपी दीप कभी बुझते नहीं, याद रखना। आपको पंचदशी में आपने पढ़ा होगा शब्द स्पर्शाय विद्या वैचित्रा जागरे पिता ततो विभक्ता तत्सम्बित एक रूपा न विद्यते तथात्र सपने। जैसे शब्द स्पर्श रूप और गंध आदि के अंदर क्या है, ये विषय विचित्र है, भिन्न भिन्न है, पर ज्ञान एक है। शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान आनी बात आगे नहीं। शब्द स्पर्शादयो वेद्या, ये सब शब्द स्पर्शाद वेद्या मानी ज्ञान का विषय, परंतु ज्ञान एक ही है। ऐसे अत्र सपने, सपना में भी विषय भिन्न भिन्न है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है कि नहीं? सपना में भिन्न है कि एक है? सपना में भी शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान सब भिन्न है, पर ज्ञान एक है। इसी प्रकार कहते हैं जागृत सपना सुसुप्ति इस जन्म में अगले जन्म में पहले जन्म में इस लोक में सब जगह में ज्ञान एक ही है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न है। ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न है तो विषय भिन्न होने से ज्ञान में भिन्नता नहीं आती है, याद रखना। विषय भिन्न होने पर भी ज्ञान में भिन्नता नहीं आती है। तो ज्ञान कैसा, हमेशा चिद्रूप है, सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद स्वरूप है। तो मैं उनके अंदर रहने वाला जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नाश कर देता हूं। इसीलिए ज्ञान या परमात्मा को अग्नि शब्द से कह दिया गया। परमात्मा कैसा है? अग्नि है। क्या अग्नि है? परमात्मा किसको जलाता है? अविद्या। और अविद्या का कारण आवरण शक्ति, अविद्या आवरण विक्षेप तीनों को जला करके भस्म कर देता। गीता यत्र जस्मिन् पुरुषे मच्छति स्वदेह मरणम कृत्वा इत्यादिना पूर्वोक्त ध्यान निर्मथनेन वायुर्यत्र अभिरुध्यते शब्दम अव्यक्तम करोति रेषकादिकरणा। देखो यत्र जस्मिन् पुरुषे मच्छते है, जिस पुरुष में मथन होता है, मच्छते माने मथन करता है। क्यों? जैसे दूध को मथन किए बिना, दही को मथन किए बिना मक्खन नहीं निकलता, मक्खन को जलाए बिना घी नहीं मिलता है। घी कहाँ से आता है? अरे घी आता है मक्खन से। मक्खन कहाँ से आता है? दही से। दही कहाँ से आता है? दूध से। दूध कहाँ से आता है? गाय से। गाय में दूध कहाँ से आता है? घास से। आने बात, अब हम दूध को मंथन करते हैं कि दही को मंथन करते हैं? दही मंथन करते, दधि मंथन। दधि नहीं वह सर्पी ही। कैसे? जैसे दही में सर्पी माने घी छिपा रहता है, ऐसे तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा हुआ। हाँ, तो कैसे प्रकट करेगा? तो मंथन के द्वारा। इस बात को कल बताया था, कल न परसों। हाँ, दधि मंथन कहते ना, आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम स उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवम पश्ये निगूढ़वत्। हाँ, आत्मानम अरण्यम कृत्वा, आत्मा माने शरीर, समझ लेना। ये जो शरीर है ना, इसको अरण्य बताओ। अरण्य माने दो अरण्य होता है, एक उत्तर अरण्य, एक अध अरण्य। अध माने नीचे का, उत्तर अरण्य माने ऊपर का। तो आत्मानम अरण्यम कृत्वा प्रणवम स उत्तरारण्यम, प्रणव माने ओंकार, ओंकार को उत्तरारण्य मना करके ध्यान निर्मथनाभ्यासत, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा ध्यान करो। तो ध्यान कैसे करे, कहाँ करे, आपको बता दिया था कल। अभी ध्यान करने तुम बैठे हो आंख बंद करके कि आंख खोल करके? आंख बंद करके। आंख बंद करके जो ध्यान करने बैठा तो दुनिया भर की बात याद आएगी। डॉक्टर हो तो फिर लेबोरेटरी की बात याद आ जाएगी, दुकानदार हो तो दुकान का खोलने का समय याद आ जाएगी, पराना हो जाओ भोजन पकाने वाला देर हो गया, अब घर में जाकर भोजन बनानी है, तो बैठे हो ध्यान में याद आ गया किसका? बाहर, बाहर का। तो बैठे बैठे बैठे बैठे चिंतन होता रहता है, तो इसीलिए ध्यान में आंख मत बंद करो कहते। तो क्या अगर आंख खोल लिया, तो आंख खोल करके बैठे, सामने विक्षिप्तता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई दूध वाला आ रहा है, कोई फलाना आ रहा है, तो क्या करोगे? विक्षेप हो रहा है। तो आंख खोलने में भी विक्षेप और बंद करने में। अब क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए? आधा खोल करके आधा खोल लो आधा बंद करो। हाँ तो यहाँ भी चिंता होगी, आधा खोला आधा ऐसे ऐसे करते रहोगे वो भी नहीं होगा। आज ही बात, इसीलिए अभ्यास करो। अभ्यास वैराग्याम का निरोध अभ्यास अभ्यास अभ्यास न तो कौन सी है वैराग्य न सक्रिय थे। अभ्यास और वैराग्य रखो। हाँ बाहर का अभ्यास अंतर वैराग्य क्या करोगे। हाँ बाहर का अभ्यास और भीतर वैराग्य रखोगे तो विशेष चिंतन नहीं होगा। भीतर में तो वैराग्य रखोगे ना संसार के विषय में तो चिंतन नहीं होगा, और बाहर त्याग करने के वैराग्य रखोगे वो भी चिंतन नहीं होगा। क्या चिंतन करने का बाहर के विषय। इसीलिए ध्यान निर्मथनाभ्यास ध्यान रूपे मंथन के द्वारा आत्मा पश्ये निगूढ़। निगूढ़ माने छिपा हुआ। अरे जिस आत्मा को हम ढूंढ रहे हैं बाहर भीतर, वो आत्मा तो यहाँ छिपा हुआ है। हाँ बहुत से आदमी बोलते हैं ना महाराज ईश्वर कहाँ रहता है, बोले ऊपर रहता है। ईश्वर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है कि नहीं। वो आया एक पंजाब की कथा है, पंजाब की कथा। एक बुढ़िया माई है ना, बुढ़िया माई दीपावली के समय खीर बनाई। खीर बना करके खाने के पहले खीर गरम गरम देख करके खाई नहीं, खटिया के नीचे रख करके सो गए। तो इतना में नींद आ गई। वो बुढ़िया माई के दांत नहीं था, उपला हो गया। तो हो सकता जब सो गई अपने में नींद आ गई, तो नींद आने से उसको दोनों होठ जो है ना भीतर बाहर आ गए। देखा बुढ़ा बुढ़िया को सोते हुए देखा क्या, भी नहीं देखा। जब आप बुढ़े हो जाओगे ना तब देख ला, दोनों होठ बाहर भीतर जाएगा। मानी बात। इतना में इसके घर में दो चोर घुस गए। तो दो चोरों ने इधर उधर सामान ढूंढा तो एक ही दृष्टि खीर पर पड़ी। खीर पर जब पड़े कहते भाई देखो बुढ़िया खीर बना रखा है, अच्छा चलो पहले खीर खाया जाएगा, पहले पेट पूजा करो बाद में काम दूजा होगी। चलो तो खीर खाने के लिए तैयार किया। इतना में बुढ़िया का एक हाथ बना खटिया के नीचे ऐसे पड़ा था। हाँ तो दूसरा ने कहा देख बुढ़िया ने बड़ा मेहनत से खीर बनाई होगी, वो आपने हाथ फैला करके रखा, वो उसके हाथ में थोड़ा खीर डालो और मुंह खुला रखा है, मुंह में थोड़ा खीर डाल दो खा लीजिए। वो खीर गर्म थी, अभी ठंडा नहीं हुई थी, ठंडी नहीं हुई थी, तो मुंह में डाल दिया तो जग गई। मर गई रे मर गई, मर गई रे मर गई, चारों तरफ से हल्ला हो गई। तो सायंकाल का समय था, तो अगल बगल में रहने वाला वो आ गया। क्या हुआ माई, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे मर गए, सांप काटा है बिच्छू काटा है, क्या हुआ। बोले देख बेटा किसी ने मेरे को मुंह में गरम गरम खीर डाल दिया, मेरा मुंह जल गया। अरे खीर तो यहाँ पड़ी है। वो दोनों चोर जो था ना, एक वो धान वान रखने वाला ऊपर होता है ना उसमें छिप गया, एक नीचे कहीं छिप गए। अब दोनों सब डांटने लगा, अरे सायंकाल का समय है यहाँ कौन आएगा वाला, हम लोग बाहर बैठे हैं। बोले बेटा आया कोई आया होगा। बोले नहीं आया, तू ऐसे चिल्ला सपना आया होगा, सपना में देखा होगा मेरा खीर खा गई कोई। बोले नहीं बेटा, डांटने के बाद में वो हाथ उठा करके ऊपर की तरफ करके बोलती है बेटा मैं जब झूठ बोलूं ऊपर वाला जाने। तो ऊपर में जो चोर छिप गया था ना उसने सोचा बुढ़िया ने मेरे को देख लिया, अरे मैया ऊपर वाला नहीं जानता नीचे वाला भी जानता है, नीचे वाला भी जानता है। तो ऐसे ही समझ लेना, हम लोग को कोई बात हो जाएगा ना तो क्या बोलते हैं, तुरंत बोलते ऊपर वाला जानते हैं। हमने तो झूठ बोले ना, तू ऊपर वाला जानते हैं। हमने धोखा दिया तो फिर अलग, अरे तेरे भीतर बैठा हुआ वो भी तो जानते हैं, तेरे भीतर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जानता है। तो हम लोग कहते हैं ऊपर वाला जानते हैं, हम तो झूठ बोले। तो परमात्मा ऊपर रहते ऐसी बात नहीं है, वो व्यापक है। हाँ बिगु है। तो देखो, तो मंथन करोगे तब जा करके ध्यान निर्मथनाभ्यास देवम पश्येत निगूढ़ अवत, देवता का साक्षात्कार करो। जो परमात्मा को जिसको तुम बाहर ढूंढ रही हो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित अहम आदेश मध्यम स भूताना अमंत है बस। ये गीता में भगवान ने बता दिया। अन्य बात, मैं ही आत्मा रूप में सबके समस्त प्राणियों के भीतर बैठा हूं। अहम आत्मा, हे गुड़ाकेश अर्जुन, मैं आत्मा सर्वभूताशय स्थित, समस्त भूतों के आश्रय अंतकरण में स्थित हूं। तो परमात्मा को देखने का होगा तो क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। तो मंथन कहाँ करोगे, अंतरात्मा, अंतरात्मा ये बता रहे हैं। स्वदेह मरणिम कृत्वा इत्यादिना, माने स्वदेह मरणिम कृत्वा प्राणवंश उत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यास देवम पैसे निगूढ़ भक्त, ये पूरा श्लोक है। पूर्वोक्त ध्यान निर्मथन वायुर्जत्र अधिरुध्यते, जहां वायु अधिरुध्यते रुक जाती है, जहां अधो वायु और पूरक रेशक समझ लेना, पूरक का रेशक, पूरक वायु रेशक वायु, पूरक माने भीतर पूरा करने वाला, रेशक माने बाहर करने वाला। तो तीसरा होता है जहां वायु अवरुद्धते अधो गच्छते ही और ऊर्ध्वम गच्छते ही, ऊपर जाना नीचे जाना, ऐसे एक सीमा है जहां से वायु अधो वायु ऊपर नहीं जाता है और ऊपर का वायु नीचे नहीं जाता है। मध्य वामनम आसीनम, मध्य में वामन भगवान रहता है, उस वामन भगवान में तुम अपने चित्त को लगाओ। वामन समझ में है ना, कश्यप ऋषि का बेटा वामन है ना, बलि की सभा में गए थे कि नहीं, वामन को बलि चढ़ाया, जब तक बलि नहीं चढ़ाओगे है ना, उपहार नहीं चढ़ाओगे तो वामन भगत भगवान जो है ना वामन ही रहेगा। त्रिपदा परिमिता भूमि है कि मलबन है ऐसा, भगवान वामन जो है बलि से तीन कदम जमीन मांगा था। ये तीन कदम क्या से जाए, ये तीन कदम से परे भवन भगवान आए। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्था, ये तीन अवस्था से परे को ना तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था को यहाँ वामन भगवान कहते। तुरीय स्वरूप जो है ना तुम्हारा, वही भगवान वामन है, तुरीय स्वरूप। अन्य विश्व तेजस प्राज्ञ भर तुरी ब्रह्म, ऐसे जो वामन भगवान है वो वामन भगवान मध्य में रहता है। मध्य वामनम आसीनम, मध्य में वामन रहता है। कुंभक करो, रेशक पूरक और कुंभक करके परमात्मा को देखो। हरिओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

त्वावायवो वायवस्त्वा त्वावायवः वायवस्थस्थ वायवो वायवस्थ स्थोपायव उपायवस्थस्थोपायवः उपायवस्थस्थोपायव उपायवस्थ उपायव इत्युपायवः स्थदेवो देवस्थस्थदेवः देवो वो वो देवो देवो वः वत्सविता सविता वो वत्सविता सविता प्रप्रसविता सविता प्रार्पयत्वर्पयतु प्रप्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आप्यायध्वम् प्यायध्वमाप्यायध्वम्

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Jnana Kriye Sive Nikyat Sankrante Sarvajantusu. अब ये केवल मनुष्य की बात नहीं कर लेना, सर्व जंतुषु, अब छोटी सी मुंगिया चींटी है ना, लाल चींटी को मुंगी कहते हैं ना गुजरात में, क्या कहते हो है, कीड़ी कीड़ी है, लाल चींटी छोटी सी है, उसमें भी ये मीठा है, ये मीठा इतर है, इसमें मीठापना नहीं है, ये ज्ञान जानने की क्षमता शिव से जुड़ने के कारण ही आई है। चींटी में क्या ज्ञान शक्ति नहीं है? ये हमारे बिरादरी के हैं, उनकी एक भूल एक झुंड होता है, ये हमारे जाति के हैं, सूंघ लेते हैं तो पहचान लेते हैं हमारे ग्रुप का है चींटियां, और ये रास्ता सीधा हमारा चलने का है तो सूंघते हुए चलते हैं, इसलिए वो भटकती नहीं है, ठीक अपने, और ये हमारे खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ नहीं है। कहते हैं ना कि गोबर के ढेले के ऊपर एक चीनी का ढेला रख दो छोटा सा कण, तो लाल चींटी पूरे गोबर के पहाड़ को चढ़ते हुए उसी चीनी के कण पर पहुंचकर उसको ग्रहण करती है। और गोबरेला कीड़ा जो है वो चीनी के ढेर के ऊपर थोड़ा गोबर रख दो तो पूरे चीनी के ढेर को चढ़ते हुए ऊपर गोबर, क्योंकि गोबरेली को ये पता है कि मेरा खाने का पदार्थ सबसे ऊपर है, तो वो उसी को खोजता है। चीनी खाकर संतुष्ट नहीं होगा गोबरेला, गोबर का कीड़ा, और चींटी गोबर खाकर संतुष्ट नहीं होगी, मेरा खाद्य ये है। तो अपने अपने स्वभाव अनुसार अपना अपने खाद्य पदार्थों को जानने की और खोजने की ये ज्ञान शक्ति, और खोज कर ग्रहण करके लाने की ये क्रिया शक्ति। आपको आश्चर्य होगा, चींटी से 10 गुना बड़ा कोई कीड़ा मरा हुआ उसको मिल जाए, वो चींटी उसको खींचते ले आती है, अपने शरीर से 10 गुना बड़ा है उसका शरीर, मरा हुआ कहीं मिल गया उसको खींच कर ले आती है। वो खींचने की क्षमता कहां से आ गई उस चींटी में? वो शिव के साथ जुड़े बिना वो क्रिया शक्ति नहीं आ सकती है, इसलिए वो चींटी भी शिव से जुड़ी हुई है। यानी शिव से जुड़ी हुई है का मतलब है शिव ही है, ये तो वेदांत की दृष्टि है, क्योंकि क्रिया शक्ति शिव के बाहर और कहीं नहीं रहता है। और ये मेरा खाद्य है जानने की क्षमता ज्ञान शक्ति कहां से आ गई उसको? शिव से भी नहीं कहना चाहेंगे वेदांती, तो वो शिव ही है, वो अपने ज्ञान अपने उपाधि के अनुसार प्रयोग कर रही है। फिर ज्ञान में क्रिया में क्षमता में ये अंतर क्यों आया? तो ये अंतर आने में उपाधि का भेद है, उपाधि की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे पावर हाउस से मीटर बॉक्स से बिजली एक ही आपके घर में प्रवाहित है, अलग अलग बिजली तो है नहीं, एक ही पावर हाउस से एक ही सब स्टेशन से एक ही लाइन से आपके मीटर बॉक्स में आया है, और उसी लाइन से आपके अलग अलग कमरों में कनेक्शन के रूप में विभक्त किया हुआ है। और मल्टी प्लग जो एक आपने रखी है, एक्सटेंशन मल्टी प्लग रखी है आपने, उसी में दो प्लग है, एक प्लग में हीटर का पॉइंट लगा दो और दूसरे प्लग में रेफ्रिजरेटर का पॉइंट लगा दो, प्लग लगा दो, मत समझिए कि मल्टीप्लग तो एक ही है, मल्टीप्लग एक ही होने के कारण दो पॉइंट है वहां, एक में हीटर का पॉइंट प्लग जोड़ दो और एक में रेफ्रिजरेटर का। अब रेफ्रिजरेटर गर्म करेगा कि ठंडा? वो पानी एकदम ठंडा करेगा वो, और हीटर गर्म करेगा। ये विरोधाभास जो आपको प्रतीत हो रहा है, ये विरोधाभास होने में, विपरीत भावास होने में, वह यंत्र की कैपेसिटी, यंत्र की योग्यता है, क्षमता है कि उसी बिजली के माध्यम से वह यंत्र गर्म और उसी बिजली के माध्यम से वह यंत्र ठंडा करता है। तो बिजली न ठंडी है न गर्म है, बिजली गर्म भी नहीं करती है और बिजली ठंडा भी नहीं करती है। ठंडा करना और गर्म करना ये बिजली की योग्यता नहीं है। ठंडा करने का यंत्र है तो वह ठंडा उसी बिजली के माध्यम से ठंडा, गर्म करने का यंत्र है तो उसी बिजली के माध्यम से वो गर्म। तो यंत्र पर निर्भर करता है, आप जिस उपाधि को लेकर बैठे हो वही यंत्र है ना। आपका जो यंत्र है, आपके तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, आपका जो यंत्र है पावर तो वही है, आपका जो यंत्र है उस यंत्र में गर्भाधारण करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। और आपकी जो यंत्र है वो गर्भाधान करने की योग्यता का है तो आप गर्भाधान करके बच्चा पैदा करते हो। परंतु गर्भाधान करने की क्षमता होने में भी वही शक्ति आप में संचार है, गर्भाधान करने की क्षमता न होने में भी वही शक्ति, वही चेतनता आपके यंत्रों में प्रवेश कर रही है। समझ गया कि नहीं? ये क्या है, यंत्र है, ये दो यंत्र है, एक बच्चा जन्म देने की क्षमता वाला यंत्र, एक बच्चा जन्म देने की क्षमता बिना का यंत्र। तो इस यंत्र में प्रवाह संचार हुआ हुआ चेतना, क्योंकि चेतना नहीं है इसलिए बच्चा नहीं पैदा कर रहा, ये अर्थ नहीं कर लेना। यंत्र की कैपेसिटी नहीं है इसीलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और यहां यंत्र की कैपेसिटी है तो वो काम हो रहा है। चेतना दोनों ही एक ही, जैसे मल्टीप्लॉक में पावर दोनों प्लॉक पॉइंट में एक ही है, एक पॉइंट में फ्रीज का प्लॉक लगा दिया तो पानी ठंडा करती है और दूसरे पॉइंट में हीटर का प्लॉक लगा दिया तो वह गर्म होने लग जाता है। तो गर्म करना और ठंडा करना बिजली का काम नहीं, गर्म करना और ठंडा करना यंत्रों का काम है। इसी प्रकार के आपके यंत्र में वह कैपेसिटी है कि चींटी से ज्यादा जान सकते हैं और चींटी से ज्यादा कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? आपके यंत्र की वो विशेषता है, लेकिन वो ज्ञान और क्रिया तो उसी परमात्मा का है। इसी तरह चींटी में जो ज्ञान क्रिया है उसका यंत्र छोटा है, यंत्र की कैपेसिटी अलग है, लेकिन ज्ञान और क्रिया तो उसी परमात्मा का। चींटी भी उसी शिव से जुड़ी हुई है तब कुछ कर सकती और जान सकती है, आप भी उसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं और कुछ जान सकते हैं। ये अल्पज्ञता, अल्पक्रियाता ये आपके स्वरूप में नहीं है, आपके यंत्र पर है। यंत्र, यंत्र माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का निर्भर करता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर निर्भर करता है। अयं घटो अयं पट इत्येवन्नाना प्रतीतिषु अर्क प्रभेव स्वज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते। व्यवहार में आप ये कहते हो ये माला है, ये पेपरवेट है, ये कागज है, ये पुस्तक है, लाउड स्पीकर है, ये आप अलग अलग जानते हो कि नहीं? ये अयं घट अयं पट इति एवं नाना प्रतीत तिशु, संसार में जीव भी जितने भी पदार्थों की प्रतीति आपको होती है वह ठीक अर्क के प्रभाव यानी सूर्य के प्रकाश की तरह आप परमात्मा का ज्ञान ही आपकी प्रतीति का कारण बनकर विषयों को प्रतीत कराती रहती है। जैसे ये पेपर वेट, ये माला, ये कागज, ये सबको प्रकाशित करने वाले बत्ती एक ही है, एक ही बत्ती सबको प्रकाशित कर रही है। इसी तरह एक ही शिव का ज्ञान और ज्ञान प्रकाश ही आप में रहकर वो अयम अयम अयम घटा अयम पटादि व्यवहार का कारण बन रहा है। वो शिव से अलग होता तो फिर ये क्षमता तुम्हारे में ना आती है। ज्ञानम चित स्वयं सिद्धं जगत अंधत्वमतो भवेत। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये शिव से जीव में नहीं आया है, ये सांख्यों का कहना है, विशेष करके सांख्य दर्शन की मान्यता है। जीव में जो ज्ञान शक्ति है और जीव में जो क्रिया शक्ति करने की शक्ति है वह शिव यानी परमात्मा से जुड़कर नहीं आया है, प्रकृति से जुड़कर आया है। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग माने सीधा सांख्य दर्शन ही मानता है, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण विद्यमान है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में ज्ञानता है और ये गीता में इसका सपोर्ट कर दिया है, गुणत्र विभाग योग चतुर्दश अध्याय में सत्वात् संजायते ज्ञानम, वहां बता दिया कि नहीं। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से ज्ञान की सिद्धि होती है। तो सांख्य क्या कहना चाह रहे हैं, जीव में जो ज्ञान क्षमता है, अयम घट अयम पट ये जानने की क्षमता है, वह परमात्मा से जुड़ने के कारण नहीं अपितु प्रकृति से जुड़ने के कारण है। और ये जीव में जो ज्ञान शक्ति है प्रकृति के सत्वगुण के चलते है, क्योंकि तुम्हारे जो स्थूल शरीर, तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि अंतकरण है वह वेदांत के प्रक्रिया के अनुसार भी समष्टि सत्वगुण का कार्य है। अब ध्यान देना, वेदांत की प्रक्रिया में बता रहा हूं, वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत अंतकरण की उत्पत्ति का कारण क्या है, अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि सत्वगुण से अंतकरण बनता है। व्यष्टि सत्वगुण से पांच ज्ञान इंद्रिय बनते हैं, ये वेदांत की प्रक्रिया है, और बुद्धि अंतकरण और ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जानने की क्षमता आती है कि नहीं बोलो। ये माला है जो किसके द्वारा देखा तुमने, आंख के द्वारा ना, और ये आंख बनी किसके द्वारा, तो सांख्य कहते हैं कि सत्वगुण, व्यष्टि सत्वगुण आंख, समष्टि सत्वगुण मन, और मन और आंख का दोनों का संबंध हो जाएगा तभी जाकर विषय का ज्ञान होगा। मन अन्यत्र हो और आंख अन्यत्र हो तो आंख खुले होने पर भी विषय का प्रकाशन करने में समर्थन नहीं है, ये आपके अनुभव में भी आ रहा है। कान जो शब्द सुन रहे हैं ये सुनने की क्षमता, ये कान श्रोत्री इंद्रिय, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, शब्द को जानने की क्षमता वाली इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। ये ज्ञान इंद्रियां यानी श्रोत्र इंद्रिय बनी किस कारण से, आकाश में विद्यमान जो सत्वगुण है उसके द्वारा श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है, ये वेदांत की प्रक्रिया भी यही है। और अंतकरण उस श्रोत्र इंद्रिय के साथ संबंध हो, अंतकरण समष्टि सत्वगुण से और श्रोत्र इंद्रिय व्यष्टि सत्वगुण से, समष्टि सत्वगुण से बना हुआ अंतकरण व्यष्टि सत्वगुण से बना हुआ श्रोत्र इंद्रिय, दोनों का संबंध हो गया तो फिर शब्द सुनने में समर्थ हो गया। अन्यथा क्या होता है, कान खुला ही रहता है, बोलने वाला बोलता रहता है, वो समझता नहीं, ए ध्यान दे के सुन कहना पड़ता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, श्रोत्र इंद्रिय यहां होते हुए भी मन के अंतकरण के साथ कनेक्शन न होने के कारण वह शब्द को नहीं जान पा रहा है। शब्द के अर्थ को जानने के लिए अंतकरण और श्रोत्र इंद्रिय का संबंध होना चाहिए, और यह अंतकरण और श्रोत्र इंद्रिय यह प्रकृति के सत्वगुण का कार्य समष्टि और व्यष्टि अपंचीकृत भूतों से बने हुए हैं। तो जीवात्माओं में जानने की जो क्षमता है वह शिव से एक होने के कारण नहीं, प्रकृति से एक होने के कारण है। सत्वगुण ज्ञान दाता है, ज्ञान का उत्पादक है, सत्व प्रकाशक है, अतः ये जानने की जो क्षमता है वह प्रकृति से जुड़ने पर ये जानने की क्षमता जीव में आ जाती है। ये परमेश्वर से जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन, पूर्व पक्ष सांख्य दर्शन। इसी तरह जीवात्मा में कुछ कर्म करने की जो क्षमता है, क्रिया शक्ति, ये परमात्मा से जुड़ने के कारण करने की शक्ति आई है, ये बात नहीं है। क्यों नहीं महाराज? फिर कहां से आई? बोले वही प्रकृति में जो तीन गुण है, दूसरा गुण है रजोगुण। रजक क्रियात्मक है, गीता में स्पष्ट कहा है, रज चंचल है, क्रियात्मक है। अतः ये कर्म करने की क्षमता वाले इंद्रियां, क्रियाशक्ति प्रदान हाथ, क्रियाशक्ति प्रदान वाणी, क्रियाशक्ति प्रदान पायु, क्रियाशक्ति प्रदान उपस्थ, क्रियाशक्ति प्रदान पाद है, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं कि नहीं? वेदांती क्या मानता है? इन पांच कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति किससे मानता है? व्यष्टि रजोगुण से। और पंच प्राणों की उत्पत्ति किससे मानता है? व्यष्टि समष्टि रजोगुण से। और प्राण और क्रिया का संबंध होते ही, कर्म इंद्रियों का संबंध होते ही व्यक्ति काम करने लग जाता है। कर्म इंद्रियां हैं, प्राण का संचार रुक जाए तो कर्म नहीं कर सकता है। पैरालिसिस हो गया हाथ में, तो पानी इंद्रिय तो ही है लेकिन वो प्राण का संचार रुक गया। प्राणन जो क्रिया शक्ति का संचार है वो रुक गया, रुक गया तो फिर हाथ काम नहीं कर सकते। तो वह प्राण और कर्म इंद्रिया, ये दोनों समष्टि और व्यष्टि रजोगुण से बने हुए होने के कारण जीव में जो कुछ करने की क्षमता है वह प्रकृति के रजोगुण से जुड़ने के कारण आया है। परमात्मा से जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अपना ही तर्क है। और सुषुप्ति अवस्था में न करने की क्षमता रहती है न जानने की क्षमता रहती है, तो मूढ़ता की जो अवस्था है वो कहां से आई? तो बोले वो तमोगुण के चलते है मूढ़ता का अवस्था है। तमो आवरणकम मोहात्मकम आवरणकम, गीता में स्पष्ट गुणत्रय विभाग में ये बात आ गई है, ये सांख्य सिद्धांत है। ज्ञानम न चेत स्वयं सिद्धं जगत अंधतमो भवे। यदि परमात्मा में ज्ञान स्वरूपता स्वयं न होता तब जगत सब के सब अंधा हो जाता है, कुछ भी करने की कुछ भी जानने की क्षमता न होती। तो ये जो ज्ञान पना है वो परमात्मा से ही है। हम ये कहते हैं कि प्रकृति के सत्वगुण से कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, रजोगुण से कर्म इंद्रियां बनती हैं। ये नियम को जानकर बनाया किसी ने कि बिना जाने बनाया? अपने आप हो गए? किसने जाना, किसने जाना? तो ये स्वयं वो परमात्मा जो कि प्रकृति से संबंध रखे बिना जानने वाला परमात्मा है, इसलिए उसने अपने स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा ये नियम बनाया और उस नियम के अनुसार ये काम हुए। तो इस बात को कोई भी अपलाप नहीं कर सकता है, वेदांत तो उसका खंडन करता है। न चेद अस्य क्रिया का चेद व्यवहार कथम भवेत। यदि ऐसा न होता, यह अन्वय व्यतिरेक है। यद सत्य तत् सत्यम, यद अभावावे तद अभाव। ज्ञान क्रिया परमात्मा में होने पर ही परमात्मा से जुड़े हुए जीवात्मा में ज्ञान क्रियता है, और यदि ज्ञान क्रियता परमात्मा में न होते तो परमात्मा से जुड़ने पर भी जीवात्मा में ज्ञान क्रिया न होती। अब दूसरी बात है, ज्ञान क्रिया तो तुम्हारे हिसाब से प्रकृति से जुड़ने पर हो जाएगा, तुम कह रहे हो। तुम्हारे हिसाब से तो प्रकृति में सत्वगुण से ज्ञानता, रजोगुण से क्रियता, ये प्रकृति से जुड़ने पर जीवात्मा में आ जाएगा कहते हो। अब रही बात जीवात्मा में जो चेतनता है किससे जुड़कर आने का आएगा, उसका उत्तर दो हमको। चेतना ये किससे जुड़कर आएगा भाई? प्रकृति स्वयं स्वरूपतः, तुम भी जड़ मानते हो हम भी जड़ मानते हैं, प्रकृति को तो सांख्य भी जड़ मानता है, वेदांत भी जड़ मानते हैं। तब जड़ होते हुए भी रजोगुण के चलते क्रियाता और तमो सत्वगुण के चलते ज्ञानता प्रकृति में मानता है। सांख्य वेदांत ज्ञानता और क्रियाता और चेतनता ये तीनों परमात्मा में मानता है, प्रकृति में नहीं मानता। सांख्य परमात्मा में यानी आत्मा में केवल चेतना मानता है, आत्मा में केवल चेतना मानता है, ज्ञान क्षमता और क्रिया क्षमता नहीं मानता, चेतना मानता है। और वेदांत चेतना के साथ साथ ज्ञान और क्रिया दोनों को भी मानता है। तब वेदांति ने यह प्रश्न किया, तुम कह रहे हो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रकृति से जुड़ जाने पर आ जाएगा, लेकिन जीव में जो चेतना शक्ति है वो किससे जुड़कर आया? प्रकृति से जुड़कर चेतना आएगा? प्रकृति में चेतना ही नहीं है तो जुड़कर कहां से आएगा? फिर कहां से आया? तो बोले वो तो फिर आत्मा से जुड़कर आएगा। तो यही तो बात है, जब आत्मा से जुड़कर ही जीव में चेतना आती है तब उसी आत्मा से जुड़कर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति भी आ जाएगी। आत्मा से अलग जीव को मानना ये मूर्खता है। उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्योपाश्रया क्रिया करोति गच्छत्युन्मार्ष्टि चिनत्तीति प्रतीयते। जो जीव में सब शिवो ब्रह्मादि देहेषु, अंत में इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत जितने भी देह हैं शरीर हैं, सारे शरीरों में उसके बीच में आप और हम भी आ गए हैं। ब्रह्मा का शरीर और चीटी के शरीर के बीच में हम भी आ गए हैं, हैं? ब्रह्मादि देहेषु शिवो ब्रह्मादि देहेषु सर्वज्ञ इति भासते देवतिर्यं मनुष्येषु किंचित ग्यस्त तारतम्यता। वही शिव ब्रह्मादि देह में वो सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होता है, और वही शिव मनुष्य चींटी आदि अन्य इतर देहों में अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत होता है। अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत होना और सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होने में वह ब्रह्मा का शरीर और हम लोगों के शरीर के कारण सर्वज्ञ और अल्पज्ञ की है। वास्तव में शिव न सर्वज्ञ है न अल्पज्ञ है, शिव केवल शिव है, कल्याण रूप है, चैतन्य रूप है। जैसे हमने पहले कहा था, बिजली न ठंडा करती है न गर्म है, बिजली जैसा है वैसा है, यंत्रों की कैपेसिटी है। इसी तरह सर्वज्ञ उपाधि ब्रह्मा की उपाधि वो शुद्ध है, परिष्कृत है और बड़ी है, इसीलिए वो सर्वज्ञ हो गए उसमें जाने पर। और चीटी की उपाधि छोटी है, स्थूल है, इसलिए उसमें अल्पज्ञ हो गया। शिव ही ब्रह्मादि देह में सर्वज्ञ और अन्य देहों में अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत हो रहा है। उपाधि उसी को कहते हैं, जरायुजो अंडजश्चैव स्वेदज उद्भिदद्विदः ये ते चतुर्विदा पूर्व कर्म स्वन्योनुवृत्तयः। जीवों का ही ये चार भेद हैं, उद्भिज्य जरायुज अंडज और पिंडज, ये कर्म के अनुसार इनका शरीर आदि ग्रहण होता है और शरीर के निर्माण में कर्म हेतु हैं, परंतु उन सभी में एक ही शिवा अहम अहम के रूप में स्फुरित हो रहा है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता स्वप्न कल्पैव कल्पना साक्षात्कृते अनवच्छिन्न प्रकाशे परमात्मनि। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्वप्न कल्पैव कल्पना, अनेक कल्प युग कल्पों की कल्पना, जैसे स्वप्न के अंतर्गत भी अनेक युगों की कल्पना होती है, उसी तरह जागृत भी उसी तरह है। इससे भिन्न अन्यथा नहीं लेना, और यहां ईश्वर गुरु और आत्मा को एक माना गया है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ईश्वर कहो, जीव कहो, गुरु कहो, ये तीनों की उपाधि अलग अलग होने पर भी चेतन तत्व मूल तत्व एक ही शिव है। शिव ही ईश्वर होकर सर्वशक्तिमान हुआ, शिव ही गुरु होकर ज्ञानदाता बना, और शिव ही जीव होकर श्रोता बना, ज्ञान ग्रहण करता बना। ये उपाधियों का भेद है, तत्वों का भेद नहीं। ये प्रथम श्लोक मानस उल्लास का, ये दक्षिणामूर्ति के प्रथम श्लोक का ये समापन हो गया। कल से दूसरा श्लोक, आगे के श्लोक को अब हम झड़प से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय।
0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunalai Povar Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Nandanar था। इनका और एक नाम यह तिरुनालई पोवार। तमिलनाडु के चोल प्रदेश में आधुनिक तंजावुर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है मेरकानाड। यहाँ एक समृद्ध गांव आदनों के बाहरी में झुग्गी झोपड़ियों के सहित छोटे जात वाले रहते थे। इसी इन्हीं में से एक परिवार में जन्म हुआ नंदनाथ का। इस जाति के लोग खेतों में मजदूरी करके अपना निर्वाह करते थे। इन्हें अत्यंत छोटे जात वाले माना जाता था, क्योंकि ये जीव जंतु के खाल उतारकर चमड़ा तैयार किया करते थे। जब इस बस्ती के लोग तोड़ी पीकर नशे में ढोल बजाकर नाचते थे, उस समय नंदनाथ अर्धचंद्रधारी उमापति शिव के ध्यान में तन्मय रहते थे। सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर वे धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते थे। मंदिर के अनुष्ठानों के लिए उपयोग में आने वाले मुरज, ढोल, मृदंग आदि बनाने के लिए आवश्यक चमड़ा और वीणा के लिए आवश्यक पशुओं की नसें आदि तैयार करने में वे विशेष आनंद का अनुभव करते थे। नंदनाथ का नियम था कि वे मंदिर के बाहर ही खड़े होकर भावमग्न हृदय से शिव का दर्शन किया करते थे। एक बार वे तिरुपुन्नकूर गए। भगवान के वाहन नंदी विग्रह के सामने खड़े रहते थे, अतः प्रभु दर्शन नहीं हो पा रहा था। चूंकि नंदनाथ मंदिर के बाहर खड़े थे और शिव का दर्शन करना चाहते थे, तब नंदी सामने उनके थे, इसलिए वो शिव की प्रतिमा को नहीं देख पा रहे। जनश्रुति है कि भगवान शिव ने नंदी को जरा हटने के लिए कहा ताकि भक्त को दर्शन प्राप्त हो सके। तिरुपुन्नकूर के मंदिर में आज भी नंदी उसी स्थिति में है। वह भगवान के सीधे न होकर थोड़ा समीप में है। नंदनाथ की प्रबल कामना थी कि वे एक बार तिरुलई चिदंबरम जाकर भगवान नटराज के दर्शन करें, परंतु अपने नीचे कुल का विचार कर उन्हें ऐसा करने से वर्जित कर रहा था। इसी अंतर्द्वंद के कारण वे प्रतिदिन अपनी यात्रा यह कहकर टाल देते थे कि कल जाएंगे, अतः उनका नाम पड़ गया नालई पोवार। नालई पोवार का तमिल में मतलब है कल जाने वाले, और तिरु का नाम है श्री। तिरु नालई पोवार का मतलब श्री कल जाने वाले। ग्रामवासियों के वर्जित करने पर भी नंदनाथ भगवान नटराज के दर्शन करने तिरुलई चिदंबरम जाना चाहते थे। नंदनार एक ब्राह्मण के खेत की देखभाली करते थे। ब्राह्मण ऊंच नीच और जात पात को बहुत मानता था। जब उसने जाना कि नंदनार तिरुलई चिदंबरम जाना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन तुम हो नीचे जात के, इसलिए तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर कल तक मेरी सारी खेत को फसल समेत उगा दो और उस उगी हुई खेत को काट कर फसल को तैयार कर दो। नंदना ने एक और खेत की ओर देखा तो देखा कि खेत अभी तक पूरा समतल था, उसमें अभी तक चारा भी नहीं डाला हुआ था या फिर बीज भी नहीं डाले हुए थे, इसलिए उनका मन बैठ गया। उन्होंने सोचा कि कल तक मैं फसल को कैसे तैयार कर दूं। इसी सोच में वे बहुत निराश हो गए और रात को सो भी नहीं पाए, पूरी रात अपने घर में चिंता करते रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुबह जब वो खेत में गए तो उन्होंने देखा कि लहलहाती फसल तैयार होकर खड़ी थी। उन्होंने आंख से अश्रु भरे अपने शिव को ध्यान में किया और उन्होंने कहा, हे शिव, क्योंकि यह मेरे से संभव नहीं था, आपने स्वयं आकर हल चलाया और इस फसल को उगा दिया। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका मैं सेवक हूँ, आपका मैं दास हूँ। उन्होंने जाकर अपने ब्राह्मण स्वामी से कहा कि आपकी खेत और उसकी फसल तैयार है। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसने जब देखा कि फसल तैयार है, उसे विश्वास हो गया कि नंदनाथ कोई मामूली आदमी नहीं परंतु एक संत है। उसने तुरंत ही उनके पैर में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि आप तो प्रबल संत हैं और मैं आपको ऐसे कष्ट दे रहा था, मुझे माफ करें। इसके बाद उन्होंने नंदनार को तिल्लैया चिदंबरम जाने की आज्ञा दे दी, ये अनुमति दे दी। अब नंदनार के मन में आशंका थी कि मेरी छोटी जाति होने के कारण अतः मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वे केवल चिदंबरम में पहुंचकर नगर की परिक्रमा करके एक वृक्ष के नीचे लेट गए। इस कार्य में नीच जन्म ही बाधक है, ये विचार करते करते सो गए। उसी रात तिल्लई चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों को भगवान ने नंदनाथ के विषय में स्वप्न में आदेश दिया, कल अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि में पवित्र करके नंदनार को मेरे समीप लाओ। नंदनार अभी नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। इधर नंदनार ने भी स्वप्न में प्रभु आदेश सुना। प्रभु ने उन्हें आदेश दिया, वत्स

0: आश्चर्यचकित होकर नंदना के प्रति सम्मान प्रकट किया। तदुपरांत सब एक साथ चिदंबरम नटराज की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में गए। ऐसा माना जाता है कि नंदना की वेशभूषा तभी देवगत ब्राह्मण जैसा था, हृदय में ब्राह्मणों जैसा जनेऊ था, सर पे मस्तक पे शिव के चिन्ह थे विभूत सजाकर, उनके शरीर में तरह तरह स्थान पर विभूत सजाया हुआ था और वे शिव को अपने हृदय के अंदर धारण करके तिल्लय के चिदंबरम का दर्शन किया। इस कथा में तिल्लय जाने का निर्णय लेने पर भी नंदनार को भगवान के समीप जाने की योग्यता पर संदेह था। उनके हृदय में नीच जाति होने का हीन भावना और ग्रंथि थी जिससे वे अकारण अपराध बोध से ग्रसित थे। भगवान ने उन्हें सिखाया कि भक्ति में के मार्ग में जाति का बंधन कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अग्नि में चलकर भी उन्हें कुछ आघात नहीं हुआ, यह भगवान शिव की ही अनुकंपा थी। ऐसा भी कहा जाता है कि तिल्लय चिदंबरम जाते ही जब वे अग्नि से बाहर निकले तो उन्हें उस शिवलिंग में ग्रसित कर लिया गया और वे शिव के साथ कैलाश में पहुंच गए। इसलिए नंदना एक उच्च कोटि के संत हैं जिनके मन में सिर्फ प्रभु भक्ति ही थी। ब्राह्मण कवि सुंदरर ने उन्हें पवित्रता और भक्ति की साक्षात मूर्ति माना है। मद्रास स्थित मैलापुर के कपालीश्वर मंदिर में 63 नायनारों में से एक नंदनार भी हैं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirukkurippu Thondar Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी, जिनका नाम है तिरुकुरिप्पु तोंडर। उमा महेश्वरी समस्त ब्रह्मांडों की जननी है। उनकी तपोभूमि कांजीपुरम तमिलनाडु क्षेत्र में एक जगह है। इस पुण्यस्थली में धोबियों के वंश में तिरुकुरिप्पु तोंडर का जन्म हुआ। भक्त के मुख द्वारा शिव का नाम हमेशा रहता था। कुरिप्पु का मतलब संकेत है, तोंडर का मतलब सेवक है। इसका मतलब यह है कि संकेत जानकर सेवा करने वाले, तिरुकुरिप्पु तोंडर इनका नाम था। उनका नाम समस्त गांव में प्रचलित हो गया कि वे संकेत जानकर सेवा करने वालों में से हैं। संतों के मैले वस्त्रों की धुलाई करना और उन्हें स्वच्छ करके उन्हें वापस देना इनका प्रिय सेवा था। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि मेरे इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक तपस्वी वेशधारी का रूप धारण किया और उनके पास पहुंच गए। उनको देखते ही तिरुकुरिप्पु तोंडर ने कहा, हे स्वामी, इन मैले कपड़ों की धुलाई करके आपकी सेवा करने का अवसर मुझे दीजिए, मैं आपका कृतार्थ रहूंगा। तपस्वी ने उनसे कहा, यद्यपि मेरी धोती मैली तो है परंतु शीत हड्डियों तक प्रभाव कर रहा है, अतः मैं इसे धुलवाता नहीं। यदि तुम आज सांध्या तक इसे धोकर सुखा कर दे दो तो ठीक, अन्यथा इसे मैं ऐसा मानूंगा कि तुमने इस शरीर के प्रति अपकार किया है। यह कहकर उन्होंने अपने वस्त्र तिरुकुरिप्पु तोंडर को दे दिए। भक्त धोबी मैले कपड़े ले गया, पूरा परिश्रम करके उसे भट्टी चढ़ाया, फिर धोया, मैल साफ किए और उस वस्त्र को उजला कर दिया। भक्त ज्यों ही कपड़े सुखाने लगा तभी शिव ने अपनी परीक्षा की दूसरी कड़ी का आरंभ किया। आकाश में घने बादल छा गए, दिशाएं कृष्णवर्ण हो गईं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। रात होने को आई, वर्षा रुकने का नाम तक

0: ले रही थी। साधु तपस्वी का वस्त्र सूख पाना असंभव था। स्वयं को तपस्वी का दोषी महसूस कर रहे थे तिरुकुरुप तोंडर। इसी बीच ऐसा हुआ कि एक हवा के झोंके ने साधु के वस्त्र को उड़ा ले गया और उसे कांटेदार वृक्ष में अटका दिया। तिरुकुरुप तोंडर ने जैसे ही उस वस्त्र को लेने की कोशिश की तो वस्त्र फट गया। उसी क्षण वेशधारी योगी वापस आए और उन्होंने तिरुकुरुप तोंडर से कहा कि काफी देर हो गई, तुम नहीं आए तो मैं खुद चला आया, कहाँ है मेरे कपड़े। इस पर तिरुकुरुप तोंडर ने उनसे कहा कि आपके कपड़े तो वर्षा के कारण फट गई, मुझे माफ कर दें, मैंने अत्यंत कोशिश की फिर भी मैं वचन नहीं निभा सका, आप इस कपड़े के बदले और कोई स्वच्छ अच्छा कपड़ा मुझसे ले लें। यह सुनकर वेशधारी योगी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, हे ढोंगी, तुमने इस शरीर के प्रति अपकार किया है, तुमने वचन दिया था कि मेरे इन्हीं और इसी कपड़े को सुखाकर मैल से धुलाकर मुझे वापस सांध्य तक करोगे, तुम अपने वचन में असाध्य रहे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी तिरुकुरुप तोंडर को बहुत ग्लानी महसूस हुई और उन्होंने पास के रखे शिवलिंग में अपना सर तोड़कर अपनी जान देने का उपाय कर लिया। उन्होंने वहां गए, उन्होंने शिव के लिंग के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हे भगवान शिव, मैं तो आपके भक्तों की सदैव सेवा करता हूँ, लेकिन आज मुझसे यह क्या अपराध हो गया। यह कहकर उन्होंने बार बार अपने सर को उसमें पटकने के लिए जैसे ही आगे किया, तभी शिवलिंग से एक हाथ बाहर आया और उन्हें रोक दिया और उनसे कहा, हे भक्त, तुम्हारी सेवा का परिचय अब तीनों लोकों में हो गया है, तुम मेरे सायुज्य प्राप्त करोगे। उन्होंने यह भी दिखाया कि वो शिव वेशधारी प्रत्यक्ष शिव ही हैं, वो योगी शिव ही हैं। इसे देखकर तिरुकुरुप तोंडर गदगद हो गए और उन्होंने शिव के यहाँ प्रणाम करके अपनी भक्ति का व्यक्त किया। इस कथा से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। कपड़े धोने की सेवा करते हुए भक्त ने तपस्वी को धोकर सुखाकर सायंकाल तक देने का वचन दिया था। शायद ऐसा भी माना जाता है कि भक्तों की सेवा करने के लिए उनके मन में अहम का भाव स्थापित हो गया था। वे हमेशा सोचते थे कि मैं तो भक्तों की सेवा करता हूँ। इस अहम भाव को धोने के लिए शिव ने उनसे यह लीला करवाई और उनके मन के अहम को धो डाला। लेकिन तिरुकुरुप तोंडर आज भी संतों की श्रेणी में एक प्रथम माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तों की सेवा करना अपना उच्च धर्म माना। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Chandesa Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya Sant Nayanmar ki kahani, jinka naam Chandeshwar hai. Dakshin Bharat ke Kumbhakonam ke sameep मन्नी नदी के तट पर चेकुलर नामक एक गांव है। यहाँ वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले काश्यप गोत्र के कुल में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका पुत्र विचार शर्मा विचित्र स्वभाव का था। जब पूरे गांव के ब्राह्मण वेद विहित यज्ञ अनुष्ठान में रत रहते, विचार शर्मा शिव पूजा और आराधना को ही अपना लक्ष्य मानते थे। वेद और आगम शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद विचार शर्मा इस निर्णय पर पहुंचे कि शिव के चरणों पर ध्यान लगाना और शिव की आराधना करना ही मानव मात्र के लिए उद्धार का सहज मार्ग है। एक दिन विचार शर्मा ने एक गडरिये को गायों को पीटते हुए देखा, उनसे रहा नहीं गया। गायों के विशेष महत्व को ध्यान में रखकर उन्होंने गायों को चारागाह में चराने का काम अपने हाथ में ले लिया। उनका अपार स्नेह पाकर गायें उनके पास आकर अपने थनों से दूध की वर्षा करने लगी। दूध पहले से कहीं अधिक मिलने लगा। इस भांति दूध प्राप्त करते हुए विचार शर्मा के मन में शिव की दूध द्वारा पूजा का विचार आया। उन्होंने अत्यंत आस्थापूर्वक चारागाह में ही मन्नी नदी के तट पर रेत का शिवलिंग स्थापित किया और दूध से उसका अभिषेक करने लगे। कुछ वैदिक ब्राह्मण शिव पूजा में आस्था न होने के कारण मूर्ति का दूध से अभिषेक करना व्यर्थ मानते थे और कहते थे कि दूध नष्ट हो रहा है। एक दिन एक व्यक्ति ने यह दृश्य देखकर विचार शर्मा के पिता यज्ञदत्त से शिकायत कर दी। यज्ञदत्त पुत्र की इस विचार पूजा को देखने के लिए उनकी निगरानी करने लगे। कलशों में दूध भर लेने के बाद विचार शर्मा एकाग्रचित्त हो पूजा में लीन हो गए। यज्ञदत्त ने आक्रोश में एक छड़ी लेकर पुत्र पर आघात कर दिया। शिव पूजा में लीन भक्त को शरीर पर पड़ने वाले चोटों का जरा भी आभास नहीं हुआ। यज्ञदत्त और भी भड़क उठे। उन्होंने अभिषेक के लिए रखे हुए दूध के कलश को पांव से ठोकर मारी। विचार शर्मा की आंखें खुली। उनके मन में और मस्तिष्क में क्रोध भर गया। अभिषेक के दूध को का अपमान पूर्वक गिराने का शिव अपराध उनसे सहन नहीं हुआ। पास ही पड़ी एक छड़ी उठाकर विचार शर्मा ने पिता के पांव पर दे मारी। विचित्र घटना हुई। लाठी कुल्हाड़ी बन गई और यज्ञदत्त के दोनों पैर कट गए। उसी क्षण वृषभ पर आरूढ़ जटाधारी शिव पार्वती सहित प्रकट होकर बोले, वत्स, हम तुम्हारी प्रबल भक्तिभाव के कारण प्रसन्न हुए। तुमने अपने पिता को दंड दिया। जब तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम करना संभव हुआ तो आज से हम ही तुम्हारे पिता हुए। शिव ने उन्हें चंडेश्वर की पदवी प्रदान की, जिसमें भगवान के भोग का निर्माल्य वस्त्र और आभूषण आदि मिलता था। भक्तों, यह कह दूं कि उस समय यानी कि पल्लव राजाओं के समय में वेद मार्गी और आगम परंपरा के भक्तों में प्रचंड संघर्ष हो रहा था। इसे चेक्युलर संत ने इस कथा में चर्चा की है। कौंडिन्य गोत्राओं के अतिरिक्त वैदिक ब्राह्मण शिव को परब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। कौंडिन्य गोत्र यज्ञदत्त इसी भांति के कट्टर व्यक्ति थे। वे शिव या शिव पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। उनके पुत्र विचार शर्मा आगम शास्त्र में वर्णित शिव पूजा, शिवलिंग के अभिषेक आदि में आस्था रखते थे। अभिषेक में आस्था न होने के कारण यज्ञदत्त ने पुत्र द्वारा अभिषेक के लिए सुसज्जित दुग्ध कलश को ठोकर मारी। चिक्किलर से 5 शताब्दी पूर्व संत तिरुज्ञान संबंधर ने इस घटना का भिन्न वर्णन किया है। वहां ठोकर शिव के शीश पर रखे पुष्प मुकुट पर मारी गई है। संभव है कालांतर में शिव के प्रति भक्तिभाव के कारण ऐसा न करके ठोकर दूध के कलश पर वर्णित किया गया है। चिक्किलर इस कथा के माध्यम से प्राचीन काल के चिंतन भेद और कट्टरता का संकेत भी देते हैं। किसी को शिव अथवा शिव पूजा पर लेश मात्र भी विश्वास न हो तो अभिषेक के दूध अथवा दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना उचित नहीं। आज हमारे राष्ट्र में जिस सर्वधर्म संभाव का विचार व्याप्त हो रहा है, उसका मूल भी सब धर्मों को मानने का स्वतंत्र रूप में आस्था को प्राप्त करने हमारे भारत में सबका अधिकार समान माना गया है। चंडेश्वर विचार शर्मा इसी बात को उजागर करते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
4: सारे भक्त उठ के भाग गए। भोजन कर ही रहे थे, आधा भोजन किया होगा, कोई हाथ में थाली लेकर ही भागे बेचारे। भोजन छोड़ नहीं सके, थाली ही लेकर बाहर भागे। बाहर मैदान है, खुला मैदान है, रुद्राक्ष का पेड़ है, उसके नीचे खुला मैदान है। कोई थाली वहीं छोड़कर भागे बाहर, और हम आराम से बैठे हैं और खाए जा रहे हैं। भागे कहां, जहां भूकंप न हो वहां भागे। अब अंदर भी भू हिल रहा है, बाहर भी हिल रहा है, जहां भी कंप रहा है, तो भाग के जाएंगे कहां। तो मान्यता यही है कि छत के नीचे कहीं छत गिरकर चोट चाट लग के मर सकते हैं, और खुले मैदान में कुछ गिर के मरने की संभावना नहीं है, इतना ही है। लेकिन भूकंप तो सब जगह है ही है। धैर्यपूर्वक बैठा रहा, बाद में भूकंप शांत हुआ गया, हम तो खा ही रहे थे। सब लोग कहने लगे, महाराज आप क्यों नहीं भागे, भागना चाहिए ऐसी अवस्था में। तो हमने कहा हमको भूख लगी थी, क्यों भागेंगे भाई। धरती में भूकंप हुआ था, भू में भूकंप हुआ था, तो दिल तो नहीं कांप रहा था। शंकराचार्य कहते हैं, हृदय मम गेहे सर्वदा संवसत्वम, मेरा जो हृदय रूपी घर है इतनी सुरक्षित है कि आप वहां हमेशा रह सकते हैं, वहां कभी भी भूकंप नहीं आएगा। हे शिवा, हे भावा, कई संबोधन है इस श्लोक में। भावा माने जगत अधिष्ठान, समग्र जगत का एकमात्र अधिष्ठान होने के कारण परमात्मा का नाम हुआ भावा। और पुष्पदंताचार्य जी ने भावा का लक्षण बताया है, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। रजोगुण की अधिकता के चलते जगत उत्पत्ति का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण परमात्मा भव है। प्रबल तमसे तत्संहारे, तमोगुण के अधिकता से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए सारे विश्व ब्रह्मांड का संहार करने के कारण भगवान शिव का नाम है हारा। सत्वगुण के चलते सारे प्राणियों को पालन पोषण करके आनंद प्रदान करने वाले होने के कारण भगवान शिव का नाम है मृड। प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्य शिवाय नमो नमः। महिमन स्तोत्र का ये श्लोक है, हम प्रातःकाल रोज प्रार्थना करते हैं, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृडाय नमः। प्रमासी पदे निस्त्रैर्गुण्य, तीनों गुण से असंग हुए हुए अवस्था का नाम है शिव। ऐसे शिव को हम बार बार नमस्कार करते हैं। गुणातीत शिव और रजो उपाधि वाला अधिष्ठान स्वरूप निमित्त कारण वाला भव, दो संबोधन है। तीसरा संबोधन है सकल भुवन बंधो, संसार में सभी के परम हितैषी है। सकल भुवन बंधु, परम मित्र, परम हितैषी क्या है, एक उर्दू का है ना गीत है ना, जिसका कोई नहीं है उसका भी खुदा हो यारो, सुना है ना, है? इस जगत में जिसका जो कोई नहीं है उसका भी एक व्यक्ति तो है, वो कौन है, परमात्मा है। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई न हो, मां न हो, बाप न हो, भाई न हो, बंधु न हो, पति न हो, पत्नी न हो, बेटा न हो, बेटी न हो, नाती न हो, पोते न हो, घर न हो, दुकान न हो, मकान न हो, कुछ न हो, उसका भी एक व्यक्ति तो है, उसका नाम है, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है। यार उर्दू में तो वो कह दिया है, खुदा है यारो। शंकराचार्य जी क्या कह रहे, शंकराचार्य जी क्या कह रहे, सकल भुवन बंधु, हे शिवा हे भवा, आप सारे संसार के प्राणियों के बंधु हैं, परम मित्र हैं, हितैषी है सच्चिदानंद सिंधु। ये भी संबोधन है, चार संबोधन है यहां, एक शिव, दूसरा भव, तीसरा सकल भुवन बंधु, और चौथा सच्चित आनंद सिंधु। सिंधु माने समुद्र, सदया, ये भी संबोधन ही है, दया के सागर। तव परिचर्या सन्निधानाय गौरिया, सदया मम हृदय गेह गेहे सर्वदा संबसत्वम, मेरे हृदय रूपी घर में आप हमेशा नित्य निवास करो। हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमको रोटी बनाकर कौन खिलाएगा? आपकी सेवा करने के लिए तव परिचर्या सन्निधानाय, तव परिचर्या सन्निधानाय, आपके नजदीक रहकर, सन्निधिनी में रहकर, रात दिन आपके सान्निध्य में रहकर, तव परिचर्या आपकी सेवा करने के लिए, गुणधुर्याम सर्वगुण संपन्न बुद्धि कन्याम प्रदास्य, मेरी एक बेटी है जिसका नाम बुद्धि है। कैसी है वो, गुणधुर्याम, सेवा करने में बड़ा कुशल है, सद्गुणों से भरिपूर्ण है वो, उसको हमने बहुत सुशिक्षित बनाकर रखा है। प्रदास से आपकी सेवा में मैं उसी को लगा दूंगा, आप चिंता मत करो कौन सेवा करेगा, आ तो जाओ। हम तो ये कहेंगे कि एक बार तुम आ गए फिर तो निकल के ही नहीं जाओगे, इतना बढ़िया घर है वो, हृदय गे, एक बार तुम आ गए तो फिर निकल के नहीं जाओगे, आ तो जाओ, बैठ तो जाओ भाई, और आगे क्या कहेंगे भाई। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल वेदी, न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण, असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्याम सपर्याम, कथय कथ अहम ते कल्पयान इंदु मौले। ये 84वें श्लोक के साथ ही इसका संबंध है। महाराज मैं आपकी पूजा, सपरिया, सपरिया माने पूजा, ठीक से नहीं कर पाता हूं, नहीं कर सकता, जैसी पूजा होनी चाहिए वैसी पूजा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पूजा में नैवेद्य की आवश्यकता पड़ती है, भोग धराना पड़ता है ना भगवान को। वैष्णव लोग 56 प्रकार का भोग धराते, मानो कि उनका भगवान कभी उनको खाने को नहीं मिला है, है ना? कितने खाएंगे? कभी कभी हमारे सामने बड़ी समस्या, जटिलता आती है। भोजन के लिए भक्त बुला लेते हैं घर में, इतने सारे वैरायटी बना देते हैं, आइटम बना देते हैं, क्या खाएं क्या छोड़ें, बड़ी समस्या हो जाती है। महाराज ये खाइए, दूसरे आइटम में ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, कितने खाएं? थोड़ा सा परहेज करके कुछ कम खाओ, मुसीबत है। आपको हमारा रसोई अच्छा नहीं लगा, हे भगवान क्या समस्या है? थोड़ा थोड़ा खाओ तो आपको हमारे रसोई अच्छा नहीं लगा महाराज, ये खाइए, क्या अच्छा नहीं लगा क्या? बोलो हां अच्छा नहीं लगा कहेंगे तो उसका चित्त दुखेगा, समझे कि नहीं? बहुत अच्छा है तो बोलता खाइए ना, फिर ले अब क्या है मुसीबत? हो गया मुसीबत? अच्छा कहोगे तो और खाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगा कहोगे तो बेचारा उसका चेहरा, इतना मेहनत से बनाया, अच्छा नहीं लगा करके उसको देखो तो फिर उसका तो चेहरा खत्म। सही बात, सही रूप में यदि हम कहें शारीरिक दृष्टि से, हां भावनात्मक दृष्टि से नहीं, शारीरिक दृष्टि से सही रूप में कहें तो हमारा दुश्मन हमारे ही भक्त हैं। सच कह रहा हूं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे दुश्मन हमारे ही भक्त हैं। और ये ऐसे दुश्मन हैं जैसे होम्योपैथिक की गोली, होम्योपैथिक की गोली बारीक नहीं, बाहर से शुगर रहता है, बड़ा स्वादिष्ट रहता है, और अंदर से इतना कड़वा, इतना जहरीला होता है वो। इसीलिए ग्लूकोज के गोली पर वो ड्रॉप ड्रॉप डालकर देते हैं, वो सीधे ड्रॉप नहीं लिया जा सकता है होम्योपैथिक के, तो ड्रॉप में होता है, लिक्विड है होम्योपैथिक, अर्क है ना, तो होम्योपैथिक तो पूरा अर्क है, उसको बनाने का सिस्टम ही अर्क है, और वो बनाते भी हैं तो जहर से ही बनाते हैं, कोई वनस्पतियों से नहीं बनाते हैं, जहर से बनाते हैं। लेकिन उसको बनाने की जो सिस्टम है, उसके जो नंबर होता है, होम्योपैथिक पूरे नंबर पर चलता है, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, वो पॉइंट होता है उनके, उसको अर्क निकालने के सिस्टम पर उसका पॉइंट होता है, समझे नहीं? तो उसी का ड्रॉप, और सीधे मुख में जिह्वा में वो ड्रॉप डालते हैं ना, पोलियो ड्रॉप डालते हैं, इस तरह डाले को तो मुख में डाला ही नहीं जाए, इसलिए वह ग्लूकोज की गोली होती है, जो बारीक गोली है वो ग्लूकोज की है, और उसी में वो ड्रॉप डालते हैं, फिर उसके बाद खाओ, खाते समय बड़ा स्वीट, बड़ा मीठा है। हमारे भक्त ऐसे ही हैं भाई, बड़े हितैषी हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से खिलाते हैं, और उनका जो खिलाना हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे लिए नहीं, ये शरीर के लिए फिर वो दुश्मनी का काम करता है, और अंदर जाकर शुगर और ब्लड प्रेशर इतना ग्रोथ हो जाता है कि बस पूछो नहीं। लेकिन हितैषी हैं ये लोग, खूब खिला खिला कर बीमार भी यही बनाएंगे, उसके बाद फिर दवाई और इलाज भी यही करते हैं, इलाज भी यही करते हैं। महाराज पूछते हैं, महाराज कोई दवाई लानी है आपके लिए, बोलिए मुझे, सेवा का मौका दीजिए, उस दवाई लानी हो तो बोलिए। विदेशी भी हैं, और पहले खूब खिलाकर रोगी बनाएंगे, फिर दवाई शुरू करेंगे। सेवा करने का मौका मिल गया, बड़े खुश हो जाएंगे वो। अब हम भी इसी में संतोष कर लेते हैं, भाई चलो तुम्हें सेवा करने का मौका मिल गया है। देखो एक बढ़िया बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, ये हमारे गुरु महाराज जी की अभिव्यक्ति है, हमारे ब्रह्मलीन गुरु महाराज तो जीवन के अंतिम क्षण में शारीरिक अव्यवस्था के चलते ही उनके जीवन समाप्त हुआ, तो बीमार थे बेचारे। तो हमारे महाराज जी के खास सेवक, भक्तों में से खास सेवक, तो जीवन भर महाराज जी की गुरु जी की सेवा में ही वो समर्पित हुए। हम लोग सब माता जी बोलते थे। उन्होंने ऐसे पूछ लिया, बीमार थे, महाराज ये आजकल जो रोग दिखाई पड़ा है, हार्ट अटैक होकर जो तुरंत मरते हैं, चलते फिरते तुरंत अटैक आ गया और मर गए, ये सबसे अच्छा है वो, ऑन द स्पॉट बस गए। अब ये लंबे बीमारी जो है, बिस्तर में पड़े रहो है? बहुत समय तक बिस्तर में पड़े रहो, दूसरे लोग सेवा करते करते हैरान, अपने आप खुद भी उस कष्ट में, इससे अच्छा तो वही ठीक है महाराज। तो महाराज जी ने जवाब दिया, गलत है वो। वह क्या है? गलत है। क्यों महाराज? बोले देखो, बाप या मां, गुरु, ध्यान देना है, बाप मां गुरु लंबे समय तक बीमार होता है ना, बेटे को बहू को चेलों को सेवा करने का मौका देते हैं। क्या देते हैं? नहीं तो बेटों को बहुओं को मां बाप की सेवा करने का अवसर कहां मिलेगा? ये कौन देगा ये अवसर? तुरंत मरने वाला क्या अवसर देगा बेटे को? तुरंत मरने वाला क्या बहू को ये अवसर देगा? तुरंत मरने वाला क्या चेलों को, शिष्यों को सेवा करने का मौका देगा? वो शिष्य धन्यभागी हैं जो गुरु की सेवा करने का अवसर मिल गया उनको। वो बेटे बहू हैं वो धन्यभागी हैं जो अपने मां बाप के सेवा करने का मौका मिल गया। अनेक जन्मों के पुण्य की बिना नहीं मिल सकता है। तो मां की सेवा करने कहां जाएंगे वो? पिता की सेवा करने कहां जाएंगे वो? बाप ऑन द स्पॉट मर गया, मां मर गई, क्या करेंगे वो? कैसी सेवा करेंगे वो? गुरु मर गया तुरंत। इसलिए ये भाव रखे कि हमको अवसर मिला है, सेवा करो। प्रसंग बड़ा सुंदर है। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल भेदी नच वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्याम सपरियाम कथय कत अहम ते कल्पया निंदी मौले। हे इंदु मौले, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रशेखर, मौले माने शिर, शेखर मुकुट, सिर मौली, चंद्रमा है मुकुट जिसके, वह इंदु मौले। हे इंदु मौले संबोधन है। भो इंदु मौले, आपकी पूजा करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि पूजा में सबसे पहला वस्तु है भोजन, यानी भोग लगाना पड़ता है। भगवान को भोजन चाहिए, भोग लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी, और वही भोजन भगवान के लिए देना चाहिए जो भगवान को सबसे प्रिय हो। भगवान को जो प्रिय हो वो देना चाहिए, अपने को जो प्रिय हो वो नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने को जो प्रिय है वो भगवान को देते हैं, भगवान को जो प्रिय है वो भगवान को नहीं देते, अपने को जो प्रिय है वो भगवान को देते हैं। करते क्या है, अपना पेट खराब हुआ और खिचड़ी खाने की इच्छा हुई, अपने लिए खिचड़ी बनाई, उस दिन भगवान को भी खिचड़ी खानी पड़ेगी पड़ेगी। इच्छा न हो तो भी खाना पड़ेगा कि नहीं, भगवान को बोलो। तुमने कभी पूछा भगवान को खिचड़ी खाने की इच्छा है कि नहीं? तुम्हारा तो पेट खराब हुआ, जबरदस्ती खिचड़ी खाना पड़ रहा है। परमात्मा को तो पेट खराब नहीं हुआ है ना, उनको तो हलवा पका के खिलाओ, लेकिन कोई नहीं बनाता है हलवा है, वो अपने को जो अच्छा लगा वही बनाया। महाराज
5: ओम नमः शिवाय।
6: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
5: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: कि शरीर का भाव नहीं रखना है, उसके साथ मन के सुख दुख से अलिप्त रहना है और उसके साथ अज्ञान का निवारण करने की अदम्य इच्छा, डिजायर, इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन, हाँ एकदम तब तड़प होनी चाहिए कि छूटना ही है। ये तीन एक सीध में आएंगे तो गुरु का ये वाण क्या है, वाणी रूपी वाण है। और विष्णु भगवान को क्यों वाणी, ये वाणी विष्णु वाणी है, क्यों ऐसा कहा, ये विष्णु के मुख से जो वाणी निकल गई वो आत्मसात करेंगे तो ही वो बाण बन सकेगा। ये भगवत गीता का जो उपदेश दिया है यही बाण है, यही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी, यही ज्ञान का अज्ञान का उपशमन कर सकता है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये भगवत गीता का जो उपदेश है उसका सार, उसका जो ज्ञान है उसके ऊपर हम इतना जोर देते हैं वो इसी कारण। ये प्रतीकात्मक है, तीन शरीर कोई असुर के नहीं, मेरे ही है, बात याद रखना। मेरे भीतर असुर वृत्ति यानी किसी का परमार्थ रोकना, खुद परमार्थ नहीं करना वो तो असुर वृत्ति है ही, किसी का रोकना भी असुर वृत्ति है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई अच्छी किताब किसी दे दे, प्रवचन में जाने के लिए प्रवृत्त करे, कुछ अच्छा कुछ किसी का करना तो कभी आपका भी कुछ तमस चल रहा होगा तब कोई धक्का मारने वाला भगवान हाथ भेज देगा। तो ऐसे कहते हैं यहां श्री पुष्पदंत जी को, हमने ये सब दूसरी बात, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात के ऊपर क्यों ज्यादा भार दिया, क्योंकि हमारी साधना चल रही है। पर यहां पुष्पदंत जी को तो स्तुति की ही बात है, तो पुष्पदंत जी को यहां क्या कहना था, तो बोले कि हे परमात्मा, ये सब पदार्थ आपके स्वाधीन है, आपसे उत्पन्न हुए हैं, आप अपनी मर्जी से उसे चला रहे हैं, ये मैं अब जान रहा हूं। अब के बाद आपका कोई भी आडंबर मुझे आश्चर्यचकित करेगा, मेरे आपका आडंबर हे परमात्मा मेरे आनंद का ही कारण बने, मेरे उपहास का नहीं। उपहास मत करना, ज्ञानी जन कुछ भी करे उनका उपहास मत करना, बस इतना ही मेरे अंदर इतनी शक्ति दे कि आपका जो सामर्थ्य है उसको मैं आडंबर समझ के चकित हो सकूं, आश्चर्यमय हो सकूं, पर उसके ऊपर कोई भी प्रकार की टिप्पणी या मुख से बोलना सर्वथा अनुचित है। अभी कहते हैं कि हे त्रिपुर हर, ये त्रिपुरासुर का तो नाश किया, बात ऐसी आती है कि तीन सीध में आ जाते हैं तब ये गुरु जो है वो नाश कर देते हैं शिव, ऐसे ही गुरु तत्क्षण हमारे अज्ञान को नाश करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। प्रणवो धनुष्यरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम। गुरु अपने शिष्य का अज्ञान दूर करने में प्रमाद नहीं करता है तो हम कैसे प्रमादी हो सकते हैं। ऐसा मत समझना कि वन फाइंड है, गुरु पर सत्ती हो गई, मैं आपको गुरु मान रहा हूं पर बस जो करते हैं वो करना है, नहीं। हमारी ड्यूटी क्या है कि तैयार रहना है। गुरु यहां बांध लेके बैठे हैं, सीध में लाने की पुरुषार्थ हमें करना है, हम क्या समझते हैं पुरुषार्थ भी वही करे, उनके उनको शरणागत हो गए इतना बस हो गया, नहीं काफी नहीं है, वो तो बांध लेके बैठे ही है। उनके मुख से निकला हुआ वो अब्रह्म की बात करेंगे ना, अतत की बात करेंगे ना, जगत की बात करेंगे ना, तो भी वो शर हो जाएगा। उनके मुख से, उनके मन बुद्धि शरीर के संघात से जो कोई भी कर्म होता है वो हमारे लिए शर के बराबर होता है। ऐसा मत समझना कि गुरु तत्वमसी बोले तो ही हमारा उद्धार होगा, नहीं, वो कुछ भी बोले तो हमारा उद्धार होगा। इतनी श्रद्धा, इतनी अदम्य श्रद्धा हो तो ही कुछ हमारा हो सकता है, बाकी छोड़ देना कि हमारा कुछ हो सके। तो यहां है हे त्रिपुर हर, त्रिपुर को त्रिपुर के संहारक परमात्मा। अब ये विष्णु भगवान जो शर बने थे, जो बाण बने थे, वो भगवान कैसे है? बाण ऐसे ही किसी को नहीं बनाते, परमात्मा का बाण बनने के लिए भी कौन सी क्वालिटीज चाहिए, कैसे गुण चाहिए। हम भी इच्छा करें कि गुरु वो हमारी सेवा लेना, सब हमारे आश्रम में भी आके बोलते हैं, भाई हमारे लायक जो सेवा है वो आप कहना, हमारे लायक जो सेवा है आप बताना। सेवा बताएंगे, पर सेवा करने वाला कैसा होना चाहिए? तो बोले कि ऐसा, ये विष्णु भगवान कैसे थे, परमात्मा ने उपयोग किया वाण की तरह, तो हाथ में तो लेना पड़ा ना, तो हाथ में लेने के लिए अधिकार तो प्राप्त करना चाहिए। तो कौन से, ये विष्णु जी कैसे अधिकारी थे, विष्णु जी के पास, विष्णु जी से पक्षपात क्या किया, क्यों ब्रह्मा जी को नहीं बनाया? तो बोले कि फर्क क्या है जरा देख लीजिए, विष्णु भगवान जब आपकी भक्ति भाव से पूजा कर रहे थे, तब शिव सहस्त्र नामावली बोल के एक एक कमल चढ़ा रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल को आपने छिपा दिया, तो एक कमल कम होने से विष्णु भगवान ने कहा कि अब मैं जो पूजा का संकल्प लेके बैठा हूं, संकल्प टूटने से आसन भी टूट जाएगा और उसका दुष्परिणाम आएगा। एक बार संकल्प तो कर लिया है, अब परमात्मा आप ही करो व्यवस्था। तो तुरंत ही उन्होंने सोचा कि मुझे तो लोग पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, मैं तो कैसा हूं? तो बोले मेरी तो आंखें कमल, मुझे तो कमल नयन बोलते हैं सब लोग, तो मेरी ये आंख निकाल के मैं रख देता हूं, दे देता हूं। ये स्थूलतया बिना सोचे ही आंख आके रख दी, तो क्या हम हमारी आंख दे दे तो गुरु प्रसन्न होंगे? तो बोले नहीं, ये भी प्रतीकात्मक है कि गुरु की प्रियता के लिए, जिसके पास हम ज्ञान लेते हैं उसकी प्रियता के लिए कुछ भी दे देना पड़े तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, उसके ऊपर तर्क नहीं लगा। बुद्धि तो है, बुद्धि तो उन्होंने लगाई कि आंख दे दूं, पर बुद्धि के ऊपर तर्क नहीं लगाया कि अरे आंख कमल हो सकती है क्या, बस इतना ही सोचना था कि ये पूजा उनकी पूरी नहीं होती थी, अरे ये दोबारा करेंगे, नहीं एक क्षण भी नहीं इधर उधर का कुछ नहीं सोचा। यानी जब ये ज्ञान देने के लिए प्रवृत्त कोई मिल जाता है तो अपनी कोई भी सुखाकारी का ख्याल हमें नहीं करना है, साधक को सतर्क रहना है, अपने कुछ भी व्यवस्था नहीं करनी है, कुछ भी हो अगर ये मिलता है तो आंख से ज्यादा प्रिय क्या हो सकता है किसी को, हाँ प्रिय से प्रिय चीज भी दे देनी पड़े तो भी संकोच। ये बताता क्या है कि भीतर कुछ भी संकोच, और परमात्मा को देते समय कहीं भी खट क्या संकोच मत रखना, और वो तभी रख सकेंगे जब श्रद्धा होगी। संकोच कब आएगा, जब तर्क आ जाएगा, विचार आएगा, और अगर संकोच तर्क आ गया ना तो उसके भी बचने की व्यवस्था है, वो मत करना, माफी मांग लेना पर मत करना, क्योंकि संकोच से किया गया कर्म गुरु को तो पता लगता ही है, दोष हमारा आ जाएगा। तो जरा ऐसी छोटी छोटी बातें हमें जो कुछ भी सीखा जाती है हमारे साधना के लिए इतना पर्याप्त है। तो यहां ऐसे विष्णु जी ऐसे ही आपके प्रिय नहीं बने हैं, ऐसा पुष्पदंत जी को कहना है कि ये कोई प्रिय बन जाता है तो ऐसे ही प्रिय नहीं बन जाता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तरह तरह की परीक्षा होती है, जैसे हमारे संस्कार ऐसे परीक्षाएं होती है। तो भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, आप वैसे भी मेरे प्रिय ही थे क्योंकि आप सच बोले थे कि मेरा आप कारण नहीं जान सके, पर अब मुझे आप ज्यादा प्रिय हो इसलिए तीनों भुवन का, तीनों लोक का, चौदह लोक का, तीनों भुवन का मैं आपको अधिपति बना रहा हूं, विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान बोले कि भाई अधिपति तो बनाओ, पर ये असुर कुछ कम नहीं है, असुर और दानव हाँ क्षण क्षण में आते रहते हैं, उनके संहार की व्यवस्था क्या आप मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, मेरे राजा तो बना दिया, बिना राजा को सिक्योरिटी गार्ड के बिना ठीक नहीं होता है। विष्णु तो शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुदर्शन चक्र दे रहा हूं। और ऐसे सुदर्शन चक्र देते हुए भगवान शिव ने कहा कि देखिए मेरा और आपका तो अभेद है, आप और मैं एक ही है, फिर भी ये व्यवहार में आप मुझे बहुत प्रिय है, मैं सुदर्शन चक्र दे रहा हूं, और हे विष्णु ये मैं कह भी रहा हूं कि आप में और मुझ में जो अंतर देखने वाला है उसका अवश्य नाश होगा, अवश्य वो नरक में जाएंगे, ऐसा शिवजी ने कहा। तो ये पुष्पदंत जी कहते हैं कि आपके भक्त की महिमा का कोई अंत ही नहीं है। हा? तीनों भुवन साम्राज्य सार्वभौम, और यही साम्राज्यत्व बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है स स्वराट भवती। गुरु जब आत्मा का तत्वमसी वो ब्रह्म तू है ऐसा अगर आपको समझाने में प्रवृत्त जो कोई भी गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वात्मा का अपने आत्मा का ही दान दे देते हैं। और जब आपको लगेगा कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, वो परमात्मा मैं ही हूं, वो परमात्मा मेरे भीतर है, इतना भी समझ लिया तो आप स्वराट बन जाते हैं। ये उपनिषद वाक्य है स स्वराट भवती, और ये बात यहां की गई है। तो बोले परमात्मा पुष्पदंत जी को इतना ही कहना है कि जो आपको प्रिय रूप से प्रार्थना करता है वो तो सार्वभौम हो जाता है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी स्तुति कर रहा हूं, मुझे भी आपके स्वरूप का दान दीजिए। अब कहते हैं कि हे शिव जी आप अत्यंत कृपालु है। यहां यज्ञ कर्म की बात की गई है। ये जो हम जी रहे हैं कोई भी प्रकार के कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ ही चल रहा है, पर ये कर्म देश में उठता है, एक देशीय है, अल्पकालीन है, थोड़े काल से बद्ध है हमारे कर्म, देश से बद्ध है कोई भी कर्म छोटा या बड़ा, और वस्तु से भी बद्ध है यानी सीमित है, परिच्छिन्न है। और ये जो ज्योतिष्टोम यज्ञ है, लक्ष्मी याग, विष्णु याग, ये सब जो याग है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, तो ये सब यज्ञ करते हैं वो थोड़े ज्यादा दीर्घकालीन होते हैं। हमारा ये यज्ञ, ये मैंने कुछ बोला या यहां से पुस्तक यहां उठाया, ये मेरा कर्म हो गया, ये कर्म यज्ञ ही है, पर ये छोटा छोटा है, शुरू होना खत्म होना बहुत कम समय में शुरू होता है, खत्म हो जाता है। वो जो यज्ञ जो है जहां हवन देते हैं, याग करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा चल रहा है, पर उसकी भी अवधि है, वो भी देश और काल से बद्ध है। तो सकाम कर्म इसे कहते हैं। सकाम कर्म यानी पहले संकल्प, आपके पास संकल्प किया जाता है, करवाया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा मेरा नाम, ऐसा मेरा गोत्र, ये देश है, ये काल है, इन इन सबको साक्षी मान के मैं ये संकल्प कर रहा हूं कि इसकी सिद्धि के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। अब यज्ञ कर्म तो समाप्त हो गया, सिद्धि कब मिलती है? सिद्धि तो बाद में मिलती है। तो कर्म की समाप्ति होने के बाद इसे ब्रह्मसूत्र में शंकर शारीरक भाष्य में अपूर्व कहा गया है कि उसके बाद भी कर्म का फल तो चलता ही रहता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र तुरंत भी मिल सकता है या फल के रूप में उसका आरोह किया और फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद भी पुत्र हो सकता है। तो ये जो यज्ञ कर्म समाप्त होने के बाद फल मिलने तक बीच में तो यज्ञ नहीं चल रहा है, बीच में तो हम फिर से हमारे कर्म कर रहे हैं हमारी मन बुद्धि चित्त के अहंकार से। तो बीच में फल देने तक ये कौन बनाए रखता है, ये कृपा कौन बनाए रखता है? बिना कृपा तो फल नहीं मिल सकता। जो सकाम कर्म करने के लिए आपने प्रार्थना की थी, वृष्टि के लिए भी हम प्रार्थना यज्ञ करते हैं कि भाई बारिश हो जाए, बहुत बारिश हुई तो बारिश बंद होने के लिए भी करते हैं। तो यज्ञ खत्म होने से वृष्टि होने तक कौन संभालता है? तो बोले आप। ये यज्ञ और फल के बीच में रहने वाले आप शिव भगवान हैं, आप शिव जी हैं। हे महेश्वर आप कैसे हैं? आप अकामी हैं, आप निष्काम हैं, और जो निष्काम है वही दूसरों के काम जो है वो संभाल सकता है। जिसे अपने ही काम की पड़ी हो, अपने लिए भागता रहता हो, दूसरे का काम कैसे कर सकेगा? हाँ, तो ये निष्कामता है, आप निष्काम परायण है, अकामी है, इसीलिए सर्व काम होकर यज्ञ का फल देने के लिए मात्र मात्र आप ही उचित है। इससे हमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि यज्ञ का फल देने वाले शिवजी है तो यज्ञ करने की भी क्या जरूरत है। यज्ञ से फल तक कोई बीच में संभालने वाला है तो शिवजी का नाम लिया तो पर्याप्त है, फिर यज्ञ करने की भी क्या जरूरत है? शिव जी का नाम ही लो और कामना कर लो। फिर थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि आगे बढ़ती है कि अरे कामना करूं या ना करूं, अगर शिव है और ये शिव जो है वो सब कुछ दे सकते हैं तो कामना करूं या ना करूं मिल ही जाएगा। ऐसी सूक्ष्म बुद्धि यहां तक पहुंचना है। और जब ऐसा हो जाता है, और इसीलिए निष्कामता, अकामता, आप्तकामता, आत्मकामता, इसीलिए हम कहते रहते हैं ना कि भाई ये मन बुद्धि के संस्कार जो है आसक्ति है, विषय की जो आसक्ति है, जो खिंचाव है, परिस्थितियों की आसक्ति है, व्यक्तियों की जो आसक्ति है, वो कम करने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पा लिया तो ये सब मिल ही जाएगा। हाँ, ये सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करने के लिए पुष्प दंत जी स्तुति रूप कहते हैं कि हे परमात्मा, यज्ञ को संभालने वाले यज्ञ कर्म के फल के रूप में आप ही हैं, तो मेरी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए कि आप ही सब कुछ है, तो मैं आपको ही पाने की चेष्टा करूं, और सब चीज से भी आप ही मिलने वाले हैं और सीधे भी आप ही मिलने वाले हैं। ऐसी कुछ भावना के साथ पुष्प दंत जी आगे कहते हैं श्लोक नंबर 21।

0: कृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधारभसः।
1: प्रिया दक्षो दक्षः, हे महादेव, सब प्राणियों के आप अधिपति हैं। ऐसे महादेव के शरण आने वाले ये दक्ष प्रजापति राजा है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था उसमें जो यजमान थे, ऋषि और अर्धवर्यु थे और देव जो थे वो सब सभासद बनके आए थे, यानी सब जगह से ज्ञानी, ऋषि, अर्धवर्यु, पंडित, ये सब सभा भरी हुई थी देवों से। ऐसी सभा में भी यज्ञ के फल देने के लिए आप एकमात्र देव उपस्थित है। आपके होने के बावजूद भी दक्ष प्रजापति वो यज्ञ के फल को न पा सके। क्यों नहीं पा सके? शिवजी तो वहां हाजर थे, वहां उपस्थित थे, फिर भी फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बिना श्रद्धा किया हुआ कर्म यजमान का नाश ही करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ के लिए हम उपस्थित हो गए, उद्धृत हो गए, सुनते हैं, पर श्रद्धा नहीं है। हाँ, जस्ट सुनते जाते हैं। इससे मेरी चित्त शुद्धि होगी ही, आत्म साक्षात्कार होगा ही, मैं ब्रह्म को इसी समय इसी क्षण जान लूंगा, ऐसी श्रद्धा से कितना श्रवण हमने किया। श्रवण सुनते वक्त भी इसीलिए कहते हैं ना कि प्रतिक्रिया रहित जो सुनना है वही श्रवण है। टू लिसन एनीथिंग विदाउट रिएक्शन इज कॉन्टेम्पलेशन, ऐसा बोलते हैं। तो प्रतिक्रिया आ गई तो श्रवण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये दक्ष का यज्ञ ही चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। शिवजी है, शिवजी के बिना तो ज्ञान यज्ञ होगा ही नहीं ना। ज्ञान की बातें शिवजी ही कर सकते हैं, और जो गुरु है वो शिव समान है। इसीलिए कहा है शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, शिव रुट गए तो गुरु है, वो तारण कर सकेंगे। गुरु रुष्टे न कष्टन, गुरु रुट गए तो कोई तारणहार नहीं है, वहां शिवजी भी नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है ना। इसलिए तो सुनते समय भैया कब खत्म होगा, अभी 8 मिनट बाकी है, तो दक्ष बन गए। ज्यादा ले लिया, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए था, ये स्वामी जी के पास हमने ऐसा सुना था। हाँ, ये सब चीजें हमें दक्ष बनाती है, दक्ष प्रजापति। दक्ष याने ये हम कहते हैं ना, दक्षता अच्छी क्वालिटी है, ये दक्ष है, कार्य दक्ष बोलते हैं, कि इनके अंदर सब कुछ अच्छा करने की क्वालिटी है, हमारे अंदर भी है। कैसे क्वालिटी है भाई? ये ब्रह्म सुनना जानना कोई कम दक्षता नहीं मांग लेता, बड़ी हिम्मत चाहिए ना, ये प्रवचन सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, वो है। हम सब कार्य दक्ष है, ज्ञान लेने के लिए उद्धृत हुए हैं, पर नष्ट कैसे हो जाता है? यही सब प्रतिक्रियाओं से हमारा इकट्ठा किया गया पुण्य एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती रहती हूं कि बी केयरफुल, कोई भी ज्ञानी जनों के साथ कोई भी प्रकार का वर्ताव करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए। तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि जो सती थे उमा पार्वती जी, दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने पंचाग्नि का तप करके शिवजी को प्राप्त करने की बड़ी विकट साधना की और प्राप्त किया, पर शिवजी का आडंबर आपने देखा ना ये पृथ्वी के रथ, हाँ, ये सूर्य चंद्र पहिए, ऐसे इससे भी ज्यादा उत्कृष्ट आडंबर वो जब शादी करने गए ना तब था। हाँ, भूत पिशाच की टोली लेके क्या उन्होंने वेश बना, पंचमुखी होके गए थे, एक सर ऊपर यहाँ चार मुख, पूरी भस्म

ऐसा बोलते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा जाते हैं, ऐसा सोते हैं, हो नहीं सकते। ऐसा हो गया तो समझ लेना हमारा यज्ञ नष्ट होने वाला। अब तक जितना सुना वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है घंटे का ही नष्ट होगा। यहाँ तो ऑल और नन चलता है। हाँ, वो आपके कंप्यूटर जैसा है, एक चिप दबा दी, डिलीट की तो सब डिलीट हो गया। और ऐसा नहीं कि इतना ही डिलीट होगा, सब कुछ गया। यहाँ तो फिर से बैठिए, फिर से सुनिए इतना बहुत डेलिक, बहुत सतर्क होने सुनने की बात है। हंसने की बात है, हंसिए, पर भीतर से जरा अपने मन को समझा दीजिए कि बी केयरफुल। हाँ, आपके भले के लिए है ये। तो जब दक्ष प्रजापति कोई यज्ञ का अनुष्ठान लेके बैठ गए, तब उन्होंने अपनी पुत्री को आमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आमंत्रण? क्योंकि शिवजी को नहीं बुलाना था, इसीलिए। और ये पुत्री, ये गिरिजा क्या है? आत्मात्वम, आत्मा शिव है। गिरिजा मति सहचरा, ये गिरिजा है जो पार्वती जी है, ये सूक्ष्म बुद्धि है। और जहां सूक्ष्म बुद्धि नहीं है वहां शिव तो आएंगे ही नहीं। तो पुत्री को हुआ कि मेरे पिता के घर जाने में मुझे क्या पूछना? हा? वो तो हक होता है, हक बनता है, कभी भी चले जाइए, वहां थोड़ी कहना है कि मैं आऊं, ऐसा भी पूछना नहीं है। भगवान ना बोलते हैं, अनइनवाइटेड नेवर गो, ऐसा है ना कुछ, क्या इंग्लिश में आप बोलते हैं, बिना आमंत्रण मत जाइए, अपमानित होंगे। बहुत समझाया पार्वती जी को, नहीं माने। पुराण में बात आती है, और वो जो चित्र जो है बड़ा दुर्लभ है, वो कभी मुझे किसी ने बताया था वो चित्र, कपि चले अगुआइन। कपि चले, शिवजी ने क्या किया? पार्वती जी तो चले अपने रथ और सब सैनिकों के साथ, पर शंकर भगवान को पता था कि ये ठीक नहीं है, सती का वहां रक्षण नहीं होने वाला है, और सती चाहते भी नहीं, मैं चाहता नहीं कि मैं जाऊं, तो कपि का रूप धारण कर लिया शिवजी ने, और कपि बन गए, और उसके रूप में अगुवाइन, वो इनका, इनकी पालखी चल रही थी, उनके आगे शिवजी चल रहे थे कपि के रूप में, बंदर के रूप, वानर का रूप धारण ले लिया और वो चलने लगे। ये बहुत ही, ये जो चित्र जो है बड़ा दुर्लभ है, कभी आपको जन कल्याण या कोई ऐसे ग्रंथ होंगे उसमें ये चित्र मिलेगा। तो ऐसे शंकर भगवान सूक्ष्म रूप से वहां दक्ष के यज्ञ में गए, तभी तो ध्वंस किया फिर। और फिर बड़ी बात आती है, सती का वहां अपमान भी हुआ, और उनका अपमान परमात्मा सह नहीं सके। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति ने अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमान को त्याग कर अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि से, सूक्ष्म दृष्टि से वो परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कर ली है और प्राप्त कर लिया है, तो वो सब सती है, सब पार्वती है, सब उमा है, सब ज्ञान का प्रतीक है, वो शक्ति है, पुरुष हो या स्त्री हो। और उसका अपमान स्वयं शिवजी, स्वयं स्वात्मा, स्वयं जो आधार है, जो ब्रह्म है, वो उसका अपमान भी नहीं सहन कर सकते। और फिर मारने को वो ब्रह्म ही आएंगे। हाँ, और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, यहां कोई लेबल थोड़ी डाला है कि इसको मिल गया, इसको नहीं मिला है। एंड हु आर वी टू जज? हाँ, इसलिए बहुत ही नम्र रहना, और वाणी का विलाप प्रलपन साधु संतों के साथ बहुत सोच समझ कर करना। उम्र कम हो ज्यादा हो, उम्र का यहां लिहाज ही नहीं है। छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, ज्ञानी या अनज्ञानी, वो कुछ बात ही खत्म हो जाती है। और ये सब अपने परमात्मा, आप देखिए तो सब किशोर रूप में ही है, बालक रूप में ही है, युवा नहीं है, कोई उम्र वाला नहीं बताया। देन ऑल्सो यू मस्ट रिस्पेक्ट। तो यहां कहा है कि अगर सूक्ष्म बुद्धि की, सूक्ष्म बुद्धि अपमानित हुई, उसका प्रभाव कम किया, तो क्या होगा? तो शिवजी संहार करेंगे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का संहार किया, यज्ञ का संहार यानी उन्होंने जितने पुण्य

इकट्ठे किए थे, एक ही क्षण में वो पुण्य का विध्वंस हो गया, नाश हो गया। और शिव तो वहां उपस्थित ही थे कपि के रूप में, वो आपकी उपस्थिति से तो बिगड़ी भी बननी चाहिए, पर यहां बना हुआ ही बिगड़ गया है वो। इस प्रकार, क्योंकि वृत्ति कैसी है, प्रतिक्रिया वाली वृत्ति है। तो जहां आपका देहाध्यास आया, समझना देहाध्यास शरीर मैं हूं ऐसा अहंकार रख के कर्म किया, अध्यात्म कर्म किया तो नाश है। मैं ये मन हूं ऐसा करके कर्म किया तो नाश है। मैं ये बुद्धि हूं, मैं ये जानने वाली हूं ऐसा समझ के कर्म किया तो नाश है। मात्र सूक्ष्म बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से, आस्तिक्य श्रद्धा से ही ये कर्म करना उचित है, नहीं तो नाश है। ऐसा पुष्प दंत जी परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं और परमात्मा को कह भी रहे हैं कि कभी गलती से भी मुझसे ऐसा काम हो भी गया हो तो वो आप क्षम्य गणना। विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व, ये ऐसी इसलिए गाते हैं, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु, बार बार ये कहना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि अनजाने में भी हो गया तो हे परमात्मा आप दयालु है, हमें क्षम्य करना। ऐसे ही परमात्मा और गुरुजनों की कृपा हम पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना।

0: சிவாய. யூஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரி உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: வோ அசங்க ஹை. அப் ஜோ ஹை யே சங்கேத் கியா ஔர் ஜப் வோ ஊர்த் கர் தேதா, இஸ்லியே யோகியோ கி ஜஹாங் சர்ச்சா ஆதி ஹை, தோ பிராணாயாம் ஆதி கி சர்ச்சா கி கயி. உஸ் பிராணாயாம் கே பேத் பத்லாயே கயே, கும்பக் ரேச்சக் ஆதி ஔர் வஹீ பர் வஸ்த்ரிகா லம்பிகா ஆதி யே சர்ச்சாயே கி. யோகி பி ஜோ ஞான யோகி ஹோதா ஹை வோ க்யா கர்த்தா ஹை, லம்பிகா கே த்வாரா, லம்பிகா பிராணாயாம் கே த்வாரா வஹ பி உஸ் கோ ஊபர் ஹி வாபஸ் கர் தேதா ஹை, இஸ்லியே வோ பி க்யா ஹோ ஜாதா ஹை, தேஜஸ்வி ஹோதா ஹை. லேகன் யே கப் கர்த்தா ஹை, உஸ் யோக கி அவஸ்தா. லேகன் வித்தான கால் மே ஃபிர் உஸ்கா ஜோ ஹை வோ நீச்சே ஆனே லக்தா ஔர் ஃபிர் விவஹார் மே உஸ்கி பிரக்ரியா ஹோ ஜாதி, வியாவாரிக் ஹோ ஜாதா. तो ये सब चर्चा की गई. तो भगवान शिव क्या है, उसको ऊर्ध गति देने वाले ऊर्ध गति देते हैं, और ऊर्ध गति देते हैं इसलिए भगवान को जो है बोलते हो कि कितने समय तक बैठे रहे, तो बीते संबत सहस सतासी है ना, ऐसे भगवान. तो उनकी अंतर्गत ये सामर्थ्य है. अब विचार ये करना, ये गति हो. लेकिन जब वो नीचे आता है तो वायु के साथ में, और वायु के साथ में आकर के मूलाधार आदि उसे पहुंचता है और सारे शरीर को नियमित रूप से क्रिया करने की सामर्थ्य देता. ये नियम है. अब जो है ये नियम है, लेकिन ये नियम होते हुए भी नियम जो है किसके बल से हो रहा है, तो उसी शिव की बल से. और वह शिव सारा बल देते हुए भी कैसा है, का असंग भी है. तो ये वायु भी क्या है, वायु भी वैसे भी है माया का रूप ही. पार्वती को भी इसीलिए भय लगा, वो भी प्रकृति का प्रतीक. तो एक अंश को लेकर के, जैसे भगवान का एक अंश है नीला पड़ गया, लेकिन वह नीला होते हुए भी उनको विकृत नहीं कर सका, असंगता उनकी बनी रही. इसी प्रकार से समस्त संसार हमने कैसा कहा, तो शास्त्र में पढ़ते हो अनरथ, क्या कहा, जो रित नहीं है. क्या कहते हो, संसार कैसा है, अनरथ, जो रित नहीं है. लेकिन उसमें रितता कहां से आती है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से तो वायु दिखलाई दे रही, लेकिन वायु भी उसको लेकर के आती है कहां से, तो वो आत्म तत्व है, वो शिव तत्व है, ऐसा संकेत किया. और वो शिव तत्व है वो कैसा है, वो वस्तुतः सत्य है. वो कैसा है, वस्तुतः अपरिवर्तनीय है. और वायु जो है वो कैसा है, नियमत. लेकिन वो भी नियम उसका कब चलता है, तो उसी की सन्निधि को लेकर के. उसकी सन्निधि के बगैर वो नियम नहीं चलता. तो ये सब व्यावहारिक, इसको मायिक जिसको कहते हो, तो उसके अंतर्गत व्यवहारिक और मायिक के अंतर्गत भी जो अमृतत्व दिखाई दे रहा है, जो चेतनत्व दिखाई दे रहा है, वो किसके बल पर है, तो रित सत्य के बल पर, इसलिए उसे रित सत्य कहा. अब जो उसकी वस्तु रूपता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता. तो अब यहां पर हमको तो प्रत्यक्ष रूप से वायु ही प्राण क्रिया हो रही है, है नवज देखते हो तो कहते हां है, और नवज नहीं चल रही है, नहीं मालूम पड़ रही, तो कहते नहीं है, है ना. तो रित और रित दोनों का प्रयोग कर देते. तो अब उसे है ये सत्य, उसे कब कहते हो, उसकी सत्ता को स्वीकार कब करते हो, तो वायु को लेकर के. और वायु के अभाव में, वायु के नियम के अभाव में उसे अनंत सिद्ध कर देते. तो अब यहां पर जो है जितना भी ये कार्य है, तो सब कैसा है, कहा मने अनृत होते हुए भी रित है. किसके बल पर है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से तो प्राण शक्ति दिखलाई दे रही, वायु दिखलाई दे रही, लेकिन वायु भी किसके बल से करती है, तो उसी के बल से। इसलिए कुछ लोग गाते हैं ना, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, वायु आती जाती उसको लेकर के, तो उसी के साथ में ये मैं स्फुटित होता है, इसके बगैर मैं का स्फुटन हो सकता नहीं। तो अब जो है सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जुआ बिन दंत है, वैठ एकांत जमा कर आसन, मूंद लिए दो कान इत्यादि करके संकेत वहां करते, और अनहद नांद सुने लाघट में है, ये सब चर्चा उसकी करते हो। तो ये जो इस प्रकार से यहां पर संकेत ये किया गया कि भगवान शिव जो हैं वो सत्चित आनंद रूप से वो क्या हैं, तो सत्य है, लेकिन उन्हीं की सत्यता को लेकर के, उपाधि विशेष को लेकर के, वायु को लेकर के जो नियम चल रहा है, उस नियम को लेकर के भी सत्यता प्रतीत हो रही है, सत्ता प्रतीत हो रही, तो वो भी सत्य है, लेकिन वो सत्य कैसा है, रित सत्य, व्यावहारिक सत्य है, और व्यावहारिक सत्य जो है कब तक रहता, तो उसी की सन्निधि काल तक रहता। जैसे निरुपाधिक जो है वह कैसा है, सत्य है, और सोपाधिक वही रित है। सीधा सा तात्पर्य समझ, तो सोपाधिक जो होकर के वो रित है और निरुपाधिक होकर के सत है। इसलिए यहां पर वायु को ही हम प्रत्यक्ष रूप से समझ रहे, इसलिए कह देते हैं ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी, ये चर्चा की है। लेकिन यथार्थता क्या है, तो इसका संकेत किया गया। अब मृत्यु से सब लोग भयभीत होते, मृत्यु से क्या होता, मृत्यु से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भयभीत, लेकिन क्या भय करने से मृत्यु हमें छोड़ देगी, भय करने से मृत्यु किसी को छोड़ सकती नहीं। मृत्युर विभेषी किन तात, क्या तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे, कहा हां, तो कहा भय क्यों कर रहे हो, उस भय से क्या मृत्यु छोड़ देगी। एक नियम होता ना, भालू होता, भालू वो क्या करता है, जो उससे डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो फिर उसे वो ग्रहण नहीं करता, छोड़ देता, कहा ऐसे ही मृत्यु छोड़ दे, कहा मृत्यु ऐसे नहीं छोड़ती, जिसका जन्म होता उसकी मृत्यु होती, तो क्या करना चाहिए, यदि मृत्यु से बचने का फिर उपाय क्या है, तो कहने लगे मृत्यु यदि छोड़ती है तो किसको छोड़ती, तो शास्त्र कहता है अजात शत्रु है ना, कहा मृत्यु जो अजात है, जिसका जन्म नहीं होता, ऐसे उसी से भयभीत होती, उसी को छोड़ती है, तो अजातम मृत्युम विमुंचती, अजात को ही मृत्यु जो है त्याग करती। इसलिए अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने जब मृत्यु रुके लेकर के सब मारे जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और दुखी हुआ अर्जुन, तो अर्जुन को उपदेश देना कहां से शुरू किया, कहा मृत्यु किसे नहीं छू सकती, तो यही कहा वेदा विनाशिनम हिनम अज नित्यम इत्यादि करके कहा, अज है, अजता ही बताए, तो जो अजात है उसी को मृत्यु ग्रहण नहीं कर सकती, और यदि मृत्यु से बचना है तो क्या करना होगा, क्या उपाय है, तो है क्या होना होगा, कहा अजात जन्मनी, तुम भी अजात जन्मा हो जाओ, और जब अजात जन्म वाले हो जाओगे तो अपने जन्म को अजातता में कर दो, तो कहा मृत्यु तुमको भी नहीं पकड़। इसलिए यहां पर भी वही संकेत किया गया, सत्यम ऋतम इत्यादि सब, और ये सब देवताओं से प्रार्थना करते हुए ऋषि की जो जिज्ञासा है वो केवल प्रार्थना उपासना मात्र नहीं, ये तो बल प्राप्त करना चाहता है, वो साधन चतुष्टय संपन्न है, उसकी जिज्ञासा क्या है, अजात पना, और वही जो है मृत्यु से उसे निवृत्त कर सकता, वहीं पर उसकी मृत्यु आदि की सब रहता हो सकती। तो ये जो चर्चा यहां पर की गई है, इसलिए संकेत किया गया कि वेदा विनाशिनम नित्यम ये नमजव्यम, वहां संकेत कर दिया, और आगे जो भगवान ने कहा ऊर्ध मूल मदा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छन्नांश्यस्य है पर्णानी यस्तम वेद स वेद, वहां इतने अंश को लो, यस्तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वही वेदवेत्ता, ये संकेत किया, लेकिन बताया किसको? संसार रूपी वृक्ष को। संसार रूपी वृक्ष की चर्चा का उसको जान लेता है, वो उसे जान लेता, लेकिन कैसे जान लेता? तो वहां संकेत कर दिया ऊर्ध्वता की चर्चा की। मूल क्या है उसका, कारण क्या है? तो कहा ऊर्ध्व, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, और उससे ही यह सारा का सारा वृक्ष है। और वृक्ष में क्या है? नियम होते। क्या नियम होता है वृक्ष में? भी क्या होता है? नियम होता है। वृक्ष जो है बीज से अंकुरित होता है, कार्ड से अंकुरित होता है, उसमें तना, शाखा, प्रशाखा, पत्ते, और पत्तों से पुष्प, और पुष्पों से परक्रम से फल, और फल किसका कारण? ये तो क्रम से चल गए, फल किसका कारण? तो फल है दुख का कारण। फल किसका कारण? दुख का ही कारण। क्योंकि फल होगा तो आप उसका स्वाद लोगे, लेकिन फिर तृप्त हो जाओगे, फिर तृप्ति चाहिए, तो पुनः उससे बीज से फिर वृक्ष बनेगा, फिर ये प्रसंखला जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब पत्ते क्या करते हैं? तो उनको बतला दिया, वो धर्म को फायदा करते, उससे फल आदि मिलता, तो ये सारी बातें भी हैं। अब यहां संकेत करते हैं कि यदि ऊर्ध्व को जान लिया तो क्या होता है? तो कहा वही वास्तव में वेदवित है, और वेदवित है वो, तो उसके लिए क्या कह दिया? केवल वृक्ष रूप से जानना नहीं, किंतु वृक्ष को कारण रूप से जानना। वृक्ष की कारणता क्या है? वृक्ष का मूल क्या है? वृक्ष में जो सत्य है वो क्या है, और रित है वो क्या? अन्य सब तो रित है, लेकिन वृक्ष का जो मूल है वही क्या है? सत्य। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही क्या किया गया? हाँ, वो तो कहा ही, वो तो उसकी सृष्टि की प्रक्रिया को बतलाया, लेकिन मूल की चर्चा करते हुए क्या कहा? प्रथम स्कंद के पहले दूसरे श्लोक में ही संभवतः आता है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र निर्मसराणाम सताम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रयो न मूलनम। तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला कौन है? तो क्या संकेत किया? वास्तव वस्तु, जो वास्तव है, जिसमें कभी भी परिवर्तन जिस वस्तु में नहीं होता है, ऐसी वो है, वही क्या है? शिवदम, सम करने वाली। इसलिए नाम ही रख दिया सम करोति शिव शंकर, ऐसा संकेत कर दिया। तो वही समन कर सकता है, तो वो शिवदम, वही शिवत्व को दे सकता है, कल्याण को दे सकता है, वो वस्तु ऐसी है। लेकिन उसे प्राप्त कैसे करोगे? तब उसके लिए उपायों की भी चर्चा कर दी। क्या कर दी? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र निर्मत्सराणा सताम, जो सज्जन पुरुष हैं, जो साध पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो अन्वेषण कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? का धर्म में से भी अच्छी तरह से खींच लेते हैं, उज्जित निकाल देते, तो धर्म के नियम को ही उज्जित कर देते। धर्म का नियम क्या है? तो पत्ते क्या है? धर्म के प्रतीक, और धर्म से क्या बनेगा? फल मिलेगा दृष्टदृष्ट होकर को, तो वहां तो दुखी रहेगा, लेकिन ऐसे उसको भी जिसने जो है क्या है, उज्जित कर दिया, खींच लिया, निकाल दिया, और निर्मस्त्राणाम सारे मत्सर जिसके हृदय से निकल गई, ऐसा जो सज्जन पुरुष है, ऐसा जो जिज्ञासु है, वही क्या करता? वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, कहीं अन्यत्र नहीं, अत्रैव, जो शिव को, शिवत्व को देने वाली, कल्याण को देने वाली है, ऐसी उस वस्तु को वो जान लेता है, और उसे जान लेता है तो क्या है वो वस्तु करती? तीनों तापों को ही समाप्त कर देती, तो वहां मृत्यु आदि कहां रही? इन सबकी निवृत्ति उसकी हो जाती, ऐसा संकेत वहां भी किया। इसलिए यहां भी कहते हैं कि जानना किसको है? तो कहने लगे अजातम, जो अजात है, जिसका जन्म हुआ ही नहीं, और जन्म किसका नहीं हुआ? तो एकमात्र वस्तु है, ऐसी उस वस्तु के जानने की ऋषि की जिज्ञासा है। इसलिए इन सब से प्रार्थना करते हुए, अर्थात इन गुणों से, इन वनों से संपन्न होते हुए, और फिर ऋषि जिज्ञासा संकेत करता है कि व्यावहारिक सत्य क्यों? नियम ये है, लाइबनीज और ह्यूम की पाश्चात्य दार्शनिक हुए, उनकी चर्चा हुई। लाइबनीज तो है बहुत को मानने वाला, अनेकत्व को मानने वाला, बहुत चिदड़ुवादी है, और ह्यूम जो है वो अद्वैतवादी। ह्यूम ने कहा कि मैं नहीं जानता मेरे अलावा संसार में कोई है, लेकिन उसने दर्शन ग्रंथ लिखा। लाइबनीज ने प्रश्न किया, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे अलावा कोई है, तो जब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो ये ग्रंथ किसके लिए, फिर इस ग्रंथ का लेखन कैसे? तब उसने वहां संकेत किया जैसे आपके पंचदशीकार ने लिखा, क्योंकि प्रश्न उत्तर कहां होता, द्वैत भाषया, और पहले द्वैत की सिद्धि तब अद्वैत की सिद्धि, द्वैत की सिद्धि, अद्वैत तो सिद्ध ही है लेकिन उसे सिद्ध नहीं करना, लेकिन द्वैत सिद्ध होगा तो द्वैत की सिद्धि करके जब उसका निवारण होता तभी अद्वैत की सिद्धि, तभी उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से वहां पर भी उसने चर्चा की। तो वैसे ही यहां पर जब तक इस व्यवहारिक जगत में नहीं आते हैं तब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं, और व्यवहारिक जगत जो है या मायिक जगत जो है उसमें क्या है, रितता है, वो रितता भी किसको लेकर के है, वो नियमता है वो किसको लेकर के है, तो उसी को लेकर, लेकिन वो सारी की सारी रितता होने पर भी, नियमितता होने पर भी, वो सर्वथा भगवान शिव की जैसे चर्चा की वो असंग रूप रहते हैं, वैसे ही वो सारे धर्मों से असंग रहने वाला है, ऐसे उस तत्व को ऋषि जानना चाहता है। इसलिए वह यहां संकेत करता है कि वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मवासी है, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूं, और जो है तुम्ही ब्रह्म हो, और कहने लगे तुम्ही ऋत हो, तुम्ही सत्य हो, ये सब चर्चा की। तो इस प्रकार से उसे ऋत सत्य इत्यादि कहके, और वास्तविकता ये है, गीता में आपने पढ़ा सद असत्या अहम अर्जुन, क्या कहा, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, इसका क्या मतलब, मृत्यु भी मैं हूं और अमृत भी मैं हूं, इसका मतलब है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य भी सापेक्षिक है। सत्य शब्द का प्रयोग कब होगा, असत्य को लेकर के होगा, असत्य का प्रयोग सत्य को लेकर के, इस सापेक्ष शब्द इंद्रियन को द्वंद का, इसलिए कहा निर्माण मोहा है, द्वंद्विर्मुक्ता, ये सब चर्चा की। तो ये सारी की सारी भगवान कहते हैं कि सत और असत जो भी सब क्या है, व्यवहार में ही तो होंगे, ये सब व्यवहारिकता है, मायक है, और ये जो सब है वो उनका अधिष्ठान कौन है, तो भगवान ने क्या कहा, अहम। तो भगवान मृत्यु नहीं, भगवान क्या है, भगवान तो जो हैं सो हैं, लेकिन यहां संकेत कर दिया गया कि ब्रह्म सत्ता त्रिक सत्ता कत्वाभाव, उसके बगैर कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, जब नहीं है तो कौन जानेगा कौन जनाएगा, लेकिन फिर भी कहने लगे कि उसी में ये सारा आरोपण है, वही सबका अधिष्ठान है, और उन आरोपणों का जब हम जो है आरोपण करते हैं, गर्मी पड़ती है, पसीना आता है, हैं? शरीर बदबू देने लगता है, तो क्या करते हो, उपाय करते हो, क्या उपाय करते हो, नाइसिल पाउडर लगाते हो, और नाइसिल पाउडर लगाते हो, लेकिन उसको कब तक लगाए रहते हो, यदि उसे लगाए रहो कहो इसने तो सुख दिया ऐसे नहीं हटाएंगे, तो क्या करेगा, वो और भी दुख देने लगेगा, ठीक, फिर क्या करते हो, उसका भी आप पहले उसे धारण करते हो, आरोप करते हो, फिर उसका भी निवारण कर, और निवारण कर देते हो तो आप ही आप बचते हो, है ना। ऐसे ही यहां पर ये माया ज्ञान आदि जो भी जो है सत्य असत्य आदि सबका आरोपण करके, और फिर इनका जब निराकरण कर दिया जाता है, तब जो अवशेष तया शेष बचता है वही कौन है, तो उसी की तरफ भगवान संकेत करते कि वो मैं। हम पढ़ते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां भी हमारा अहम क्या है, अहम में ही तो सारे धर्म है, लेकिन जब धर्मों का ही परित्याग कर दिया तो जो जिसमें धर्म रहेंगे वो कहां से रह जाएगा, और वो नहीं रहेगा तो तब जो सत्ता बचती है वही मूल सत्ता। इसलिए हमारा जो अहम है कि अभी इसका भी जो आलंबन है वही जो है क्या है, वास्तव में शिव रूप है, और वही है अजात। ऐसे अजात को जानने की ऋषि की इच्छा है, इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि इसको जानने के लिए भी वो जो ऋत सत्य है उसका जब तक सहारा नहीं लेंगे तब तक उसे जाना जा सकता नहीं। इसलिए कहा कि वायु तुम ही जो है प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही जो है रित हो, तुम्ही जो है सत्य ब्रह्म हो, और ये सब कहते हुए फिर संकेत करते हैं जिस व्यापक शक्ति से, जिस सोम शक्ति को लेकर के चर्चा की थी उसके लिए चर्चा कर दी कि वही क्या करो, तद वक्तारम अवतु है महम अवतु, मेरी भी रक्षा कर और वक्ता की भी, अर्थात बगैर इसके जो है विश्लेषण होगा कैसे, बगैर इसके अनुसंधान होगा कैसे, जब तक संशय नहीं होगा, और फिर संशय जब तक होगा नहीं तो मथानी नहीं चलेगी, और मथानी नहीं चलेगी तो रस्सी के बगैर मथानी नहीं चलती, और मथानी नहीं चलेगी तो दही टूटेगा नहीं, और दही टूटेगा नहीं तो मक्खन भी निकलेगा। ये सब प्रक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से प्रश्न होना, संशय होना, संदेह होना, और फिर उन संदेहों का जो है क्या करना, समाधान होना, और फिर समाधान होते हुए जब समाधान और संदेह से भी क्या निकला, का तात्पर्य निकला, और जो तात्पर्य निकला फिर उसको भी संकेत आगे तुलसीदास ने कह दिया, बढ़िया पवित्र मक्खन मिल गया। लेकिन वो कहा मक्खन भी मिल गया, लेकिन ये मक्खन में ही रह गए तो अभी क्या है, तो सड़ांध आ जाएगी, तो क्या करना, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुभा शुभ लाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल, तो उसमें जो आसक्ति आदि छाछ आदि का अंश होता है वो भी जल जाता है, तो वो योग अग्नि, और वो योग अग्नि क्या है, तो आचार्य शंकर की दृष्टि में देखोगे, उपनिषद की दृष्टि में देखोगे तो वहां पर भी उन्होंने यहां सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ की बात कह दी। वहां उन्होंने कहा अप्रोच्छानुभूति के अंतर्गत निराकार तया वृत्तया, पहले क्या करो, जो नाना प्रकार की वृत्तियां हैं उनको पहले हटाओ। कहा उनको हटा देंगे तो शून्य बाद में चले जाएंगे, शून्य हो जाए, कुछ नहीं रहा तो हमारी सत्ता ही नहीं रही, हम लोग घबरा जाते। कहने लगे नहीं नहीं, फिर क्या करो, कहा ब्रह्माकार तया पुनः, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जीवो ब्रह्म विना परा, इसका आधान करो। कहने लगे तो ये भी तो एक अहंकार हो गया। तो फिर कहने लगे वृत्ति विस्मरणम सम्यक, अब इस वृत्ति का भी त्याग, परिपाक होने, और जब त्याग हो गया तब क्या बचेगा, तो कहा समाधिर ज्ञान संगिक, तब ये ज्ञान स्वरूप जो है, प्रकाश स्वरूप है, वही केवल शेष बचेगा, और वही है वास्तव में समाधि, ऐसा संकेत कर दिया। तो ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर के ही वहां तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, रित को ही स्वीकार करना पड़ेगा, नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, हमारे जन्म मरण की जो है रहता भी नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर ऋषि जो है इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि वायो तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, और जो है मैंने तुम क्या हो, ऋतम बदिश्यामी सत्यम बदिश्यामी, तुम ही ऋत हो, तुम ही सत्य हो, और जब तक हमारी श्वास चल रही है और मय का स्फुरण हो रहा है तभी तक हम सत्य और असत्य का विश्लेषण कर पाते, और ये न हो तो सुसुप्ति अवस्था उदाहरण है इसका, तो वहां पर क्या होता, वहां पर क्या सत्य है क्या असत्य है ये नहीं। लेकिन उसके द्वारा ये नहीं कि सत्ता समाप्त हो गई, सुसुप्ति में भी तो तुम्हारी सत्ता है, आनंद का अनुभव करती, लेकिन वो भी अज्ञान करता है, मायक है। तो इसी प्रकार से जहां पर वो अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है, ऐसी जो स्थिति है वही है अजात, और उस अजातता की प्राप्ति के लिए ही सारा प्रयास होता, और रोज प्रयास में जो सफल हो जाता है उसका फिर जन्म ही नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती, और जन्म मृत्यु नहीं होती है तो न तो बाल्या वृद्धा और एवा आदि अवस्थाएं आती हैं, न उसमें कोई आमय आते हैं, सारे दुखों से वो रहित हो जाता है। ऐसा यहां इस उपनिषद का तात्पर्य है, उसी को लेकर के यहां चर्चा की जा रही, अब आगे चर्चा कल करेंगे। ओम।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. थैंक यू, ओम नमः शिवाय।
3: श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का छठा मंत्र है। छठा मंत्र का पाठ करिए। अग्निर्यत्राभिमच्छते वायुर्यत्राभिरुज्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। इसी का भाष्य चल रहा था। तो इसमें तीन बातें बताई गई है। इस मंत्र में ख्याल आए, तीन बातें बताई गई है, अग्नि, वायु और सोम। अग्नि से मतलब है वाणी का, तो वाणी को रोक दो। वाणी तीन प्रकार की है, परा पश्यंती और वैखरी। परा वाणी, पश्यंती वाणी और कोई भी वाणी हो, कोई भी वाक हो, समझे कि नहीं, इसको रोक दो। तो अग्नि शब्द से या अग्नि देवता उपलक्षित वाणी लेना, तो वाणी को रोक दो पहला। दूसरा क्या, वायु अभिमिच्छते ही यत्र, और जहां पर वायु माने या प्राण, अपान, बयान, उदान, समान आदि का है ना, ये पंचवायु है। तो पंचवायु उपलक्षित या प्राणायाम, यानी प्राण अपान के जो है ना प्राणायाम के चक्कर में मत पड़ो, बाण को रुक दो वहां। और तीसरा सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोमरस, जहां पर तुम्हारे मन जो सोमरस पान करके अर्थात आनंद का अनुभव करके शांत हो जाता है, ऐसे जो रस सोमरस है बात, सोम माने चंद्रमा, सोम माने सोमरस, सोम माने आनंद, ये तीनों। जहां मन को आनंद मिलता है वहां ही मन क्या कहते संजायते है। ये तीन बातें आप याद रखना इस मंत्र का ध्यान के लिए। अभी तीन ध्यान कहाँ करोगे ये बात बता रहे हैं। ध्यान कहाँ करोगे, ध्यान की जगह कहाँ है, पहले आपको यहाँ बतलाया था ना, प्राणा भाई की नहीं, ध्यान करने के लिए प्राणवंश उत्तरारणिम स्वदेह मरणिम कृत्वा प्राणवंश उत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवं पश्येत निगूढ़वत। ये भूल गया, देवता का दर्शन करना, आत्मा साक्षात्कार करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्व अपने देह को अरणि बनाओ, आधा अरणि प्राणव को, ओंकार को आनी बात, क्या बनाओगे, ऊपर का अरण्य, उत्तरारण्य। तो उत्तरारण्य या राधारण्य क्या करेगा, इनका मंथन करोगे। तो मंथन करने से जैसे दूध से अथवा दही से घी निकलता, मक्खन निकलता है, समझे कि नहीं, ऐसे प्राण अपान का मंथन करोगे, उत्तरारणी और आधारणी का मंथन करोगे तो उसमें से क्या निकालेगा, देवम प्रणव तो अरणी हो गया, देवम आत्मानम पश्चित जानियत बिजानियत, आत्मा का जानो, आत्मा को जानो, ये बताया था। निगुड़ कहते छिपा हुआ, जैसे दूध के अंदर, दूध के अंदर अथवा दही के अंदर मक्खन छिपा हुआ है ना, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपा हुआ है, अग्नि कहाँ है, लकड़ी के अंदर छिपी हुई है कि नहीं, तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, दूध के अंदर जो है ना मक्खन छिपा हुआ है, स्रोत के अंदर जल के अंदर स्रोत के अंदर जल छिपा हुआ है, नमक के अंदर खरापन छिपा हुआ है, अन्य गन्ना के अंदर मीठा छिपा, शक्कर छिपा हुआ है, ऐसी आत्मा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। छिपा हुआ का मतलब समझ में व्यापक है, व्याप्त है। क्यों? गन्ना को जब जब घिसो चूसोगे नहीं तो मीठा शक्कर नहीं आएगा। हाँ, नमक के अंदर से खारापन कैसे निकलेगा? नमक के अंदर खारापन है, दिखता है? क्यों? नमक के खारापन जानने के लिए रसना इंद्रिया चाहिए, समझोगे नहीं। लकड़ी की अग्नि को जानने के लिए मंथन करना चाहिए, घर्षण करना चाहिए। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए उत्तरारणी और अधरणी के मंथन करोगे। ओम या जो है ना उद्गीत है, ऊर्जस्वर से जोर से बोलो। जोर से बोलने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। ओंकार के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है। हमारे यह कहावत है ना, किसने पूछा था महाराज ये सब मंगलाचरण क्यों किया जाए, शांति पाठ क्यों किया जाए? अरे शांति पाठ नहीं करोगे क्या, अशांति पाठ करोगे क्या? घर में अशांति अशांति, अशांति को दूर करना तो शांति पाठ करना। भद्रम करने भी श्रृणुया मदेव भद्रम वैसे माक्षवीर जत्रा स्थिर रंग सुनो भीर व्यसे मदेव हितम तथा मंत्र क्या है? भद्रम करने भी श्रृणुया मदेव। हाँ सुने सुने, क्या सुने? भद्रम श्रृणुया। तो तुम भद्र को सुनोगे नहीं, अच्छा को सुनोगे नहीं, मंगलमय का बात सुनोगे नहीं, अच्छा लगे ऐसी बात सुनोगे नहीं, मधुर वाणी सुनोगे नहीं, वाणी में मधुरता नहीं आएगी तो क्या सुनोगे? इसीलिए मंगलाचरण जो हम लोग करते हैं ना, शांति पाठ करते, दस शांति पाठ है। यहाँ तो अभी बंद हो गया ना, पहले होते थे यहाँ भी, शुरू शुरू में शांति पाठ यहाँ पूरा होते थे, और धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उस श्रेणी में उस समय का एक ही रह गया, कुशल भाई नहीं, सेठी रह गया। कुशल भाई तो बाद में आया। ये उस समय शुरू शुरू से सुशील रुंगटा, सुशील कुमार रुंगटा थे, डॉक्टर मेहना विनोद भाई, विनोद मेहता जी थे। हाँ वो वहां रहता था ना, तीर्थ में रहता था। बीमार पड़ा था एक बार, भयंकर बीमार पड़ा था, हम गए थे देखने के लिए। तो रोंगटा था एक, बलसाड़ा था, बलसाड़ा। हाँ नहीं बात। ये बैठते थे, ये आते थे, सेठी पूरा रहता था आज का नहीं। वो हम लोग पावल बाबा थे ना, उस समय में वहाँ कार पार्क में आते थे, कार पार्क आते ना, फिर ईश्वर मैदान, ईश्वर भवन, आप यहाँ है, कई जगह में बदला है, बड़ा सत्संग है। और ये वो और भी कई थे। हाँ सरस्वती बहन है, सरस्वती बहन तो भूल गया मैंने। तो कहने का मतलब ये सब जो है ना, पहले शांति पाठ जो है ना होते थे। अभी भी हमारे बिल्ले पाले और घाट कुंवर संन्यास आश्रम और उल्लासनगर, इस पर 10 शांति पाठ होते हैं, 10 शांति पाठ। कहने का मतलब बस देखो सहना भव तो सहनो भुनक तो सह भेगा, कितना बढ़िया मंत्र है ये। हाँ क्यों नहीं करेंगे। ये सब जो है ना मंगलाचरण करना चाहिए, वैदिक मंगलाचरण है, क्योंकि सबकी आयु खत्म हो रहा है ना। हाँ वही है। देखो शांति पाठ शांति लाता है। तो चलिए तो ये तीन जो है ना, तीन बातें इस मंत्र में बतलाया गया ध्यान करने के लिए, याद रखना। हाँ, ध्यान करने के लिए। अभी इसका दूसरा अर्थ भगवान भाष्यकार जो है ना कर रहे थे, द्वितीय अर्थ ख्याल है कि नहीं। आग्नेय जत्र अभिमच्छते इत्यत्र अपरा व्याख्या, पेज नंबर 144 देखना। अपरा व्याख्या आपको मिला नहीं ना? अच्छा, छठा मंत्र का 20 में तो कहते हैं कि भाई इसका दूसरा व्याख्या सुनो भाष्यकर का। अग्नि ही जत्र अभिमच्छते, इसके अंदर अग्नि को अलग कर दिया तो अग्नि का अर्थ परमात्मा कर दिया। अग्नि परमात्मा है, क्यों किया अग्नि का अर्थ परमात्मा? अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव दो है, दायिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति। याद रखना, हर वस्तु का शक्ति स्वभाव अलग अलग है। अग्नि का स्वभाव दायिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति। हाँ, तो दायिका शक्ति पे क्या करेगा? दाह करेगा। दाह करेगा माने जलाएगा, अग्नि दाह करेगा जलाएगा। तो परमात्मा को यहाँ अग्नि बता दिया, तो परमात्मा रूपी जो अग्नि है ये अग्नि किसको जलाएगा? तो कहते हैं कि यहाँ बता दिया अविद्या और तत्कार्य, तत्कार्य से दाहकत्वात्, इसीलिए अग्नि का परमात्मा, अग्नि को परमात्मा कहा। अविद्या, अविद्या का जो कार्य उस कार्य को दाह करता है। तो अविद्या क्या से जाए? अतस्मिन तद बुद्धि, जो वस्तु जैसा नहीं है उसको वैसा बता देना अविद्या का काम है। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिषे पंच क्लेशाः, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम। अविद्या क्या से जाए? न विद्यते विद्या जात्र अविद्या, विद्या से भिन्न जो है उसका नाम अविद्या। तो अविद्या का कार्य क्या है? अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ, तो अविद्या सुखे अनित्य असुची दुख अनात्मा सु नित्य सुशी सुख आत्मख्याति अविद्या। अविद्या क्या से जाए? तो योग दर्शन कहते अनित्य असुशी दुख अनात्मा में नित्य सुशी सुख आत्मख्याति, अन्य में अन्य का तस्मिन तद्बुद्धि, जो वस्तु जैसा नहीं है उसको वैसा बता देने का नाम अविद्या है। सीधी बात, उल्टा ज्ञान, समझे कि नहीं? तो अनित्य, अनित्य को अनित्य का नित्य, दुखात्मक संसार को सुखरूप, अपवित्र संसार को शरीर को, ये अपवित्र शब्द शरीर ले लेने का, सारा संसार को मत लेना अभी। अपवित्र शरीर को पवित्र बना देना, बा हमें कितना सुख, स्नान करके आया पवित्र हो गया, पाउडर लगाया तेल लगाया कपड़ा पहना पवित्र हो गया, पहली व्यवहारिक पवित्रता है, ठीक है। परंतु श्रुति कहती है अभी देहो देहो नित्य अपवित्र है, देह जो है नित्य अपवित्र है। क्यों नित्य अपवित्र है? तो हम अपवित्र क्यों मानते हैं? आत्मा का संबंध है इसीलिए पवित्र मानते हैं। पवित्र जो है ना, क्यों? नित्य सुख स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा का निवास है, इसीलिए हमको इस शरीर को पवित्र मानते हैं। तो असुशी को सुशी मानना, अनित्य को नित्य मानना, दुखात्मा को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या का काम है। तो काम है का मतलब जो वस्तु जैसा नहीं उसका ऐसा बतला देने का नाम अविद्या, ये समझ लेने का। तो हमारे शरीर पवित्र है कि अपवित्र है? अरे इसमें तो अस्थि मांस मेद मज्जा बाघ पित्त कप मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तु का थैली है, समुदाय है, तो इसको हमने पवित्र माना, अशुचि को शुचि माना, अनित्य संसार को नित्य माना, दुखात्मक संसार को सुखात्मक माना। तो अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम, तो अविद्या का खेत उत्तर, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये चारों का कारण कौन है? अविद्या है। ऐसी अविद्या और अविद्या के कार्य समुदायों को जला देने के कारण इस आत्मा का नाम अग्नि रखा है। परमात्मा का हो अग्नि का हो बात एक ही है, अग्नि का हो परमात्मा का हो। दागत्वा उक्तम स, कहा भी है, कहा कहा गीता में, अहम अज्ञान अजमतम नाशयामी आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भाष्यता, अहम अज्ञान अजमतम नाशयामी आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ आत्मभाव में स्थित होकर के मैं आपको नहीं मिला डॉक्टर साहब को क्या बताइए 135 नंबर नहीं मिला आपको? हाँ ठीक है, क्योंकि पन्ना उलट रहा था तो देखता अकेला मिला नहीं। हाँ ये तो बात है ना। तो देखो अहम अज्ञानसम तम नाशयामी, अहम नाशयामी मैं नाश करता हूं, क्या नाश करता हूं? अज्ञानजम तम अज्ञानात जायते थी अज्ञानज, अज्ञान से पैदा होने वाला, क्या अज्ञान से पैदा होने वाला? अंधकार, तम मानी अंधकार। अहम अज्ञानजम तम नाशयामी, कैसे नाश करते हो दीपक लेकर के?

अनासारी, व्यभिचारी, दुराचारी, कोई आसारी बनते ना, वेदांताचारी, न्यायासारी, ये भी तो आसारी आसार वो आसार है, ये आसारी है। अपिशेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? तो अनन्य, अनन्य माने नरते अन्य जस्मिन, जिसमें अन्य नहीं रहता है, अर्थात भेद नहीं रहता है। अनन्य चिंतन तो माम जय जना परिउपासते तेषां नित्याभिषुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आया कि नहीं? गीता में आया है अनन्य। वो स्वामी महाराज अखंडानंद जी महाराज जी ने गीता में लिखा, गीता में नहीं, ये किस पुस्तक में लिखा है, तो एक बल्लभ आचार्य के आचार्य गया वृंदावन, तो परिक्रमा में गया, तो परिक्रमा के रास्ता में एक महात्मा का एक दिन पड़ाव डाला महात्मा के आश्रम के पास में, तो पूछा कि इस जगह में कोई महात्मा रहते? बोला हाँ महात्मा एक रहते हैं। बोले किधर? दर्शन कर आऊ, चलो। तो महात्मा के दर्शन करने गए, है नहीं बात? आप लोग यात्रा करने जाते हो, कभी महात्मा के दर्शन करने जाते हो तीर्थ स्थान में? होता नहीं, कोई नहीं जाता है। हाँ वही जाते, होटल में जाते हैं, कौन होटल बढ़िया है, कौन दरवाजा बढ़िया है देखते हो। और उसमें अच्छे अच्छे महात्मा जाते हैं ना, तो महात्मा का पहले दर्शन करते हैं तीर्थ स्थान में। पहले महात्मा का दर्शन करो, देव का दर्शन करो, तीर्थ स्थान जल आना, गंगा जल, जमुना जल, नदी आदि का दर्शन करो, ये महात्मा होता है। तो दर्शन करने गए उस तक, तो गया था जंगल में गाय के लिए घास लेने के लिए, तो बैठा रहा, आया घास का वो गाठरी नीचे उतरा, तो पूछा आप कौन है, घास लेकर आए कौन है? बोले मैं अनन्य हूं। अनन्य है? तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं फनन्य हूं। बोले फनन्य क्या होता है? बोला अनन्य क्या होता है? और अनन्य और फनन्य को जानो, जो अनन्य है वो फनन्य है, जो फनन्य है वो अनन्य है। जहां अन्य को जानता नहीं, फनन्य का मतलब कहते जो राम कृष्ण के सिवा दूसरा का नाम भी नहीं जानता है, उसका नाम फनन्य। और कृष्ण के सिवा जो और के जानता है, राम है, हनुमान जी है, फलाना है, ढेमका है, फलाना देवता है, फलाना है, उसको जानता, उसका नाम अनन्य। ऐसे व्याख्या कर दिया है। तो कहने का मतलब अनन्य भाव जो भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान कहते वो मैं क्या करता हूं, उसके हृदय में बैठ करके उसके अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधकार को जला करके भस्म कर देता हूं। क्या अन्य का नाम भी नहीं लेना, नाम लेना नहीं, मैं तो एक ही एक अभेद दर्शन करता हूं। अभेद अभेद दर्शनम ज्ञानम, अज्ञानम भेद दर्शनम, जहां भेद आएगा वहां अज्ञान है, समझे कि नहीं? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अज्ञानम भेद दर्शनम, अज्ञम सत मोक्ष लाभाय, मृत्यवे जन्म मृत्यवे द्वितीय जन्म मृत्यवे है। अभी समझ में आया नहीं? अनन्य का मतलब अभिदर्शन, अनन्य का मतलब अभिदर्शन। तो अभिदर्शन का नाम ज्ञान है, भेद दर्शन का नाम अज्ञान है। जो अन्य को जानता है वो भेद दर्शन है। तो अभेद दर्शन क्या करेगा? ज्ञान के लिए। भेद दर्शन क्या करेगा? अज्ञान के लिए। तो अज्ञान क्या करेगा? जन्म मृत्यु देगा। भेद दर्शन क्या करेगा या अभेद दर्शन क्या करेगा? मोक्ष देगा। अज्ञम सात मोक्ष लाभाय, द्वितीयम नहीं समझे? द्वैत द्वैत, हाँ,

0: द्वितीय जन्म मृत्यु को देगा, भेद दर्शन जन्म मृत्यु को देगा। जब तक भेद दर्शन बना रहेगा तब तक जन्म मृत्यु के छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, ये किससे? भगवान का प्रागट्य होने पर भी अज्ञान का नाश कहाँ होगा? भगवान कहते मैं अज्ञान नाश करने की कृपा करूं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कारण शरीर, कारण शरीर हुआ अज्ञान, तो अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से, तो ज्ञान होगा तब ना अज्ञान नाश होगा। हाँ, कारण शरीर का हो अज्ञान का हो बात एक ही है, नहीं बात? कारण शरीर का हो अथवा अज्ञान का हो, नाश एक ही बात है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

त्वावायवो वायवस्त्वा त्वावायवः वायवस्थस्थ वायवो वायवस्थ स्थोपायव उपायवस्थस्थोपायवः उपायवस्थस्थोपायव उपायवस्थ उपायव इत्युपायवः स्थदेवो देवस्थस्थदेवः देवो वो वो देवो देवो वः वत्सविता सविता वो वत्सविता सविता प्रप्रसविता सविता प्रार्पयत्वर्पयतु प्रप्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आप्यायध्वं प्यायध्वमाप्यायध्वं प्याय

निषङ्गिना इषु धिमते तस्काराणाम् पताये नमः। नमसृकायिभ्यो जिघा अज्ञ सद्भ्योमुष्णताम् पताये नमो नमो।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Jnana Kriye Sive Nikyat Sankrante Sarvajantusu. अब ये केवल मनुष्य की बात नहीं कर लेना, सर्व जंतुसु, अब छोटी सी मुंगिया चींटी है ना, लाल चींटी को मुंगी कहते हैं ना गुजरात में, क्या कहते हो है? कीड़ी कीड़ी है, लाल चींटी छोटी सी है, उसमें भी ये मीठा है, ये मीठा इतर है, इसमें मीठापना नहीं है। ये ज्ञान जानने की क्षमता शिव से जुड़ने के कारण ही आई है। चींटी में क्या ज्ञान शक्ति नहीं है? ये हमारे बिरादरी के हैं, उनकी एक भूल होती, एक झुंड होता है, ये हमारे जाति के हैं, सूंघ लेते हैं तो पहचान लेते हैं हमारे ग्रुप का है चींटियां, और ये रास्ता सीधा हमारा चलने का है तो सूंघते हुए चलते हैं, इसलिए वो भटकती नहीं है ठीक अपने। और ये हमारे खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ नहीं है। कहते हैं ना कि गोबर के ढेले के ऊपर एक चीनी का ढेला रख दो छोटा सा कण, तो लाल चींटी पूरे गोबर के पहाड़ को चढ़ते हुए उसी चीनी के कण पर पहुंचकर उसको ग्रहण करती है। और गोबरेला कीड़ा जो है वो चीनी के ढेर के ऊपर थोड़ा गोबर रख दो तो पूरे चीनी के ढेर को चढ़ते हुए ऊपर गोबर, क्योंकि गोबरेली को ये पता है कि मेरा खाने का पदार्थ सबसे ऊपर है, तो वो उसी को खोजता है। चीनी खाकर संतुष्ट नहीं होगा गोबरेला, गोबर का कीड़ा, और चींटी गोबर खाकर संतुष्ट नहीं होगी, मेरा खाद्य ये है। तो अपने अपने स्वभाव अनुसार अपना अपने खाद्य पदार्थों को जानने की और खोजने की ये ज्ञान शक्ति, और खोज कर ग्रहण करके लाने की ये क्रिया शक्ति। आपको आश्चर्य होगा, चींटी से 10 गुना बड़ा कोई कीड़ा मरा हुआ उसको मिल जाए, वो चींटी उसको खींचते ले आती है, अपने शरीर से 10 गुना बड़ा है उसका शरीर, मरा हुआ कहीं मिल गया उसको खींच कर ले आती है। वो खींचने की क्षमता कहां से आ गई उस चींटी में? वो शिव के साथ जुड़े बिना वो क्रिया शक्ति नहीं आ सकती है, इसलिए वो चींटी भी शिव से जुड़ी हुई है। यानी शिव से जुड़ी हुई है का मतलब है शिव ही है, ये तो वेदांत की दृष्टि है, क्योंकि क्रिया शक्ति शिव के बाहर और कहीं नहीं रहता है। और ये मेरा खाद्य है जानने की क्षमता ज्ञान शक्ति कहां से आ गई उसको? शिव से भी नहीं कहना चाहेंगे वेदांति, तो वो शिव ही है, वो अपने ज्ञान अपने उपाधि के अनुसार प्रयोग कर रही है। फिर ज्ञान में क्रिया में क्षमता में ये अंतर क्यों आया? तो ये अंतर आने में उपाधि का भेद है, उपाधि की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे पावर हाउस से मीटर बॉक्स से बिजली एक ही आपके घर में प्रवाहित है, अलग अलग बिजली तो है ही नहीं, एक ही पावर हाउस से एक ही सब स्टेशन से एक ही लाइन से आपके मीटर बॉक्स में आया है, और उसी लाइन से आपके अलग अलग कमरों में कनेक्शन के रूप में विभक्त किया हुआ है। और मल्टी प्लग जो एक आपने रखी है, एक्सटेंशन मल्टी प्लग रखी है आपने, उसी में दो प्लग है, एक प्लग में हीटर का पॉइंट लगा दो और दूसरे प्लग में रेफ्रिजरेटर का पॉइंट लगा दो, प्लग लगा दो, बात समझ गया कि नहीं? मल्टीप्लग तो एक ही है, मल्टीप्लग एक ही होने के कारण दो पॉइंट है वहां, एक में हीटर का पॉइंट प्लग जोड़ दो और एक में रेफ्रिजरेटर का। अब रेफ्रिजरेटर गर्म करेगा कि ठंडा? उस पानी एकदम ठंडा करेगा वो, और हीटर गर्म करेगा। ये विरोधाभास जो आपको प्रतीत हो रहा है, ये विरोधाभास होने में, विपरीत भावास होने में, वह यंत्र की कैपेसिटी, यंत्र की योग्यता है, क्षमता है कि उसी बिजली के माध्यम से वह यंत्र गर्म और उसी बिजली के माध्यम से वह यंत्र ठंडा करता है। तो बिजली न ठंडी है न गर्म है, बिजली गर्म भी नहीं करती है और बिजली ठंडा भी नहीं करती है। ठंडा करना और गर्म करना ये बिजली की योग्यता नहीं है। ठंडा करने का यंत्र है तो वह ठंडा उसी बिजली के माध्यम से ठंडा, गर्म करने का यंत्र है तो उसी बिजली के माध्यम से वो गर्म। तो यंत्र पर निर्भर करता है, आप जिस उपाधि को लेकर बैठे हो वही यंत्र है ना। आपका जो यंत्र है, आपके तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, आपका जो यंत्र है पावर तो वही है, आपका जो यंत्र है उस यंत्र में गर्भाधारण करने की कैपेसिटी नहीं है तो आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। और आपके जो यंत्र है वो गर्भाधारण करने की योग्यता का है तो आप गर्भाधान करके बच्चा पैदा करते हो। परंतु गर्भाधान करने की क्षमता होने में भी वही शक्ति आप में संचार है, गर्भाधान करने की क्षमता न होने में भी वही शक्ति, वही चेतनता आपके यंत्रों में प्रवेश कर रही है। समझ गया कि नहीं? ये क्या है, यंत्र है, ये दो यंत्र है, एक बच्चा जन्म देने की क्षमता वाला यंत्र, एक बच्चा जन्म देने की क्षमता बिना का यंत्र। तो इस यंत्र में प्रवाह संचार हुआ हुआ चेतना, क्योंकि चेतना नहीं है इसलिए बच्चा नहीं पैदा कर रहा, ये अर्थ नहीं कर लेना। यंत्र की कैपेसिटी नहीं है इसीलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और यहां यंत्र की कैपेसिटी है तो वो काम हो रहा है। चेतना दोनों ही एक ही, जैसे मल्टीप्लॉक में पावर दोनों प्लॉक पॉइंट में एक ही है, एक पॉइंट में फ्रीज का प्लॉक लगा दिया तो पानी ठंडा करती है और दूसरे पॉइंट में हीटर का प्लॉक लगा दिया तो वह गर्म होने लग जाता है। तो गर्म करना और ठंडा करना बिजली का काम नहीं, गर्म करना और ठंडा करना यंत्रों का काम है। इसी प्रकार के आपके यंत्र में वह कैपेसिटी है कि चींटी से ज्यादा जान सकते हैं और चींटी से ज्यादा कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? आपके यंत्र की वो विशेषता है, लेकिन वो ज्ञान और क्रिया तो उसी परमात्मा का है। इसी तरह चींटी में जो ज्ञान क्रिया है उसका यंत्र छोटा है, यंत्र की कैपेसिटी अलग है, लेकिन ज्ञान और क्रिया तो उसी परमात्मा का। चींटी भी उसी शिव से जुड़ी हुई है तब कुछ कर सकती और जान सकती है, आप भी उसी परमात्मा से जुड़े हुए हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं और कुछ जान सकते हैं। ये अल्पज्ञता अल्पक्रियाता ये आपके स्वरूप में नहीं है, आपके यंत्र पर है। यंत्र, यंत्र माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का निर्भर करता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर निर्भर करता है। अयं घटो अयं पट इत्येवन्नाना प्रतीतिषु अर्क प्रभेव स्वज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते। व्यवहार में आप ये कहते हो ये माला है, ये पेपर वेट है, ये कागज है, ये पुस्तक है, लाउड स्पीकर है, ये आप अलग अलग जानते हो कि नहीं? ये अयं घट अयं पट इति एवं नाना प्रतीत तीसु, संसार में जीव भी जितने भी पदार्थों की प्रतीति आपको होती है वह ठीक अर्क के प्रभाव यानी सूर्य के प्रकाश की तरह, आप परमात्मा का ज्ञान ही आपकी प्रतीति का कारण बनकर विषयों को प्रतीत कराती रहती है। जैसे ये पेपर वेट, ये माला, ये कागज, ये सबको प्रकाशित करने वाले बत्ती एक ही है, एक ही बत्ती सबको प्रकाशित कर रही है। इसी तरह एक ही शिव का ज्ञान और ज्ञान प्रकाश ही आप में रहकर वो अयम अयम अयम घटा अयम पटादि व्यवहार का कारण बन रहा है। वो शिव से अलग होता तो फिर ये क्षमता तुम्हारे में ना आती है। ज्ञानम चित स्वयं सिद्धं जगत अंधत्वमतो भवेत। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये शिव से जीव में नहीं आया है, ये सांख्यों का कहना है, विशेष करके सांख्य दर्शन की मान्यता है। जीव में जो ज्ञान शक्ति है और जीव में जो क्रिया शक्ति करने की शक्ति है वह शिव यानी परमात्मा से जुड़कर नहीं आया है, प्रकृति से जुड़कर आया है। कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग माने सीधा सांख्य दर्शन ही मानता है, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण विद्यमान है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में ज्ञानता है और ये गीता में इसका सपोर्ट कर दिया है, गुणत्र विभाग योग चतुर्दश अध्याय में सत्वात् संजायते ज्ञानम, वहां बता दिया कि नहीं। सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से ज्ञान की सिद्धि होती है। तो सांख्य क्या कहना चाह रहे हैं, जीव में जो ज्ञान क्षमता है, अयम घट अयम पट ये जानने की क्षमता है, वह परमात्मा से जुड़ने के कारण नहीं अपितु प्रकृति से जुड़ने के कारण है। और ये जीव में जो ज्ञान शक्ति है प्रकृति के सत्वगुण के चलते है, क्योंकि तुम्हारे जो स्थूल शरीर, तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि अंतकरण है वह वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार भी समष्टि सत्वगुण का कार्य है। अब ध्यान देना, वेदांत की प्रक्रिया में बता रहा हूं, वेदांत की प्रक्रिया के अंतर्गत अंतकरण की उत्पत्ति का कारण क्या है, अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि सत्वगुण से अंतकरण बनता है। व्यष्टि सत्वगुण से पांच ज्ञान इंद्रिय बनते हैं, ये वेदांत की प्रक्रिया है, और बुद्धि अंतकरण और ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जानने की क्षमता आती है कि नहीं बोलो। ये माला है जो किसके द्वारा देखा तुमने, आंख के द्वारा ना, और ये आंख बनी किसके द्वारा, तो सांख्य कहते हैं कि सत्वगुण, व्यष्टि सत्वगुण आंख, समष्टि सत्वगुण मन, और मन और आंख का दोनों का संबंध हो जाएगा तभी जाकर विषय का ज्ञान होगा। मन अन्यत्र हो और आंख अन्यत्र हो तो आंख खुले होने पर भी विषय का प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है, ये आपके अनुभव में भी आ रहा है। कान जो शब्द सुन रहे हैं ये सुनने की क्षमता, ये कान श्रोत्री इंद्रिय, इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, शब्द को जानने की क्षमता वाली इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। ये ज्ञान इंद्रियां यानी श्रोत्री इंद्रिय बनी किस कारण से, आकाश में विद्यमान जो सत्वगुण है उसके द्वारा श्रोत्री इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है, ये वेदांत की प्रक्रिया भी यही है। और अंतकरण उस श्रोत्री इंद्रिय के साथ संबंध हो, अंतकरण समष्टि सत्वगुण से और श्रोत्री इंद्रिय व्यष्टि सत्वगुण से, समष्टि सत्वगुण से बना हुआ अंतकरण, व्यष्टि सत्वगुण से बना हुआ श्रोत्री इंद्रिय, दोनों का संबंध हो गया तो फिर शब्द सुनने में समर्थ हो गया। अन्यथा क्या होता है, कान खुला ही रहता है, बोलने वाला बोलता रहता है, वो समझता नहीं, ए ध्यान दे के सुन कहना पड़ता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, श्रोत्री इंद्रिय यहां होते हुए भी मन के अंतकरण के साथ कनेक्शन न होने के कारण वह शब्द को नहीं जान पा रहा है। शब्द के अर्थ को जानने के लिए अंतकरण और श्रोत्री इंद्रिय का संबंध होना चाहिए, और यह अंतकरण और श्रोत्री इंद्रिय यह प्रकृति के सत्वगुण का कार्य समष्टि और व्यष्टि अपंचीकृत भूतों से बने हुए हैं। तो जीवात्माओं में जानने की जो क्षमता है वह शिव से एक होने के कारण नहीं, प्रकृति से एक होने के कारण है। सत्वगुण ज्ञान दाता है, ज्ञान का उत्पादक है, सत्व प्रकाशक है, अतः ये जानने की जो क्षमता है वह प्रकृति से जुड़ने पर ये जानने की क्षमता जीव में आ जाती है। ये परमेश्वर से जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन, पूर्व पक्ष सांख्य दर्शन। इसी तरह जीवात्मा में कुछ कर्म करने की जो क्षमता है, क्रिया शक्ति, ये परमात्मा से जुड़ने के कारण करने की शक्ति आई है, ये बात नहीं है। क्यों नहीं महाराज? फिर कहां से आई? बोले वही प्रकृति में जो तीन गुण है, दूसरा गुण है रजोगुण। रजक क्रियात्मक है, गीता में स्पष्ट कहा है, रज चंचल है, क्रियात्मक है। अतः ये कर्म करने की क्षमता वाले इंद्रियां, क्रियाशक्ति प्रदान हाथ, क्रियाशक्ति प्रदान वाणी, क्रियाशक्ति प्रदान पायु, क्रियाशक्ति प्रदान उपस्थ, क्रियाशक्ति प्रदान पाद है, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं कि नहीं? वेदांती क्या मानता है? इन पांच कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति किससे मानता है? व्यष्टि रजोगुण से। और पंच प्राणों की उत्पत्ति किससे मानता है? व्यष्टि समष्टि रजोगुण से। और प्राण और क्रिया का संबंध होते ही, कर्म इंद्रियों का संबंध होते ही व्यक्ति काम करने लग जाता है। कर्म इंद्रियां हैं, प्राण का संचार रुक जाए तो कर्म नहीं कर सकता है। पैरालिसिस हो गया हाथ में, तो पानी इंद्रिय तो ही है लेकिन वो प्राण का संचार रुक गया। प्राणन जो क्रिया शक्ति का संचार है वो रुक गया, रुक गया तो फिर हाथ काम नहीं कर सकते। तो वह प्राण और कर्म इंद्रियां, ये दोनों समष्टि और व्यष्टि रजोगुण से बने हुए होने के कारण जीव में जो कुछ करने की क्षमता है वह प्रकृति के रजोगुण से जुड़ने के कारण आया है, परमात्मा से जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्ष का अपना ही तर्क है। और सुषुप्ति अवस्था में न करने की क्षमता रहती है न जानने की क्षमता रहती है, तो मूढ़ता की जो अवस्था है वो कहां से आई? तो बोले वो तमोगुण के चलते मूढ़ता का अवस्था है। तमो आवरणकम मोहात्मकम आवरणकम, गीता में स्पष्ट गुणत्रय विभाग में ये बात आ गई है, ये सांख्य सिद्धांत है। ज्ञानम न चेत स्वयं सिद्धं जगत अंधतमो भवे। यदि परमात्मा में ज्ञान स्वरूपता स्वयं न होता तब जगत सब के सब अंध हो जाता है, कुछ भी करने की कुछ भी जानने की क्षमता न होती। तो ये जो ज्ञान पना है वो परमात्मा से ही है। हम ये कहते हैं कि प्रकृति के सत्वगुण से कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, रजोगुण से कर्म इंद्रियां बनती हैं। ये नियम को जानकर बनाया किसी ने कि बिना जाने बनाया? अपने आप हो गए? किसने जाना, किसने जाना? तो ये स्वयं वो परमात्मा जो कि प्रकृति से संबंध रखे बिना जानने वाला परमात्मा है, इसलिए उसने अपने स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा ये नियम बनाया और उस नियम के अनुसार ये काम हुए। तो इस बात को कोई भी अपलाप नहीं कर सकता है, वेदांत तो उसका खंडन करता है। न चेद अस्य क्रिया का चेद व्यवहार कथम भवेत। यदि ऐसा न होता, यह अन्वय व्यतिरेक है। यद सत्य तत् सत्यम, यद अभावे तद अभाव। ज्ञान क्रिया परमात्मा में होने पर ही परमात्मा से जुड़े हुए जीवात्मा में ज्ञान क्रियता है, और यदि ज्ञान क्रियता परमात्मा में न होते तो परमात्मा से जुड़ने पर भी जीवात्मा में ज्ञान क्रिया न होती। अब दूसरी बात है, ज्ञान क्रिया तो तुम्हारे हिसाब से प्रकृति से जुड़ने पर हो जाएगा, तुम कह रहे हो। तुम्हारे हिसाब से तो प्रकृति में सत्वगुण से ज्ञानता और रजोगुण से क्रियाता, ये प्रकृति से जुड़ने पर जीवात्मा में आ जाएगा कहते हो। अब रही बात जीवात्मा में जो चेतनता है किससे जुड़कर आने का आएगा, उसका उत्तर दो हमको। चेतना ये किससे जुड़कर आएगा भाई? प्रकृति स्वयं स्वरूपतः, तुम भी जड़ मानते हो हम भी जड़ मानते हैं, प्रकृति को तो सांख्य भी जड़ मानता है, वेदांत भी जड़ मानते हैं। तब जड़ होते हुए भी रजोगुण के चलते क्रियाता और तमो सत्वगुण के चलते ज्ञानता प्रकृति में मानता है सांख्य। वेदांत ज्ञानता और क्रियाता और चेतनता ये तीनों परमात्मा में मानता है, प्रकृति में नहीं मानता। सांख्य परमात्मा में यानी आत्मा में केवल चेतना मानता है, आत्मा में केवल चेतना मानता है, ज्ञान क्षमता और क्रिया क्षमता नहीं मानता, चेतना मानता है। और वेदांत चेतना के साथ साथ ज्ञान और क्रिया दोनों को भी मानता है। तब वेदांति ने यह प्रश्न किया, तुम कह रहे हो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रकृति से जुड़ जाने पर आ जाएगा, लेकिन जीव में जो चेतना शक्ति है वो किससे जुड़कर आया? प्रकृति से जुड़कर चेतना आएगा? प्रकृति में चेतना ही नहीं है तो जुड़कर कहां से आएगा? फिर कहां से आया? तो बोले वो तो फिर आत्मा से जुड़कर आएगा। तो यही तो बात है, जब आत्मा से जुड़कर ही जीव में चेतना आती है तब उसी आत्मा से जुड़कर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति भी आ जाएगी। आत्मा से अलग जीव को मानना ये मूर्खता है। उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्योपाश्रया क्रिया करोति गच्छत्युन्मार्ष्टि चिनत्तीति प्रतीयते। जो जीव में सब शिवो ब्रह्मादि देहेषु, अंत में इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत जितने भी देह हैं शरीर हैं सारे शरीरों में, उसके बीच में आप और हम भी आ गए हैं, ब्रह्मा का शरीर और चीटी के शरीर के बीच में हम भी आ गए हैं, हैं? ब्रह्मादि देहेषु शिवो ब्रह्मादि देहेषु सर्वज्ञ इति भासते देवतिर्यं मनुष्येषु किंचित ज्ञस्त तारतम्यता। वही शिव ब्रह्मादि देह में वो सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होता है, और वही शिव मनुष्य चींटी आदि अन्य इतर देहों में अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत होता है। अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत होना और सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होने में वह ब्रह्मा का शरीर और हम लोगों के शरीर के कारण सर्वज्ञ और अल्पज्ञ की है। वास्तव में शिव न सर्वज्ञ है न अल्पज्ञ है, शिव केवल शिव है, कल्याण रूप है, चैतन्य रूप है। जैसे हमने पहले कहा था, बिजली न ठंडा करती है न गर्म है, बिजली जैसा है वैसा है, यंत्रों की कैपेसिटी है। इसी तरह सर्वज्ञ उपाधि ब्रह्मा की उपाधि वो शुद्ध है, परिष्कृत है और बड़ी है, इसलिए वो सर्वज्ञ हो गए उसमें जाने पर। और चीटी की उपाधि छोटी है, स्थूल है, इसलिए उसमें अल्पज्ञ हो गया। शिव ही ब्रह्मादि देह में सर्वज्ञ और अन्य देहों में अल्पज्ञ के रूप में प्रतीत हो रहा है। उपाधि उसी को कहते हैं, जरायुजो अंडजश्चैव स्वेदज उद्भिदद्विदः ये ते चतुर्विदा पूर्व कर्म स्वन्योनुवृत्तयः। जीवों का ही ये चार भेद हैं, उद्भिज्य जरायुज अंडज और पिंडज, ये कर्म के अनुसार इनका शरीर आदि ग्रहण होता है और शरीर के निर्माण में कर्म हेतु हैं, परंतु उन सभी में एक ही शिवा अहम अहम के रूप में स्फुरित हो रहा है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता स्वप्न कल्पैव कल्पना साक्षात्कृते अनवच्छिन्न प्रकाशे परमात्मनि। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्वप्न कल्पैव कल्पना अनेक कल्प युग कल्पों की कल्पना, जैसे स्वप्न के अंतर्गत भी अनेक युगों की कल्पना होती है उसी तरह जागृत भी उसी तरह है, इससे भिन्न अन्यथा नहीं लेना। और यहां ईश्वर गुरु और आत्मा को एक माना गया है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ईश्वर कहो, जीव कहो, गुरु कहो, ये तीनों की उपाधि अलग अलग होने पर भी चेतन तत्व मूल तत्व एक ही शिव है। शिव ही ईश्वर होकर सर्वशक्तिमान हुआ, शिव ही गुरु होकर ज्ञानदाता बना, और शिव ही जीव होकर श्रोता बना, ज्ञान ग्रहण करता बना। ये उपाधियों का भेद है, तत्वों का भेद नहीं। ये प्रथम श्लोक मानस उल्लास का, ये दक्षिणामूर्ति के प्रथम श्लोक का ये समापन हो गया। कल से दूसरा श्लोक, आगे के श्लोक को अब हम झड़प से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय।
0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunalai Povar Nayanar, presented by சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
4: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் சுனேங்கே ஒரு எக் தட்சிண பாரதிய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி, ஜின்கா நாம் நந்தனார் தா. இன்கா ஒரு எக் நாம் யே திருநாளை போவார். தமிழ்நாடு கே சோல் பிரதேஷ் மே ஆதுனிக் தஞ்சாவூர் ஜிலே கே அந்தர்கத் எக் க்ஷேத்ர ஹே மேர்கா நாடு. யஹா எக் சமிருத் காவ் ஆதனோ கே பாரி மே झुग्गी झोपड़ियों के सहित छोटे जात वाले रहते थे। इसी इन्हीं में से एक परिवार में जन्म हुआ नंदनाथ का। इस जाति के लोग खेतों में मजदूरी करके अपना निर्वाह करते थे। इन्हें अत्यंत छोटे जात वाले माना जाता था, क्योंकि ये जीव जंतु के खाल उतारकर चमड़ा तैयार किया करते थे। जब इस बस्ती के लोग तोड़ी पीकर नशे में ढोल बजाकर नाचते थे, उस समय नंदनाथ अर्धचंद्रधारी उमापति शिव के ध्यान में तन्मय रहते थे। सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर वे धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते थे। मंदिर के अनुष्ठानों के लिए उपयोग में आने वाले मुरज, ढोल, मृदंग आदि बनाने के लिए आवश्यक चमड़ा और वीणा के लिए आवश्यक पशुओं की नसें आदि तैयार करने में वे विशेष आनंद का अनुभव करते थे। नंदनाथ का नियम था कि वे मंदिर के बाहर ही खड़े होकर भावमग्न हृदय से शिव का दर्शन किया करते थे। एक बार वे तिरुपुन्नकूर गए। भगवान के वाहन नंदी विग्रह के सामने खड़े रहते थे, अतः प्रभु दर्शन नहीं हो पा रहा था। चूंकि नंदनाथ मंदिर के बाहर खड़े थे और शिव का दर्शन करना चाहते थे, तब नंदी सामने उनके थे, इसलिए वो शिव की प्रतिमा को नहीं देख पा रहे। जनश्रुति है कि भगवान शिव ने नंदी को जरा हटने के लिए कहा ताकि भक्त को दर्शन प्राप्त हो सके। तिरुपुन्नकूर के मंदिर में आज भी नंदी उसी स्थिति में है। वह भगवान के सीधे न होकर थोड़ा समीप में है। नंदनाथ की प्रबल कामना थी कि वे एक बार तिरुलई चिदंबरम जाकर भगवान नटराज के दर्शन करें, परंतु अपने नीचे कुल का विचार कर उन्हें ऐसा करने से वर्जित कर रहा था। इसी अंतर्द्वंद के कारण वे प्रतिदिन अपनी यात्रा यह कहकर टाल देते थे कि कल जाएंगे, अतः उनका नाम पड़ गया नालई पोवार। नालई पोवार का तमिल में मतलब है कल जाने वाले, और तिरु का नाम है श्री। तिरु नालई पोवार का मतलब श्री कल जाने वाले। ग्रामवासियों के वर्जित करने पर भी नंदनाथ भगवान नटराज के दर्शन करने चिदंबरम जाना चाहते थे। नंदनार एक ब्राह्मण के खेत की देखभाली करते थे। ब्राह्मण ऊंच नीच और जात पात को बहुत मानता था। जब उसने जाना कि नंदनार तिल्लई चिदंबरम जाना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन तुम हो नीचे जात के, इसलिए तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर कल तक मेरी सारी खेत को फसल समेत उगा दो और उस उगी हुई खेत को काट कर फसल को तैयार कर दो। नंदना ने एक और खेत की ओर देखा तो देखा कि खेत अभी तक पूरा समतल था, उसमें अभी तक चारा भी नहीं डाला हुआ था या फिर बीज भी नहीं डाले हुए थे, इसलिए उनका मन बैठ गया। उन्होंने सोचा कि कल तक मैं फसल को कैसे तैयार कर दूं। इसी सोच में वे बहुत निराश हो गए और रात को सो भी नहीं पाए, पूरी रात अपने घर में चिंता करते रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुबह जब वो खेत पे गए तो उन्होंने देखा कि लहलहाती फसल तैयार होकर खड़ी थी। उन्होंने आंख से अश्रु भरे अपने शिव को ध्यान में किया और उन्होंने कहा, हे शिव, क्योंकि यह मेरे से संभव नहीं था, आपने स्वयं आकर हल चलाया और इस फसल को उगा दिया। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपका मैं सेवक हूं, आपका मैं दास हूं। उन्होंने जाकर अपने ब्राह्मण स्वामी से कहा कि आपकी खेत और उसकी फसल तैयार है। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। उसने जब देखा कि फसल तैयार है उसे विश्वास हो गया कि नंदलाल कोई मामूली आदमी नहीं परंतु एक संत है। उसने तुरंत ही उनके पैर में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि आप तो प्रबल संत हैं और मैं आपको ऐसे कष्ट दे रहा था, मुझे माफ करें। इसके बाद उन्होंने नंदनार को तिल्लैया चिदंबरम जाने की आज्ञा दे दी, ये अनुमति दे दी। अब नंदनार के मन में आशंका थी कि मेरी छोटी जाति होने के कारण अतः मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वे केवल चिदंबरम में पहुंचकर नगर की परिक्रमा करके एक वृक्ष के नीचे लेट गए। इस कार्य में नीच जन्म ही बाधक है, ये विचार करते करते सो गए। उसी रात तिल्लै चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों को भगवान ने नंदनार के विषय में स्वप्न में आदेश दिया, कल अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि में पवित्र करके नंदनार को मेरे समीप लाओ। नंदनार अभी नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। इधर नंदनार ने भी स्वप्न में प्रभु आदेश सुना। प्रभु ने उन्हें आदेश दिया, वत्स, इस जन्म से मुक्त होने के लिए कल अग्नि में प्रवेश करो, पवित्र होकर मेरे दर्शन के लिए आओ। चिदंबरम निवासी ब्राह्मणों ने भगवान के आदेशानुसार अग्नि तैयार की। वे सादर नंदनार के पास पहुंचे और उन्हें संबोधित करके कहा, हे आर्य, भगवान के आदेश और प्रेरणा से हम आपके पास आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदनार ने अग्नि में प्रवेश किया, अपने हृदय में शिव का ध्यान किया और जब बाहर निकले तो कंचन के समान पवित्र देहयुक्त होकर बाहर आ गए। उनका रूप कमलासीन ब्रह्मा के समान शोभायान हो रहा था। आकाश में धुंधुबी बज्र उठी, पुष्प वर्षा हुई। सभी ने आश्चर्यचकित होकर नंदनार के प्रति सम्मान प्रकट किया। तदुपरांत सब एक साथ चिदंबरम नटराज की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में गए। ऐसा माना जाता है कि नंदनार की वेशभूषा तभी देवगत ब्राह्मण जैसा था, हृदय में ब्राह्मणों जैसा जनेऊ था, सर पे मस्तक पे शिव के चिन्ह थे विभूत सजाकर, उनके शरीर में तरह तरह स्थान पर विभूत सजाया हुआ था और वे शिव को अपने हृदय के अंदर धारण करके तिल्लै के चिदंबरम का दर्शन किया। इस कथा में तिल्लै जाने का निर्णय लेने पर भी नंदनार को भगवान के समीप जाने की योग्यता पर संदेह था। उनके हृदय में नीच जाति होने का हीन भावना और ग्रंथि थी जिससे वे अकारण अपराध बोध से ग्रसित थे। भगवान ने उन्हें सिखाया कि भक्ति में के मार्ग में जाति का बंधन कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अग्नि में चलकर भी उन्हें कुछ आघात नहीं हुआ, यह भगवान शिव की ही अनुकंपा थी। ऐसा भी कहा जाता है कि तिल्लै चिदंबरम जाते ही जब वे अग्नि से बाहर निकले तो उन्हें उस शिवलिंग में ग्रसित कर लिया गया और वे शिव के साथ कैलाश में पहुंच गए। इसलिए नंदना एक उच्च कोटि के संत हैं जिनके मन में सिर्फ प्रभु भक्ति ही थी। ब्राह्मण कवि सुंदरर ने उन्हें पवित्रता और भक्ति की साक्षात मूर्ति माना है। मद्रास स्थित मैलापुर के कपालीश्वर मंदिर में 63 नायनारों में से एक नंदनार भी हैं।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स।
5: In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam.

0: इसका मतलब यह है कि संकेत जानकर सेवा करने वाले तिरुकुरिप्पु तोंडर इनका नाम था। उनका नाम समस्त गांव में प्रचलित हो गया कि वे संकेत जानकर सेवा करने वालों में से हैं। संतों के मैले वस्त्रों की धुलाई करना और उन्हें स्वच्छ करके उन्हें वापस देना इनका प्रिय सेवा था। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि मेरे इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक तपस्वी वेशधारी का रूप धारण किया और उनके पास पहुंच गए। उनको देखते ही तिरुकुरिप्पु तोंडर ने कहा, हे स्वामी, इन मैले कपड़ों की धुलाई करके आपकी सेवा करने का अवसर मुझे दीजिए, मैं आपका कृतार्थ रहूंगा। तपस्वी ने उनसे कहा, यद्यपि मेरी धोती मैली तो है परंतु शीत हड्डियों तक प्रभाव कर रहा है, अतः मैं इसे धुलवाता नहीं। यदि तुम आज संध्या तक इसे धोकर सुखा कर दे दो तो ठीक, अन्यथा इसे मैं ऐसा मानूंगा कि तुमने इस शरीर के प्रति अपकार किया है। यह कहकर उन्होंने अपने वस्त्र तिरुकुरिप्पु तोंडर को दे दिए। भक्त धोबी मैले कपड़े ले गया, पूरा परिश्रम करके उसे भट्टी चढ़ाया, फिर धोया, मैल साफ किए और उस वस्त्र को उजला कर दिया। भक्त ज्यों ही कपड़े सुखाने लगा तभी शिव ने अपनी परीक्षा की दूसरी कड़ी का आरंभ किया। आकाश में घने बादल छा गए, दिशाएं कृष्णवर्ण हो गईं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। रात होने को आई, वर्षा रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। साधु तपस्वी का वस्त्र सूख पाना असंभव था। स्वयं को तपस्वी का दोषी महसूस कर रहे थे तिरुकुरिप्पु तोंडर। इसी बीच ऐसा हुआ कि एक हवा के झोंके ने साधु के वस्त्र को उड़ा ले गया और उसे कांटेदार वृक्ष में अटका दिया। तिरुकुरिप्पु तोंडर ने जैसे ही उस वस्त्र को लेने की कोशिश की तो वस्त्र फट गया। उसी क्षण वेशधारी योगी वापस आए और उन्होंने तिरुकुरिप्पु तोंडर से कहा कि काफी देर हो गई, तुम नहीं आए तो मैं खुद चला आया, कहाँ है मेरे कपड़े? इस पर तिरुकुरिप्पु तोंडर ने उनसे कहा कि आपके कपड़े तो वर्षा के कारण फट गई, मुझे माफ कर दें, मैंने अत्यंत कोशिश की फिर भी मैं वचन नहीं निभा सका, आप इस कपड़े के बदले और कोई स्वच्छ अच्छा कपड़ा मुझसे ले लें। यह सुनकर वेशधारी योगी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, हे ढोंगी, तुमने इस शरीर के प्रति अपकार किया है, तुमने वचन दिया था कि मेरे इन्हीं और इसी कपड़े को सुखाकर मैल से धुलाकर मुझे वापस सांध्य तक करोगे, तुम अपने वचन में असाध्य रहे, इसलिए मैं जा रहा हूं। तभी तिरुकुरिप्पु तोंडर को बहुत ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने पास के रखे शिवलिंग में अपना सर तोड़कर अपनी जान देने का उपाय कर लिया। उन्होंने वहां गए, उन्होंने शिव के लिंग के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हे भगवान शिव, मैं तो आपके भक्तों की सदैव सेवा करता हूँ, लेकिन आज मुझसे यह क्या अपराध हो गया? यह कहकर उन्होंने बार बार अपने सर को उसमें पटकने के लिए जैसे ही आगे किया तभी शिवलिंग से एक हाथ बाहर आया और उन्हें रोक दिया और उनसे कहा, हे भक्त, तुम्हारी सेवा का परिचय अब तीनों लोकों में हो गया है, तुम मेरे सायुज्य प्राप्त करोगे। उन्होंने यह भी दिखाया कि वो शिव वेशधारी प्रत्यक्ष शिव ही हैं, वो योगी शिव ही हैं। इसे देखकर तिरुकुरिप्पु तोंडर गदगद हो गए और उन्होंने शिव के यहाँ प्रणाम करके अपनी भक्ति का व्यक्त किया। इस कथा से एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। कपड़े धोने की सेवा करते हुए भक्त ने तपस्वी को धोकर सुखाकर सायंकाल तक देने का वचन दिया था। शायद ऐसा भी माना जाता है कि भक्तों की सेवा करने के लिए उनके मन में अहम का भाव स्थापित हो गया था। वे हमेशा सोचते थे कि मैं तो भक्तों की सेवा करता हूँ। इस अहम भाव को धोने के लिए शिव ने उनसे यह लीला करवाई और उनके मन के अहम को धो डाला। लेकिन तिरुकुरिप्पु तोंडर आज भी संतों की श्रेणी में एक प्रथम माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्तों की सेवा करना अपना उच्च धर्म माना। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Chandesa Nayanar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya Sant Nayanmar ki kahani, jinka naam Chandeshwar hai. दक्षिण भारत के कुंभकोणम के समीप मन्नी नदी के तट पर चेकुलर नामक एक गांव है। यहाँ वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले काश्यप गोत्र के कुल में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका पुत्र विचार शर्मा विचित्र स्वभाव का था। जब पूरे गांव के ब्राह्मण वेद विहित यज्ञ अनुष्ठान में रत रहते, विचार शर्मा शिव पूजा और आराधना को ही अपना लक्ष्य मानते थे। वेद और आगम शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद विचार शर्मा इस निर्णय पर पहुंचे कि शिव के चरणों पर ध्यान लगाना और शिव की आराधना करना ही मानव मात्र के लिए उद्धार का सहज मार्ग है। एक दिन विचार शर्मा ने एक गडरिये को गायों को पीटते हुए देखा। उनसे रहा नहीं गया। गायों के विशेष महत्व को ध्यान में रखकर उन्होंने गायों को चारागाह में चराने का काम अपने हाथ में ले लिया। उनका अपार स्नेह पाकर गायें उनके पास आकर अपने थनों से दूध की वर्षा करने लगी। दूध पहले से कहीं अधिक मिलने लगा। इस भांति दूध प्राप्त करते हुए विचार शर्मा के मन में शिव की दूध द्वारा पूजा का विचार आया। उन्होंने अत्यंत आस्थापूर्वक चारागाह में ही मन्नी नदी के तट पर रेत का शिवलिंग स्थापित किया और दूध से उसका अभिषेक करने लगे। कुछ वैदिक ब्राह्मण शिव पूजा में आस्था न होने के कारण मूर्ति का दूध से अभिषेक करना व्यर्थ मानते थे और कहते थे कि दूध नष्ट हो रहा है। एक दिन एक व्यक्ति ने यह दृश्य देखकर विचार शर्मा के पिता यज्ञदत्त से शिकायत कर दी। यज्ञदत्त पुत्र की इस विचार पूजा को देखने के लिए उनकी निगरानी करने लगे। कलशों में दूध भर लेने के बाद विचार शर्मा एकाग्रचित्त हो पूजा में लीन हो गए। यज्ञदत्त ने आक्रोश में एक छड़ी लेकर पुत्र पर आघात कर दिया। शिव पूजा में लीन भक्त को शरीर पर पड़ने वाले चोटों का जरा भी आभास नहीं हुआ। यज्ञदत्त और भी भड़क उठे। उन्होंने अभिषेक के लिए रखे हुए दूध के कलश को पांव से ठोकर मारी। विचार शर्मा की आंखें खुली। उनके मन में और मस्तिष्क में क्रोध भर गया। अभिषेक के दूध को का अपमान पूर्वक गिराने का शिव अपराध उनसे सहन नहीं हुआ। पास ही पड़ी एक छड़ी उठाकर विचार शर्मा ने पिता के पांव पर दे मारी। विचित्र घटना हुई। लाठी कुल्हाड़ी बन गई और यज्ञदत्त के दोनों पैर कट गए। उसी क्षण वृषभ पर आरूढ़ जटाधारी शिव पार्वती सहित प्रकट होकर बोले, वत्स, हम तुम्हारी प्रबल भक्तिभाव के कारण प्रसन्न हुए। तुमने अपने पिता को दंड दिया। जब तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम करना संभव हुआ तो आज से हम ही तुम्हारे पिता हुए। शिव ने उन्हें चंडेश्वर की पदवी प्रदान की, जिसमें भगवान के भोग का निर्माण वस्त्र और आभूषण आदि मिलता था। भक्तों, यह कह दूं कि उस समय यानी कि पल्लव राजाओं के समय में वेद मार्गी और आगम परंपरा के भक्तों में प्रचंड संघर्ष हो रहा था। इसे चेक्युलर संत ने इस कथा में चर्चा की है। कौंडिन्य गोत्राओं के अतिरिक्त वैदिक ब्राह्मण शिव को परब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। कौंडिन्य गोत्र यज्ञदत्त इसी भांति के कट्टर व्यक्ति थे। वे शिव या शिव पूजा को स्वीकार नहीं करते थे। उनके पुत्र विचार शर्मा आगम शास्त्र में वर्णित शिव पूजा, शिवलिंग के अभिषेक आदि में आस्था रखते थे। अभिषेक में आस्था न होने के कारण यज्ञदत्त ने पुत्र द्वारा अभिषेक के लिए सुसज्जित दुग्ध कलश को ठोकर मारी। चिक्किलर से 5 शताब्दी पूर्व संत तिरुज्ञान संबंधर ने इस घटना का भिन्न वर्णन किया है। वहां ठोकर शिव के शीश पर रखे पुष्प मुकुट पर मारी गई है। संभव है कालांतर में शिव के प्रति भक्तिभाव के कारण ऐसा न करके ठोकर दूध के कलश पर वर्णित किया गया है। चेक्युलर इस कथा के माध्यम से प्राचीन काल के चिंतन भेद और कट्टरता का संकेत भी देते हैं। किसी को शिव अथवा शिव पूजा पर लेश मात्र भी विश्वास न हो तो अभिषेक के दूध अथवा दूसरे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना उचित नहीं। आज हमारे राष्ट्र में जिस सर्वधर्म संभाव का विचार व्याप्त हो रहा है, उसका मूल भी सब धर्मों को मानने का स्वतंत्र रूप में आस्था को प्राप्त करने हमारे भारत में सबका अधिकार समान माना गया है। चंडेश्वर विचार शर्मा इसी बात को उजागर करते हैं।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
4: सारे भक्त उठ उठ के भाग गए। भोजन कर ही रहे थे, आधा भोजन किया होगा, कोई हाथ में थाली लेकर ही भागे बेचारे, भोजन छोड़ नहीं सके, थाली ही लेकर बाहर भागे। बाहर मैदान है, खुला मैदान है, रुद्राक्ष का पेड़ है, उसके नीचे खुला मैदान है, कोई थाली वहीं छोड़कर भागे बाहर, और हम आराम से बैठे हैं और खाए जा रहे हैं। भागें कहां, जहां भूकंप न हो वहां भागें। अब अंदर भी भू हिल रहा है, बाहर भी हिल रहा है, जहां भी कंप रहा है, तो भाग के जाएंगे कहां। तो मान्यता यही है कि छत के नीचे कहीं छत गिरकर चोट चाट लग के मर सकते हैं, और खुले मैदान में कुछ गिर के मरने की संभावना नहीं है, इतना ही है। लेकिन भूकंप तो सब जगह है ही है। धैर्यपूर्वक बैठा रहा, बाद में भूकंप शांत हुआ गया, हम तो खा ही रहे थे। सब लोग कहने लगे, महाराज आप क्यों नहीं भागे, भागना चाहिए ऐसी अवस्था में। तो हमने कहा, हमको भूख लगी थी, क्यों भागेंगे भाई। धरती में भूकंप हुआ था, भू में भूकंप हुआ था, तो दिल तो नहीं कांप रहा था। शंकराचार्य कहते हैं, हृदय मम गेहे सर्वदा संवसत्वम। मेरा जो हृदय रूपी घर है, इतनी सुरक्षित है कि आप वहां हमेशा रह सकते हैं, वहां कभी भी भूकंप नहीं आएगा। हे शिवा, हे भावा, कई संबोधन है इस श्लोक में। भावा माने जगत अधिष्ठान, समग्र जगत का एकमात्र अधिष्ठान होने के कारण परमात्मा का नाम हुआ भावा। और पुष्पदंताचार्य जी ने भव का लक्षण बताया है, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। रजोगुण की अधिकता के चलते जगत उत्पत्ति का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण परमात्मा भवा है। प्रबल तमसे तत्संहारे, तमोगुण के अधिकता से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए सारे विश्व ब्रह्मांड का संहार करने के कारण भगवान शिव का नाम है हारा। सत्वगुण के चलते सारे प्राणियों को पालन पोषण करके आनंद प्रदान करने वाले होने के कारण भगवान शिव का नाम है मृड। प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्ये शिवाय नमो नमः। महिमनि स्तोत्र का ये श्लोक है, हम प्रातःकाल रोज प्रार्थना करते हैं, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृडाय नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैर्गुण्ये, तीनों गुण से असंग हुए हुए अवस्था का नाम है शिव। ऐसे शिव को हम बार बार नमस्कार करते हैं। या गुणातीत शिव और रजो उपाधि वाला अधिष्ठान स्वरूप निमित्त कारण वाला भव, दो संबोधन है। तीसरा संबोधन है सकल भुवन बंधो संसार में सभी के परम हितैषी है। सकल भुवन बंधु परम मित्र परम हितैषी क्या है, एक उर्दू का है ना गीत है ना, जिसका कोई नहीं है उसका भी खुदा हो यारो, सुना है ना है? इस जगत में जिसका जो कोई नहीं है उसका भी एक व्यक्ति तो है, वो कौन है, परमात्मा है। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई ना हो, मां न हो, बाप न हो, भाई न हो, बंधु न हो, पति न हो, पत्नी न हो, बेटा न हो, बेटी न हो, नाती न हो, पोते न हो, घर न हो, दुकान न हो, मकान न हो, कुछ न हो, उसका भी एक व्यक्ति तो है, उसका नाम है जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यार। उर्दू में तो वो कह दिया है खुदा है यारो, शंकराचार्य जी क्या कह रहे, शंकराचार्य जी क्या कह रहे, सकल भुवन बंधु हे शिवा हे भवा, आप सारे संसार के प्राणियों के बंधु हैं, परम मित्र हैं, हितैषी है सच्चिदानंद सिंधु, ये भी संबोधन है। चार संबोधन है यहां, एक शिव, दूसरा भव, तीसरा सकल भुवन बंधु और चौथा सच्चित आनंद सिंधु। सिंधु माने समुद्र, सदया ये भी संबोधन ही है, दया के सागर, तव परिचर्या सन्निधानाय गौरिया, सदया मम हृदय गेह गेहे सर्वदा संबसत्वम, मेरे हृदय रूपी घर में आप हमेशा नित्य निवास करो। हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, हमको रोटी बनाकर कौन खिलाएगा, आपकी सेवा करने के लिए तव परिचर्या सन्निधानाय, तव परिचर्या सन्निधानाय आपके नजदीक रहकर, सन्निधि में रहकर रात दिन आपके सान्निध्य में रहकर, तव परिचर्या आपकी सेवा करने के लिए, गुणधुर्याम सर्वगुण संपन्न बुद्धिकन्याम प्रदास्य, मेरी एक बेटी है जिसका नाम बुद्धि है, कैसी है वो, गुणधुर्याम सेवा करने में बड़ा कुशल है, सद्गुणों से भरिपूर्ण है वो, उसको हमने बहुत सुशिक्षित बनाकर रखा है, प्रदास से आपकी सेवा में मैं उसी को लगा दूंगा, अब चिंता मत करो कौन सेवा करेगा, आ तो जाओ, हम तो ये कहेंगे कि एक बार तुम आ गए फिर फिर तो निकल के ही नहीं जाओगे। इतना बढ़िया घर है वो हृदय गे, एक बार तुम आ गए तो फिर निकल के नहीं जाओगे। आ तो जाओ, बैठ तो जाओ भाई, और आगे क्या कहेंगे भाई। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल वेदी न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्याम सपरियाम कथय कथ अहम ते कल्पयान इंदु मौले। ये 84वें श्लोक के साथ ही इसका संबंध है। महाराज मैं आपकी पूजा सपरिया, सपरिया माने पूजा, ठीक से नहीं कर पाता हूं, नहीं कर सकता। जैसी पूजा होनी चाहिए वैसी पूजा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पूजा में नैवेद्य की आवश्यकता पड़ती है, भोग धराना पड़ता है ना भगवान को। वैष्णव लोग 56 प्रकार का भोग धराते हैं, मानो कि उनका भगवान कभी उनको खाने को नहीं मिला है ना? कितने खाएंगे? कभी कभी हमारे सामने बड़ी समस्या जटिलता आती है। भोजन के लिए भक्त बुला लेते हैं घर में, इतने सारे वैरायटी बना देते हैं, आइटम बना देते हैं, क्या खाएं क्या छोड़ें, बड़ी समस्या हो जाती है। महाराज ये खाइए, दूसरे आइटम में ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, कितने खाए। थोड़ा सा परहेज करके कुछ कम खाओ, मुसीबत है। आपको हमारा रसोई अच्छा नहीं लगा, हे भगवान क्या समस्या है, थोड़ा थोड़ा खाओ तो आपको हमारे रसोई अच्छा नहीं लगा। महाराज ये खाइए, क्या अच्छा नहीं लगा क्या बोलो? हां अच्छा नहीं लगा कहेंगे तो उसका चित्त दुखेगा, समझे कि नहीं? बहुत अच्छा है तो बोलता खाइए ना, फिर ले अब क्या है, है मुसीबत हो गया, मुसीबत। अच्छा कहोगे तो और खाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगा कहोगे तो बेचारा उसका चेहरा, इतना मेहनत से बनाया, अच्छा नहीं लगा करके उसको देखो तो फिर उसका तो चेहरा खत्म। सही बात, सही रूप में यदि हम कहें हैं शारीरिक दृष्टि से, हां भावनात्मक दृष्टि से नहीं, शारीरिक दृष्टि से सही रूप में कहें तो हमारा दुश्मन हमारे ही भक्त हैं। सच कह रहा हूं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे दुश्मन हमारे ही भक्त हैं। और ये ऐसे दुश्मन हैं जैसे होम्योपैथिक की गोली, होम्योपैथिक की गोली बारीक नहीं, बाहर से शुगर रहता है, बड़ा स्वादिष्ट रहता है, और अंदर से इतना कड़वा, इतना जहरीला होता है वो। इसीलिए ग्लूकोज के गोली पर वो ड्रॉप ड्रॉप डालकर देते हैं, वो सीधे ड्रॉप नहीं लिया जा सकता है होम्योपैथिक के, तो ड्रॉप में होता है, लिक्विड है होम्योपैथिक, अर्क है ना, तो होम्योपैथिक तो पूरा अर्क है। उसको बनाने का सिस्टम ही अर्क है, और वो बनाते भी हैं तो जहर से ही बनाते हैं, कोई वनस्पतियों से नहीं बनाते हैं, जहर से बनाते हैं। लेकिन उसको बनाने की जो सिस्टम है, उसके जो नंबर होता है, होम्योपैथिक पूरे नंबर पर चलता है, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, वो पॉइंट होता है उनके, उसको अर्क निकालने के सिस्टम पर उसका पॉइंट होता है, समझे नहीं? तो उसी का ड्रॉप, और सीधे मुख में जिह्वा में वो ड्रॉप डालते हैं ना, पोलियो ड्रॉप डालते हैं, इस तरह डाले को तो मुख में डाला ही नहीं जाए, इसलिए वह ग्लूकोज की गोली होती है, जो बारीक गोली है वो ग्लूकोज की है, और उसी में वो ड्रॉप डालते हैं, फिर उसके बाद खाओ, खाते समय बड़ा स्वीट, बड़ा मीठा है, हमारे भक्त ऐसे ही हैं भाई, बड़े हितैषी हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से खिलाते हैं, और उनका जो खिलाना हमारे लिए, शरीर के लिए, हमारे लिए नहीं है, इस शरीर के लिए फिर वो दुश्मनी का काम करता है, और अंदर जाकर शुगर और ब्लड प्रेशर इतना ग्रोथ हो जाता है कि बस पूछो नहीं। लेकिन हितैषी हैं ये लोग, खूब खिला खिला कर बीमार भी यही बनाएंगे, उसके बाद फिर दवाई और इलाज भी यही करते हैं, इलाज भी यही करते हैं महाराज। पूछते हैं महाराज कोई दवाई लानी है आपके लिए, बोलिए मुझे, सेवा का मौका दीजिए, उस दवाई लानी हो तो बोलिए। विदेशी भी हैं, और पहले खूब खिलाकर रोगी बनाएंगे, फिर दवाई शुरू करेंगे, सेवा करने का मौका मिल गया, बड़े खुश हो जाएंगे वो। अब हम भी इसी में संतोष कर लेते हैं भाई, चलो तुम्हें सेवा करने का मौका मिल गया है। देखो एक बढ़िया बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, ये हमारे गुरु महाराज जी की अभिव्यक्ति है, हमारे ब्रह्मलीन गुरु महाराज तो जीवन के अंतिम क्षण में शारीरिक अव्यवस्था के चलते ही उनके जीवन समाप्त हुआ, तो बीमार थे बेचारे। तो हमारे महाराज जी के खास सेवक, भक्तों में से खास सेवक, तो जीवन भर महाराज जी की, गुरु जी की सेवा में ही वो समर्पित हुए। हम लोग सब माताजी बोलते थे। उन्होंने ऐसे पूछ लिया, बीमार थे, महाराज ये आजकल जो रोग दिखाई पड़ा है, हार्ट अटैक होकर जो तुरंत मरते हैं, चलते फिरते तुरंत अटैक आ गया और मर गए, ये सबसे अच्छा है, वो ऑन द स्पॉट बस गए। अब ये लंबी बीमारी जो है, बिस्तर में पड़े रहो है? बहुत समय तक बिस्तर में पड़े रहो, दूसरे लोग सेवा करते करते हैरान, आपने अब खुद भी उस कष्ट में, इससे अच्छा तो वही ठीक है महाराज। तो महाराज जी ने जवाब दिया, गलत है वो, वह क्या है, गलत है। क्यों महाराज? बोले देखो, बाप या मां, गुरु, ध्यान देना है, बाप मां गुरु लंबे समय तक बीमार होता है ना, बेटे को, बहू को, चेलों को, सेवा करने का मौका देते हैं। क्या देते हैं? नहीं तो बेटों को, बहुओं को, मां बाप की सेवा करने का अवसर कहां मिलेगा? ये कौन देगा ये अवसर? तुरंत मरने वाला क्या अवसर देगा बेटे को? तुरंत मरने वाला क्या बहू को ये अवसर देगा? तुरंत मरने वाला क्या चेलों को, शिष्यों को सेवा करने का मौका देगा? वो शिष्य धन्यभागी हैं जो गुरु की सेवा करने का अवसर मिल गया उनको। वो बेटे बहू हैं वो धन्यभागी हैं जो अपने मां बाप के सेवा करने का मौका मिल गया। अनेक जन्मों के पुण्य की बिना नहीं मिल सकता है। तो मां की सेवा करने कहां जाएंगे वो? पिता की सेवा करने कहां जाएंगे वो? बाप ऑन द स्पॉट मर गया, मां मर गए, क्या करेंगे वो? कैसी सेवा करेंगे वो? गुरु मर गया तुरंत। इसलिए ये भाव रखे कि हमको अवसर मिला है, सेवा करो। प्रसंग बड़ा सुंदर है। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल भेदी न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीणा असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्याम सपरियाम कथय कथ अहम ते कल्पया निंदि मौले। हे इंदु मौले, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रशेखर, मौले माने शिर, शेखर मुकुट, सिरमौली चंद्रमा है मुकुट जिसके, वह इंदु मौले। हे इंदु मौले संबोधन है। भो इंदु मौले, आपकी पूजा करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि पूजा में सबसे पहला वस्तु है भोजन, यानी भोग लगाना पड़ता है। भगवान को भोजन चाहिए, भोग लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी, और वही भोजन भगवान के लिए देना चाहिए जो भगवान को सबसे प्रिय हो। भगवान को जो प्रिय हो वो देना चाहिए, अपने को जो प्रिय हो वो नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? अपने को जो प्रिय है वो भगवान को देते हैं, भगवान को जो प्रिय है वो भगवान को नहीं देते, अपने को जो प्रिय है वो भगवान को देते हैं। करते क्या है? अपना पेट खराब हुआ और खिचड़ी खाने की इच्छा हुई, अपने लिए खिचड़ी बनाई, उस दिन भगवान को भी खिचड़ी खानी पड़ेगी पड़ेगी। इच्छा न हो तो भी खाना पड़ेगा कि नहीं भगवान को? बोलो, तुमने कभी पूछा भगवान को खिचड़ी खाने की इच्छा है कि नहीं? तुम्हारा तो पेट खराब हुआ, जबरदस्ती खिचड़ी खाना पड़ रहा है। परमात्मा को तो पेट खराब नहीं हुआ है ना, उनको तो हलवा पका के खिलाओ, लेकिन कोई नहीं बनाता है हलवा है। वो अपने को जो अच्छा लगा वही बनाया। महाराज,
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: कि शरीर का भाव नहीं रखना है, उसके साथ मन के सुख दुख से अलिप्त रहना है और उसके साथ अज्ञान का निवारण करने की अदम्य इच्छा, डिजायर, इंटेंस बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन, हाँ, एकदम तप तड़प होनी चाहिए कि छूटना ही है। ये तीन एक सीध में आएंगे तो गुरु का ये वाण क्या है, वाणी रूपी वाण है। और विष्णु भगवान को क्यों वाणी, ये वाणी विष्णु वाणी है, क्यों ऐसा कहा, ये विष्णु के मुख से जो वाणी निकल गई वो आत्मसात करेंगे तो ही वो बाण बन सकेगा। ये भगवत गीता का जो उपदेश दिया है यही बाण है, यही ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी, यही ज्ञान का अज्ञान का उपशमन कर सकता है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये भगवत गीता का जो उपदेश है उसका सार, उसका जो ज्ञान है उसके ऊपर हम इतना जोर देते हैं वो इसी कारण। ये प्रतीकात्मक है, तीन शरीर कोई असुर के नहीं, मेरे ही है, बात याद रखना। मेरे भीतर असुर वृत्ति यानी किसी का परमार्थ रोकना, खुद परमार्थ नहीं करना वो तो असुर वृत्ति है ही, किसी का रोकना भी असुर वृत्ति है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई अच्छी किताब किसी दे दे, प्रवचन में जाने के लिए प्रवृत्त करे, कुछ अच्छा कुछ किसी का करना तो कभी आपका भी कुछ तमस चल रहा होगा तब कोई धक्का मारने वाला भगवान हाथ भेज देगा। तो ऐसे कहते हैं यहां श्री पुष्पदंत जी को, हमने ये सब दूसरी बात, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात के ऊपर क्यों ज्यादा भार दिया, क्योंकि हमारी साधना चल रही है। पर यहां पुष्पदंत जी को तो स्तुति की ही बात है, तो पुष्पदंत जी को यहां क्या कहना था, तो बोले कि हे परमात्मा, ये सब पदार्थ आपके स्वाधीन है, आपसे उत्पन्न हुए हैं, आप अपनी मर्जी से उसे चला रहे हैं, ये मैं अब जान रहा हूं। अब के बाद आपका कोई भी आडंबर मुझे आश्चर्यचकित करेगा, मेरे आपका आडंबर हे परमात्मा मेरे आनंद का ही कारण बने, मेरे उपहास का नहीं। उपहास मत करना, ज्ञानी जन कुछ भी करे उनका उपहास मत करना, बस इतना ही मेरे अंदर इतनी शक्ति दे कि आपका जो सामर्थ्य है उसको मैं आडंबर समझ के चकित हो सकूं, आश्चर्यमय हो सकूं, पर उसके ऊपर कोई भी प्रकार की टिप्पणी या मुख से बोलना सर्वथा अनुचित है। अभी कहते हैं कि हे त्रिपुर हर, ये त्रिपुरासुर का तो नाश किया, बात ऐसी आती है कि तीन सीध में आ जाते हैं तब ये गुरु जो है वो नाश कर देते हैं शिव, ऐसे ही गुरु तत्क्षण हमारे अज्ञान को नाश करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। प्रणवो धनुष्यरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम। गुरु अपने शिष्य का अज्ञान दूर करने में प्रमाद नहीं करता है तो हम कैसे प्रमादी हो सकते हैं। ऐसा मत समझना कि वन फाइन डे गुरु पर सत्य हो गई, मैं आपको गुरु मान रहा हूं पर बस जो करते हैं वो करना है, नहीं। हमारी ड्यूटी क्या है कि तैयार रहना है। गुरु यहां बांध लेके बैठे हैं, सीध में लाने की पुरुषार्थ हमें करना है, हम क्या समझते हैं पुरुषार्थ भी वही करे, उनके उनको शरणागत हो गए इतना बस हो गया, नहीं काफी नहीं है, वो तो बांध लेके बैठे ही है। उनके मुख से निकला हुआ वो अब्रह्म की बात करेंगे ना, अतत की बात करेंगे ना, जगत की बात करेंगे ना, तो भी वो शर हो जाएगा। उनके मुख से, उनके मन बुद्धि शरीर के संघात से जो कोई भी कर्म होता है वो हमारे लिए शर के बराबर होता है। ऐसा मत समझना कि गुरु तत्वमसी बोले तो ही हमारा उद्धार होगा, नहीं, वो कुछ भी बोले तो हमारा उद्धार होगा। इतनी श्रद्धा, इतनी अदम्य श्रद्धा हो तो ही कुछ हमारा हो सकता है, बाकी छोड़ देना कि हमारा कुछ हो सके। तो यहां है हे त्रिपुर हर, त्रिपुर को त्रिपुर के संहारक परमात्मा। अब ये विष्णु भगवान जो शर बने थे, जो बाण बने थे, वो भगवान कैसे है? बाण ऐसे ही किसी को नहीं बनाते, परमात्मा का बाण बनने के लिए भी कौन सी क्वालिटीज चाहिए, कैसे गुण चाहिए। हम भी इच्छा करें कि गुरु वो हमारी सेवा लेना। सब हमारे आश्रम में भी आके बोलते हैं, भाई हमारे लायक जो सेवा है वो आप कहना, हमारे लायक जो सेवा है आप बताना। सेवा बताएंगे, पर सेवा करने वाला कैसा होना चाहिए? तो बोले कि ऐसा, ये विष्णु भगवान कैसे थे, परमात्मा ने उपयोग किया वाण की तरह, तो हाथ में तो लेना पड़ा ना, तो हाथ में लेने के लिए अधिकार तो प्राप्त करना चाहिए। तो कौन से, ये विष्णु जी कैसे अधिकारी थे, विष्णु जी के पास, विष्णु जी से पक्षपात क्या किया, क्यों ब्रह्मा जी को नहीं बनाया? तो बोले कि फर्क क्या है जरा देख लीजिए, विष्णु भगवान जब आपकी भक्ति भाव से पूजा कर रहे थे तब शिव सहस्त्र नामावली बोल के एक एक कमल चढ़ा रहे थे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल को आपने छिपा दिया। तो एक कमल कम होने से विष्णु भगवान ने कहा कि अब मैं जो पूजा का संकल्प लेके बैठा हूं, संकल्प टूटने से आसन भी टूट जाएगा और उसका दुष्परिणाम आएगा। एक बार संकल्प तो कर लिया है, अब परमात्मा आप ही करो व्यवस्था। तो तुरंत ही उन्होंने सोचा कि मुझे तो लोग पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, मैं तो कैसा हूं? तो बोले मेरी तो आंखें कमल, मुझे तो कमल नयन बोलते हैं सब लोग, तो मेरी ये आंख निकाल के मैं रख देता हूं, दे देता हूं। ये स्थूलतया बिना सोचे ही आंख आके रख दी। तो क्या हम हमारी आंख दे दे तो गुरु प्रसन्न होंगे? तो बोले नहीं, ये भी प्रतीकात्मक है कि गुरु की प्रियता के लिए, जिसके पास हम ज्ञान लेते हैं उसकी प्रियता के लिए कुछ भी दे देना पड़े तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, उसके ऊपर तर्क नहीं लगा। बुद्धि तो है, बुद्धि तो उन्होंने लगाई कि आंख दे दूं, पर बुद्धि के ऊपर तर्क नहीं लगाया कि अरे आंख कमल हो सकती है क्या? बस इतना ही सोचना था कि ये पूजा उनकी पूरी नहीं होती थी, अरे ये दोबारा करेंगे, नहीं, एक क्षण भी नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं सोचा। यानी जब ये ज्ञान देने के लिए प्रवृत्त कोई मिल जाता है तो अपनी कोई भी सुखाकारी का ख्याल हमें नहीं करना है, साधक को सतर्क रहना है, अपने कुछ भी व्यवस्था नहीं करनी है। कुछ भी हो, अगर ये मिलता है तो आंख से ज्यादा प्रिय क्या हो सकता है किसी को? हाँ, प्रिय से प्रिय चीज भी दे देनी पड़े तो भी संकोच। ये बताता क्या है कि भीतर कुछ भी संकोच, और परमात्मा को देते समय कहीं भी खट क्या संकोच मत रखना, और वो तभी रख सकेंगे जब श्रद्धा होगी। संकोच कब आएगा? जब तर्क आ जाएगा, विचार आएगा, और अगर संकोच तर्क आ गया तो उसके भी बचने की व्यवस्था है, वो मत करना, माफी मांग लेना पर मत करना, क्योंकि संकोच से किया गया कर्म गुरु को तो पता लगता ही है, दोष हमारा आ जाएगा। तो जरा ऐसी छोटी छोटी बातें, हमें जो कुछ भी सीखा जाती है हमारे साधना के लिए इतना पर्याप्त है। तो यहां ऐसे विष्णु जी ऐसे ही आपके प्रिय नहीं बने हैं, ऐसा पुष्पदंत जी को कहना है कि ये कोई प्रिय बन जाता है तो ऐसे ही प्रिय नहीं बन जाता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तरह तरह की परीक्षा होती है, जैसे हम, जैसे हमारे संस्कार ऐसे परीक्षाएं होती है। तो भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, आप वैसे भी मेरे प्रिय ही थे क्योंकि आप सच बोले थे कि मेरा आप कारण नहीं जान सके, पर अब मुझे आप ज्यादा प्रिय हो, इसलिए तीनों भुवन का, तीनों लोक का, चौदह लोक का, तीनों भुवन का मैं आपको अधिपति बना रहा हूं, विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान बोले कि भाई अधिपति तो बनाओ, पर ये असुर कुछ कम नहीं है, असुर और दानव हाँ क्षण क्षण में आते रहते हैं, उनके संहार की व्यवस्था क्या आप मेरे लिए कर रहे हैं? मेरी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? मेरे राजा तो बना दिया, बिना राजा को सिक्योरिटी गार्ड के बिना ठीक नहीं होता है। विष्णु भगवान, तो शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुदर्शन चक्र दे रहा हूं। और ऐसे सुदर्शन चक्र देते हुए भगवान शिव ने कहा कि देखिए, मेरा और आपका तो अभेद है, आप और मैं एक ही है, फिर भी ये व्यवहार में आप मुझे बहुत प्रिय है, मैं सुदर्शन चक्र दे रहा हूं, और हे विष्णु ये मैं कह भी रहा हूं कि आप में और मुझ में जो अंतर देखने वाला है उसका अवश्य नाश होगा, अवश्य वो नरक में जाएंगे, ऐसा शिवजी ने कहा। तो ये पुष्पदंत जी कहते हैं कि आपकी भक्त की महिमा का कोई अंत ही नहीं है, हा? तीनों भुवन साम्राज्य सार्वभौम, और यही साम्राज्यत्व बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है सस्वराट भवती। गुरु जब आत्मा का तत्वमसी वो ब्रह्म तू है ऐसा अगर आपको समझाने में प्रवृत्त जो कोई भी गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वात्मा का अपने आत्मा का ही दान दे देते हैं। और जब आपको लगेगा कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, वो परमात्मा मैं ही हूं, वो परमात्मा मेरे भीतर है, इतना भी समझ लिया तो आप स्वराट बन जाते हैं। ये उपनिषद वाक्य है स स्वराट भवती, और ये बात यहां की गई है। तो बोले परमात्मा पुष्पदंत जी को इतना ही कहना है कि जो आपको प्रिय रूप से प्रार्थना करता है वो तो सार्वभौम हो जाता है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी स्तुति कर रहा हूं, मुझे भी आपके स्वरूप का दान दीजिए। अब कहते हैं कि हे शिव जी आप अत्यंत कृपालु है, यहां यज्ञ कर्म की बात की गई है, ये जो हम जी रहे हैं कोई भी प्रकार के कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ ही चल रहा है, पर ये कर्म देश में उठता है, एक देशीय है, अल्पकालीन है, थोड़े काल से बद्ध है हमारे कर्म, देश से बद्ध है कोई भी कर्म छोटा या बड़ा, और वस्तु से भी बद्ध है यानी सीमित है, परिच्छिन्न है। और ये जो ज्योतिषोम यज्ञ है, लक्ष्मी याग, विष्णु याग, ये सब जो याग है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, तो ये सब यज्ञ करते हैं वो थोड़े ज्यादा दीर्घकालीन होते हैं। हमारा ये यज्ञ, ये मैंने कुछ बोला या यहां से पुस्तक यहां उठा, ये मेरा कर्म हो गया, ये कर्म यज्ञ ही है, पर ये छोटा छोटा है, शुरू होना खत्म होना बहुत कम समय में शुरू होता है खत्म हो जाता है। वो जो यज्ञ जो है जहां हवन देते हैं याग करते हैं वो थोड़ा ज्यादा चल रहा है, पर उसकी भी अवधि है, वो भी देश और काल से बद्ध है। तो सकाम कर्म इसे कहते हैं, सकाम कर्म यानी पहले संकल्प आपके पास संकल्प किया जाता है, करवाया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा मेरा नाम, ऐसा मेरा गोत्र, ये देश है, ये काल है, इन इन सबको साक्षी मान के मैं ये संकल्प कर रहा हूं कि इसकी सिद्धि के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। अब यज्ञ कर्म तो समाप्त हो गया, सिद्धि कब मिलती है, सिद्धि तो बाद में मिलती है, तो कर्म की समाप्ति होने के बाद इसे ब्रह्मसूत्र में शंकर शारीरक भाष्य में अपूर्व कहा गया है कि उसके बाद भी कर्म का फल तो चलता ही रहता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र तुरंत भी मिल सकता है या फल के रूप में उसका आरोह किया और फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद भी पुत्र हो सकता है। तो ये जो यज्ञ कर्म समाप्त होने के बाद फल मिलने तक बीच में तो यज्ञ नहीं चल रहा है, बीच में तो हम फिर से हमारे कर्म कर रहे हैं हमारी मन बुद्धि चित्त के अहंकार से, तो बीच में फल देने तक ये कौन बनाए रखता है, ये कृपा कौन बनाए रखता है, बिना कृपा तो फल नहीं मिल सकता। जो सकाम कर्म करने के लिए आपने प्रार्थना की थी, वृष्टि के लिए भी हम प्रार्थना यज्ञ करते हैं कि भाई बारिश हो जाए, बहुत बारिश हुई तो बारिश बंद होने के लिए भी करते हैं, तो यज्ञ खत्म होने से वृष्टि होने तक कौन संभालता है, तो बोले आप। ये यज्ञ और फल के बीच में रहने वाले आप शिव भगवान हैं, आप शिव जी हैं, हे महेश्वर आप कैसे हैं, आप अकामी हैं, आप निष्काम हैं, और जो निष्काम है वही दूसरों के काम जो है वो संभाल सकता है, जिसे अपने ही काम की पड़ी हो अपने लिए भागता रहता है वो दूसरे का काम कैसे कर सकेगा। हाँ, तो ये निष्कामता है, आप निष्काम परायण है, अकामी है, इसीलिए सर्व काम होकर यज्ञ का फल देने के लिए मात्र मात्र आप ही उचित है। इससे हमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि यज्ञ का फल देने वाले शिव जी है तो यज्ञ करने की भी क्या जरूरत है, यज्ञ से फल तक कोई बीच में संभालने वाला है तो शिव जी का नाम लिया तो पर्याप्त है, फिर यज्ञ करने की भी क्या जरूरत है, शिव जी का नाम ही लो और कामना कर लो। फिर थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि आगे बढ़ती है कि अरे कामना करूं या ना करूं, अगर शिव है और ये शिव जो है वो सब कुछ दे सकते हैं तो कामना करूं या ना करूं मिल ही जाएगा, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि यहां तक पहुंचना है। और जब ऐसा हो जाता है, और इसीलिए निष्कामता, अकामता, आप्तकामता, आत्मकामता, इसीलिए हम कहते रहते हैं ना कि भाई ये मन बुद्धि के संस्कार जो है, आसक्ति है, विषय की जो आसक्ति है, जो खिंचाव है, परिस्थितियों की आसक्ति है, व्यक्तियों की जो आसक्ति है, वो कम करने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पा लिया तो ये सब मिल ही जाएगा। हाँ, ये सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करने के लिए पुष्प दंत जी स्तुति रूप कहते हैं कि हे परमात्मा, यज्ञ को संभालने वाले यज्ञ कर्म के फल के रूप में आप ही हैं, तो मेरी इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए कि आप ही सब कुछ है, तो मैं आपको ही पाने की चेष्टा करूं, और सब चीज से भी आप ही मिलने वाले हैं और सीधे भी आप ही मिलने वाले हैं। ऐसी कुछ भावना के साथ पुष्प दंत जी आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 21, क्रिया

0: कृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधारभसः।
1: प्रिया दक्षो दक्षः, हे महादेव, सब प्राणियों के आप अधिपति हैं। ऐसे महादेव के शरण आने वाले ये दक्ष प्रजापति राजा है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था उसमें जो यजमान थे, ऋषि और अर्धवर्यु थे और देव जो थे वो सब सभासद बन के आए थे, यानी सब जगह से ज्ञानी, ऋषि, अर्धवर्यु, पंडित, ये सब सभा भरी हुई थी देवों से। ऐसी सभा में भी यज्ञ के फल देने के लिए आप एकमात्र देव उपस्थित है। आपके होने के बावजूद भी दक्ष प्रजापति वो यज्ञ के फल को न पा सके। क्यों नहीं पा सके? शिवजी तो वहां हाजर थे, वहां उपस्थित थे, फिर भी फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बिना श्रद्धा किया हुआ कर्म यजमान का नाश ही करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ के लिए हम उपस्थित हो गए, उद्धृत हो गए, सुनते हैं, पर श्रद्धा नहीं है। हाँ, जस्ट सुनते जाते हैं। इससे मेरी चित्त शुद्धि होगी ही, आत्म साक्षात्कार होगा ही, मैं ब्रह्म को इसी समय इसी क्षण जान लूंगा, ऐसी श्रद्धा से कितना श्रवण हमने किया। श्रवण सुनते वक्त भी इसीलिए कहते हैं ना कि प्रतिक्रिया रहित जो सुनना है वही श्रवण है। टू लिसन एनीथिंग विदाउट रिएक्शन इज कॉन्टेम्पलेशन, ऐसा बोलते हैं। तो प्रतिक्रिया आ गई तो श्रवण नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये दक्ष का यज्ञ ही चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। शिवजी है, शिवजी के बिना तो ज्ञान यज्ञ होगा ही नहीं ना। ज्ञान की बातें शिवजी ही कर सकते हैं, और जो गुरु है वो शिव समान है। इसीलिए कहा है शिवे रुष्टे गुरु स्त्राता। शिव रुट गए तो गुरु है, वो तारण कर सकेंगे। गुरु रुष्टे न कष्ट न, गुरु रुट गए तो कोई तारणहार नहीं है, वहां शिवजी भी नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है ना। इसलिए तो सुनते समय भैया कब खत्म होगा, अभी 8 मिनट बाकी है, तो दक्ष बन गए। ज्यादा ले लिया, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए था, ये स्वामी जी के पास हमने ऐसा सुना था। हाँ, ये सब चीजें हमें दक्ष बनाती है, दक्ष प्रजापति। दक्ष याने ये हम कहते हैं ना, दक्षता अच्छी क्वालिटी है, ये दक्ष है, कार्य दक्ष बोलते हैं कि इनके अंदर सब कुछ अच्छा करने की क्वालिटी है, हमारे अंदर भी है। कैसे क्वालिटी है भाई? ये ब्रह्म सुनना जानना कोई कम दक्षता नहीं मांग लेता, बड़ी हिम्मत चाहिए ना, ये प्रवचन सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, वो है। हम सब कार्य दक्ष है, ज्ञान लेने के लिए उद्धृत हुए हैं, पर नष्ट कैसे हो जाता है? यही सब प्रतिक्रियाओं से हमारा इकट्ठा किया गया पुण्य एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती रहती हूं कि बी केयरफुल, कोई भी ज्ञानी जनों के साथ कोई भी प्रकार का वर्ताव करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए। तो बात कुछ ऐसी हुई थी कि जो सती थे उमा पार्वती जी, दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने पंचाग्नि का तप करके शिवजी को प्राप्त करने की बड़ी विकट साधना की और प्राप्त किया, पर शिवजी का आडंबर आपने देखा ना। ये पृथ्वी के रथ, हाँ, ये सूर्य चंद्र पहिए, ऐसे इससे भी ज्यादा उत्कृष्ट आडंबर वो जब शादी करने गए ना तब था। हाँ, भूत पिशाच की टोली लेके क्या उन्होंने वेश बना, पंचमुखी होके गए थे, एक सर ऊपर यहाँ चार मुख, पूरी भस्म विभूत, और नंदी के ऊपर ऐसे सवारी चली थी, और सब नाग और ये सब सर्पों की माला, और बड़ा अद्भुत स्वरूप था। चंद्र यहाँ गंगा जी, और ऐसे स्वरूप को देख के तो वो दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा था कि ये बराबर है, महादेव शिव जी है, पर इनको शिव जी कहना उचित है क्या? ये गड़बड़ यहाँ हो गई। मानते तो ने, मानता तो मैं भी हूँ कि लोग कहते हैं ये महादेव इसलिए है, मानते तो हम भी हैं कि लोग कहते हैं ये ज्ञानी है, ये गुरु है, ये संत है, तो है, पर हो सकते हैं क्या ऐसा करते हैं? हाँ, ऐसा बोलते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसा जाते हैं, ऐसा सोते हैं, हो नहीं सकते। ऐसा हो गया तो समझ लेना हमारा यज्ञ नष्ट होने वाला, अब तक जितना सुना वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है घंटे का ही नष्ट होगा, यहाँ तो ऑल और नन चलता है। हाँ, वो आपके कंप्यूटर जैसा है, एक चिप दबा दी, डिलीट की तो सब डिलीट हो गया, तो ऐसा नहीं कि इतना ही डिलीट होगा, सब कुछ गया यहाँ तो, फिर से बैठिए, फिर से सुनिए इतना। बहुत डेलिक, बहुत सतर्क होने सुनने की बात है, हंसने की बात है, हंसिए, पर भीतर से जरा अपने मन को समझा दीजिए कि बी केयरफुल, हाँ आपके भले के लिए है ये। तो जब दक्ष प्रजापति कोई यज्ञ का अनुष्ठान लेके बैठ गए, तब उन्होंने अपनी पुत्री को आमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आमंत्रण? क्योंकि शिवजी को नहीं बुलाना था, इसीलिए। और ये पुत्री, ये गिरिजा क्या है? आत्मा त्वम, आत्मा शिव है, गिरिजा मति सहचरा, ये गिरिजा है जो पार्वती जी है, ये सूक्ष्म बुद्धि है, और जहां सूक्ष्म बुद्धि नहीं है वहां शिव तो आएंगे ही नहीं। तो पुत्री को हुआ कि मेरे पिता के घर जाने में मुझे क्या पूछना, वो तो हक होता है, हक बनता है, कभी भी चले जाइए, वहां थोड़ी कहना है कि मैं आऊं, ऐसा भी पूछना नहीं है। भगवान ना बोलते हैं, अनइनवाइटेड नेवर गो, ऐसा है ना कुछ, क्या बात इंग्लिश में आप बोलते हैं, बिना आमंत्रण मत जाइए, अपमानित होंगे। बहुत समझाया पार्वती जी को, नहीं माने। पुराण में बात आती है, और वो जो चित्र जो है बड़ा दुर्लभ है, वो कभी मुझे किसी ने बताया था, वो चित्र कपि चले अगुआइन, कपि चले, शिवजी ने क्या किया, पार्वती जी तो चले अपने रथ और सब सैनिकों के साथ, पर शंकर भगवान को पता था कि ये ठीक नहीं है, सती का वहां रक्षण नहीं होने वाला है, और सती चाहते भी नहीं, मैं चाहता नहीं कि मैं जाऊं, तो कपि का रूप धारण कर लिया शिवजी ने, और कपि बन गए, और उसके रूप में अगुवाइन, वो इनका, इनकी पालखी चल रही थी, उनके आगे शिवजी चल रहे थे कपि के रूप में, बंदर के रूप ले, वानर का रूप धारण ले लिया, और वो चलने लगे। ये बहुत

अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म दृष्टि से वो परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कर ली है और प्राप्त कर लिया है, तो वो सब सती है, सब पार्वती है, सब उमा है, सब ज्ञान का प्रतीक है, वो शक्ति है, पुरुष हो या स्त्री हो। और उसका अपमान स्वयं शिवजी, स्वयं स्वात्मा, स्वयं जो आधार है, जो ब्रह्म है, वो उसका अपमान भी नहीं सहन कर सकते। और फिर मारने को वो ब्रह्म ही आएंगे, हाँ, और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, यहां कोई लेबल थोड़ी डाला है कि इसको मिल गया इसको नहीं मिला है, एंड हु आर वी टू जज। हाँ, इसलिए बहुत ही नम्र रहना और वाणी का विलाप प्रलपन साधु संतों के साथ बहुत सोच समझ कर करना। उम्र कम हो ज्यादा हो, उम्र का यहां लिहाज ही नहीं है, छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, ज्ञानी या अनज्ञानी, वो कुछ बात ही खत्म हो जाती है। और ये सब अपने परमात्मा आप देखिए तो सब किशोर रूप में ही है, बालक रूप में ही है, युवान ही है, कोई उम्र वाला नहीं बताया। देन ऑल्सो यू मस्ट रिस्पेक्ट। तो यहां कहा है कि अगर सूक्ष्म बुद्धि की सूक्ष्म बुद्धि अपमानित हुई, उसका प्रभाव कम किया, तो क्या होगा? तो शिवजी संहार करेंगे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का संहार किया, यज्ञ का संहार यानी उन्होंने जितने पुण्य इकट्ठे किए थे एक ही क्षण में वो पुण्य का विध्वंस हो गया, नाश हो गया। और शिव तो वहां उपस्थिति थे कपि के रूप में, वो आपकी उपस्थिति से तो बिगड़ी भी बननी चाहिए, पर यहां बना हुआ ही बिगड़ गया है वो। इस प्रकार, क्योंकि वृत्ति कैसी है? प्रतिक्रिया वाली वृत्ति है। तो जहां आपका देहाध्यास आया, समझना देहाध्यास शरीर मैं हूं ऐसा अहंकार रख के कर्म किया, अध्यात्म कर्म किया तो नाश है, मैं ये मन हूं ऐसा करके कर्म किया तो नाश है, मैं ये बुद्धि हूं मैं ये जानने वाली हूं ऐसा समझ के कर्म किया तो नाश है। मात्र सूक्ष्म बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से, आस्तिक्य श्रद्धा से ही ये कर्म करना उचित है, नहीं तो नाश है। ऐसा पुष्प दंत जी परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं और परमात्मा को कह भी रहे हैं कि कभी गलती से भी मुझसे ऐसा काम हो भी गया हो तो वो आप क्षम्य गणना। विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व, ये कैसी इसलिए गाते हैं, जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु, बार बार ये कहना पड़ता है इसीलिए, क्योंकि अनजाने में भी हो गया तो हे परमात्मा आप दयालु है हमें क्षम्य करना। ऐसे ही परमात्मा और गुरुजनों की कृपा हम पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta
3: 23.
2: Thank you.

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: वो असंग है। अब जो है ये संकेत किया और जब वो ऊर्ध कर देता, इसलिए योगियों की जहां चर्चा आती है तो प्राणायाम आदि की चर्चा की गई, उस प्राणायाम के भेद बतलाए गए, कुंभक रेचक आदि और वहीं पर वस्त्रिका लंबिका आदि ये चर्चाएं की। योगी भी जो ज्ञान योगी होता है वो क्या करता है, लंबिका के द्वारा, लंबिका प्राणायाम के द्वारा वह भी उस को ऊपर ही वापस कर देता है, इसलिए वो भी क्या हो जाता है, तेजस्वी होता है। लेकिन ये कब करता है, उस योग की अवस्था। लेकिन वित्थान काल में फिर उसका जो है वो नीचे आने लगता और फिर व्यवहार में उसकी प्रक्रिया हो जाती, व्यवहारिक हो जाता। तो ये सब चर्चा की गई। तो भगवान शिव क्या है, उसको ऊर्ध गति देने वाले, ऊर्ध गति देते हैं और ऊर्ध गति देते हैं, इसलिए भगवान को जो है बोलते हो कि कितने समय तक बैठे रहे, तो बीते संबत सहस सतासी, है ना, ऐसे भगवान। तो उनके अंतर्गत ये सामर्थ्य है। अब विचार ये करना, ये गति हो, लेकिन जब वो नीचे आता है तो वायु के साथ में, और वायु के साथ में आकर के मूलाधार आदि उसे पहुंचता है और सारे शरीर को नियमित रूप से क्रिया करने की सामर्थ्य देता। ये नियम है। अब जो है ये नियम है, लेकिन ये नियम होते हुए भी नियम जो है किसके बल से हो रहा है, तो उसी शिव के बल से। और वह शिव सारा बल देते हुए भी कैसा है, का असंग भी है। तो ये वायु भी क्या है, वायु भी वैसे भी है माया का रूप ही। पार्वती को भी इसीलिए भय लगा, वो भी प्रकृति का प्रतीक। तो एक अंश को लेकर के, जैसे भगवान का एक अंश है नीला पड़ गया, लेकिन वह नीला होते हुए भी उनको विकृत नहीं कर सका, असंगता उनकी बनी रही। इसी प्रकार से समस्त संसार हमने कैसा कहा, तो शास्त्र में पढ़ते हो है अनरथ, क्या कहा, जो रित नहीं है, क्या कहते हो, संसार कैसा है, अनरत, जो रित नहीं है। लेकिन उसमें रितता कहां से आती है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से तो वायु दिखलाई दे रही, लेकिन वायु भी उसको लेकर के आती है कहां से, तो वो आत्म तत्व है, वो शिव तत्व है, ऐसा संकेत किया। और वो शिव तत्व है वो कैसा है, वो वस्तुतः सत्य है। वो कैसा है, वस्तुतः अपरिवर्तनीय है। और वायु जो है वो कैसा है, नियमत। लेकिन वो भी नियम उसका कब चलता है, तो उसी की सन्निधि को लेकर के, उसकी सन्निधि के बगैर वो नियम नहीं चलता। तो ये सब व्यावहारिक, इसको मायिक जिसको कहते हो, तो उसके अंतर्गत व्यवहारिक और मायिक के अंतर्गत भी जो अमृतत्व दिखाई दे रहा है, जो चेतनत्व दिखाई दे रहा है, वो किसके बल पर है, तो रित सत्य के बल पर, इसलिए उसे रित सत्य कहा। अब जो उसकी वस्तु रूपता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब यहां पर हमको तो प्रत्यक्ष रूप से वायु हुई, प्राण क्रिया हो रही है नवज देखते हो तो कहते हां है, और नवज नहीं चल रही है, नहीं मालूम पड़ रही, तो कहते नहीं है, है ना, तो रित और रित दोनों का प्रयोग कर देते। तो अब उसे है ये सत्य, उसे कब कहते हो, उसकी सत्ता को स्वीकार कब करते हो, तो वायु को लेकर के, और वायु के अभाव में, वायु के नियम के अभाव में उसे अनर्थ सिद्ध कर देते। तो अब यहां पर जो है जितना भी ये कार्य है तो सब कैसा है, कहा मने अनर्थ होते हुए भी रित है। किसके बल पर है, तो हमको प्रत्यक्ष रूप से तो प्राण शक्ति दिखलाई दे रही, वायु दिखलाई दे रही, लेकिन वायु भी किसके बल से करती है, तो उसी के बल से। इसलिए कुछ लोग गाते हैं ना, सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, वायु आती जाती उसको लेकर के, तो उसी के साथ में ये मैं स्फुटित होता है, इसके बगैर मैं का स्फुटन हो सकता नहीं। तो अब जो है सोहम मंत्र जपे नित प्राणी बिन जिह्वा बिन दंत है, वैठ एकांत जमा कर आसन, मूंद लिए दो कान इत्यादि करके संकेत वहां करते, और अनहद नांद सुने या घट में है, ये सब चर्चा उसकी करते हो। तो ये जो इस प्रकार से यहां पर संकेत ये किया गया कि भगवान शिव जो हैं वो सत्चित आनंद रूप से वो क्या हैं, तो सत्य है, लेकिन उन्हीं की सत्यता को लेकर के, उपाधि विशेष को लेकर के, वायु को लेकर के जो नियम चल रहा है, उस नियम को लेकर के भी सत्यता प्रतीत हो रही है, सत्ता प्रतीत हो रही, तो वो भी सत्य है, लेकिन वो सत्य कैसा है, रित सत्य, व्यावहारिक सत्य है, और व्यावहारिक सत्य जो है कब तक रहता, तो उसी की सन्निधि काल तक रहता। जैसे निरुपाधिक जो है वह कैसा है, सत्य है, और सोपाधिक वही रित है। सीधा सा तात्पर्य समझ लो, तो सोपाधिक जो होकर के वो रित है, और निरुपाधिक होकर के सत है। इसलिए यहां पर वायु को ही हम प्रत्यक्ष रूप से समझ रहे, इसलिए कह देते हैं ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी, ये चर्चा की है। लेकिन यथार्थता क्या है, तो इसका संकेत किया गया। अब मृत्यु से सब लोग भयभीत होते, मृत्यु से क्या होता, मृत्यु से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भयभीत है, लेकिन क्या भय करने से मृत्यु हमें छोड़ देगी, भय करने से मृत्यु किसी को छोड़ सकती नहीं। मृत्युर विभेषी किंतात, क्या तुम मृत्यु से भयभीत हो रहे, कहा हां, तो कहा भय क्यों कर रहे हो, इस भय से क्या मृत्यु छोड़ देगी। एक नियम होता ना, भालू होता, भालू वो क्या करता है, जो उससे डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो फिर उसे वो ग्रहण नहीं करता, छोड़ देता। कहा ऐसे ही मृत्यु छोड़ दे, कहा मृत्यु ऐसे नहीं छोड़ती, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती, तो क्या करना चाहिए, यदि मृत्यु से बचने का फिर उपाय क्या है। तो कहने लगे मृत्यु यदि छोड़ती है तो किसको छोड़ती, तो शास्त्र कहता है अजात शत्रु है ना, कहा मृत्यु जो अजात है, जिसका जन्म नहीं होता, ऐसे उसी से भयभीत होती, उसी को छोड़ती है, तो अजातम मृत्युम विमुंचति, अजात को ही मृत्यु जो है त्याग करती। इसलिए अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने जब मृत्यु रुके लेकर के संवारे जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और दुखी हुआ अर्जुन, तो अर्जुन को उपदेश देना कहां से शुरू किया, कहा मृत्यु किसे नहीं छू सकती, तो यही कहा वेदा विनाशिनम है हिनम अज नित्यम इत्यादि करके कहा, अज है, अजता ही बतला है, तो जो अजात है उसी को मृत्यु ग्रहण नहीं कर सकती, और यदि मृत्यु से बचना है तो क्या करना होगा, क्या उपाय है, तो है क्या होना होगा, कहा अजात जन्मनी, तुम भी अजात जन्मा हो जाओ, और जब अजात जन्म वाले हो जाओगे तो अपने जन्म को अजातता में कर दो, तो कहा मृत्यु तुमको भी नहीं पकड़। इसलिए यहां पर भी वही संकेत किया गया, सत्यम ऋतम इत्यादि सब, और ये सब देवताओं से प्रार्थना करते हुए ऋषि की जो जिज्ञासा है वो केवल प्रार्थना उपासना मात्र नहीं, ये तो बल प्राप्त करना चाहता है, वो साधन चतुष्टय संपन्न है, उसकी जिज्ञासा क्या है, अजात पना, और वही जो है मृत्यु से उसे निवृत्त कर सकता, वहीं पर उसकी मृत्यु आदि की सब रहता हो सकती। तो ये जो चर्चा यहां पर की गई है, इसलिए संकेत किया गया कि वेद वेदा विनाशिनम नित्यम ये नमजव्यम, वहां संकेत कर दिया, और आगे जो भगवान ने कहा ऊर्ध मूल मदा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम छन्नांश्य परणानी यस्तम वेद स वेद, वहां इतने अंश को लो, यस्तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वही वेदवेत्ता, ये संकेत किया, लेकिन बताया किसको? संसार रूपी वृक्ष को। संसार रूपी वृक्ष की चर्चा कहा, उसको जान लेता है, वो उसे जान लेता, लेकिन कैसे जान लेता? तो वहां संकेत कर दिया ऊर्ध्वता की चर्चा की। मूल क्या है उसका, कारण क्या है? तो कहा ऊर्ध्व, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, और उससे ही यह सारा का सारा वृक्ष है। और वृक्ष में क्या है? नियम होते हैं। क्या नियम होता है वृक्ष में? भी क्या होता है? नियम होता है। वृक्ष जो है बीज से अंकुरित होता है, काढ़ से अंकुरित होता है, उसमें तना, शाखा, प्रशाखा, पत्ते, और पत्तों से पुष्प, और पुष्पों से प्रक्रम से फल, और फल किसका कारण? ये तो क्रम से चल गए, फल किसका कारण? तो फल है दुख का कारण। फल किसका कारण? दुख का ही कारण, क्योंकि फल होगा तो आप उसका स्वाद लोगे, लेकिन फिर तृप्त हो जाओगे, फिर तृप्ति चाहिए, तो पुनः उससे बीज से फिर वृक्ष बनेगा, फिर ये प्रसंखला जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब पत्ते क्या करते हैं, तो उनको बतला दिया, वो धर्म को फायदा करते, उससे फल आदि मिलता, तो ये सारी बातें भी हैं। अब यहां संकेत करते हैं कि यदि ऊर्ध्व को जान लिया तो क्या होता है? तो कहा वही वास्तव में वेदवित है, और वेदवित है वो, तो उसके लिए क्या कह दिया? केवल वृक्ष रूप से जानना नहीं, किंतु वृक्ष को कारण रूप से जानना। वृक्ष की कारणता क्या है? वृक्ष का मूल क्या है? वृक्ष में जो सत्य है वो क्या है, और रित है वो क्या? अन्य सब तो रित है, लेकिन वृक्ष का जो मूल है वही क्या है? सत्य। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही क्या किया गया? हाँ, वो तो कहा ही, वो तो उसकी सृष्टि की प्रक्रिया को बतलाया, लेकिन मूल की चर्चा करते हुए क्या कहा? प्रथम स्कंद के पहले दूसरे श्लोक में ही संभवतः आता है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रयो न मूलनम। तीनों तापों की निवृत्ति करने वाला कौन है? तो क्या संकेत किया? वास्तव वस्तु, जो वास्तव है, जिसमें कभी भी परिवर्तन जिस वस्तु में नहीं होता है, ऐसी वो है, वही क्या है? शिवदम, सम करने वाली, इसलिए नाम ही रख दिया सम करोति शिव संकर, ऐसा संकेत कर दिया। तो वही समन कर सकता है, तो वो शिवदम वही शिवत्व को दे सकता है, कल्याण को दे सकता है, वो वस्तु ऐसी है, लेकिन उसे प्राप्त कैसे करोगे? तब उसके लिए उपायों की भी चर्चा कर दी। क्या कर दी? धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराण सताम, जो सज्जन पुरुष हैं, जो साध पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, जो अन्वेषण कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? का धर्म में से भी अच्छी तरह से खींच लेते हैं, उज्झित निकाल देते, तो धर्म के नियम को ही उज्झित कर देते। धर्म का नियम क्या है? तो पत्ते क्या है? धर्म के प्रतीक, और धर्म से क्या बनेगा? फल मिलेगा दृष्टदृष्ट होकर को, तो वहां तो दुखी रहेगा, लेकिन ऐसे उसको भी जिसने जो है क्या है, उज्झित कर दिया, खींच लिया, निकाल लिया, और निर्मत्सराणाम सारे मत्सर जिसके हृदय से निकल गई, ऐसा जो सज्जन पुरुष है, ऐसा जो जिज्ञासु है, वही क्या करता? वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, कहीं अन्यत्र नहीं, अत्रैव, जो शिव को शिवत्व को देने वाली, कल्याण को देने वाली है, ऐसी उस वस्तु को वो जान लेता है, और उसे जान लेता है तो क्या है वो वस्तु करती? तीनों तापों को ही समाप्त कर देती, तो वहां मृत्यु आदि कहां रही? इन सबकी निवृत्ति उसकी हो जाती, ऐसा संकेत वहां भी किया। इसलिए यहां भी कहते हैं कि जानना किसको है, तो कहने लगे अजातम, जो अजात है, जिसका जन्म हुआ ही नहीं, और जन्म किसका नहीं हुआ? तो एकमात्र वस्तु है, ऐसी उस वस्तु के जानने की ऋषि की जिज्ञासा है, इसलिए इन सब से प्रार्थना करते हुए, अर्थात इन गुणों से, इन वनों से संपन्न होते हुए, और फिर ऋषि जिज्ञासा संकेत करता है कि व्यावहारिक सत्य क्यों? नियम ये है, लाइबनीज और ह्यूम की पाश्चात्य दार्शनिक हुए उनकी चर्चा हुई। लाइबनीज तो है बहुत को मानने वाला, अनेकत्व को मानने वाला, बहुत चिदड़ुवादी है, और ह्यूम जो है वो अद्वैतवादी। ह्यूम ने कहा कि मैं नहीं जानता मेरे अलावा संसार में कोई है, लेकिन उसने दर्शन ग्रंथ लिखा। लाइबनीज ने प्रश्न किया, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे अलावा कोई है, तो जब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तो ये ग्रंथ किसके लिए, फिर इस ग्रंथ का लेखन कैसे। तब उसने वहां संकेत किया जैसे आपके पंचदशीकार ने लिखा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर कहां होता, द्वैत भाषया, और पहले द्वैत की सिद्धि तब अद्वैत की सिद्धि। द्वैत की सिद्धि, अद्वैत तो सिद्ध ही है लेकिन उसे सिद्ध नहीं करना, लेकिन द्वैत सिद्ध होगा तो द्वैत की सिद्धि करके जब उसका निवारण होता तभी अद्वैत की सिद्धि, तभी उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से वहां पर भी उसने चर्चा की। तो वैसे ही यहां पर जब तक इस व्यवहारिक जगत में नहीं आते हैं तब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं, और व्यवहारिक जगत जो है या मायिक जगत जो है उसमें क्या है, रितता है। वो रितता भी किसको लेकर के है, वो नियमता है वो किसको लेकर के है, तो उसी को लेकर। लेकिन वो सारी की सारी रितता होने पर भी, नियमितता होने पर भी, वो सर्वथा भगवान शिव की जैसे चर्चा की वो असंग रूप रहते हैं, वैसे ही वो सारे धर्मों से असंग रहने वाला है। ऐसे उस तत्व को ऋषि जानना चाहता है, इसलिए वह यहां संकेत करता है कि वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मवासी है, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूं, और जो है तुम्ही ब्रह्म हो, और कहने लगे तुम्ही ऋत हो, तुम्ही सत्य हो, ये सब चर्चा की। तो इस प्रकार से उसे ऋत सत्य इत्यादि कहके, और वास्तविकता ये है, गीता में आपने पढ़ा सद असत्या अहम अर्जुन, क्या कहा, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, इसका क्या मतलब, मृत्यु भी मैं हूं और अमृत भी मैं हूं, इसका मतलब है कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य भी सापेक्षिक है। सत्य शब्द का प्रयोग कब होगा, असत्य को लेकर के होगा, असत्य का प्रयोग सत्य को लेकर के, सापेक्ष शब्द, इंद्रियन को द्वंद कहा, इसलिए कहा निर्माण मोहा है, द्वंद्वैर्मोक्ता, ये सब चर्चा की। तो ये सारी की सारी भगवान कहते हैं कि सत और असत जो भी सब क्या है, व्यवहार में ही तो होंगे, ये सब व्यवहारिकता है, मायक है, और ये जो सब है वो उनका अधिष्ठान कौन है। तो भगवान ने क्या कहा, अहम। तो भगवान मृत्यु नहीं, भगवान क्या है, भगवान तो जो है सो है, लेकिन यहां संकेत कर दिया गया कि ब्रह्म सत्ता त्रिक सत्ता कत्वाभाव, उसके बगैर कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, जब नहीं है तो कौन जानेगा कौन जनाएगा, लेकिन फिर भी कहने लगे कि उसी में ये सारा आरोपण है, वही सबका अधिष्ठान है, और उन आरोपणों का जब हम जो है आरोपण करते हैं, गर्मी पड़ती है, पसीना आता है, हैं? शरीर बदबू देने लगता है, तो क्या करते हो, उपाय करते, क्या उपाय करते हो, नाइसिल पाउडर लगाते हो, और नाइसिल पाउडर लगाते हो, लेकिन उसको कब तक लगाए रहते हो, यदि उसे लगाए रहो कहो इसने तो सुख दिया ऐसे नहीं हटाएंगे, तो क्या करेगा वो, और भी दुख देने लगेगा। ठीक, फिर क्या करते हो, उसका भी आप पहले उसे धारण करते हो, आरोप करते हो, फिर उसका भी निवारण कर, और निवारण कर देते हो तो आप ही आप बचते हो, है ना। ऐसे ही यहां पर ये माया ज्ञान आदि जो भी जो है सत्य असत्य आदि सबका आरोपण करके, और फिर इनका जब निराकरण कर दिया जाता है, तब जो अवशेष तया शेष बचता है वही कौन है, तो उसी की तरफ भगवान संकेत करते कि वो मैं। हम पढ़ते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां भी हमारा अहम क्या है, अहम में ही तो सारे धर्म है, लेकिन जब धर्मों का ही परित्याग कर दिया तो जो जिसमें धर्म रहेंगे वो कहां से रह जाएगा, और वो नहीं रहेगा तो तब जो सत्ता बचती है वही मूल सत्ता। इसलिए हमारा जो अहम है ये अभी, इसका भी जो आलंबन है वही जो है क्या है, वास्तव में शिव रूप है, और वही है अजात। ऐसे अजात को जानने की ऋषि की इच्छा है, इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि इसको जानने के लिए भी वो जो ऋत सत्य है उसका जब तक सहारा नहीं लेंगे तब तक उसे जाना जा सकता नहीं। इसलिए कहा कि वायु तुम ही जो है प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें जो है ऋत हो, तुम्हें जो है सत्य ब्रह्म हो, और ये सब कहते हुए फिर संकेत करते हैं जिस व्यापक शक्ति से, जिस सोम शक्ति को लेकर के चर्चा की थी उसके लिए चर्चा कर दी कि वही क्या करो, तद वक्तारम अवतु है महम अवतु, मेरी भी रक्षा कर और वक्ता की भी रक्षा। अर्थात बगैर इसके जो है विश्लेषण होगा कैसे, बगैर इसके अनुसंधान होगा कैसे, जब तक संशय नहीं होगा, और फिर संशय जब तक होगा नहीं तो मथानी नहीं चलेगी, और मथानी नहीं चलेगी तो रस्सी के बगैर मथानी नहीं चलती, और मथानी नहीं चलेगी तो दही टूटेगा नहीं, और दही टूटेगा नहीं तो मक्खन भी निकलेगा। ये सब प्रक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से प्रश्न होना, संशय होना, संदेह होना, और फिर उन संदेहों का जो है क्या करना, समाधान होना, और फिर समाधान होते हुए जब समाधान और संदेह से भी क्या निकला, का तात्पर्य निकला, और जो तात्पर्य निकला फिर उसको भी संकेत आगे तुलसीदास ने कह दिया, बढ़िया पवित्र मक्खन मिल गया। लेकिन वो कहा मक्खन भी मिल गया, लेकिन ये मक्खन में ही रह गए तो अभी क्या है, तो सड़ांध आ जाएगी, तो क्या करना, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुभा शुभ लाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल, तो उसमें जो आसक्ति आदि छाछ आदि का अंश होता है वो भी जल जाता है, तो वो योग अग्नि, और वो योग अग्नि क्या है, तो आचार्य शंकर की दृष्टि में देखोगे, उपनिषद की दृष्टि में देखोगे तो वहां पर भी उन्होंने यहां सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ की बात कह दी। वहां उन्होंने कहा अप्रोच्छानुभूति के अंतर्गत निराकार तया वृत्तया, पहले क्या करो, जो नाना प्रकार की वृत्तियां हैं उनको पहले हटाओ। कहा उनको हटा देंगे तो शून्य बाद में चले जाएंगे, शून्य हो जाए, कुछ नहीं रहा तो हमारी सत्ता ही नहीं रही, हम लोग घबरा जाते। कहने लगे नहीं नहीं, फिर क्या करो, कहा ब्रह्माकार तया पुनः, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जीवो ब्रह्म विना परा, इसका आधान करो। कहने लगे तो ये भी तो एक अहंकार हो गया। तो फिर कहने लगे वृत्ति विस्मरणम सम्यक, अब इस वृत्ति का भी त्याग, परिपाक होने, और जब त्याग हो गया तब क्या बचेगा, तो कहा समाधिर ज्ञान संगिक, तब ये ज्ञान स्वरूप जो है, प्रकाशक स्वरूप है, वही केवल शेष बचेगा, और वही है वास्तव में समाधि, ऐसा संकेत कर दिया। तो ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर के ही वहां तक पहुंचना है, लेकिन पहुंचने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऋत को ही स्वीकार करना पड़ेगा, नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, हमारे जन्म मरण की जो है रहता भी नहीं हो सकती है। इसलिए यहां पर ऋषि जो है इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि वायो तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, और जो है मैंने तुम क्या हो, ऋतम बदिश्यामी सत्यम बदिश्यामी, तुम ही ऋत हो, तुम ही सत्य हो, और जब तक हमारी श्वास चल रही है और मैं का स्फुरण हो रहा है तभी तक हम सत्य और असत्य का विश्लेषण कर पाते, और ये न हो तो सुसुप्ति अवस्था उदाहरण है ही इसका। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या सत्य है क्या असत्य है ये नहीं, लेकिन उसके द्वारा ये नहीं कि सत्ता समाप्त हो गई, सुसुप्ति में भी तो तुम्हारी सत्ता है, आनंद का अनुभव करती, लेकिन वो भी अज्ञान करते मायक है। तो इसी प्रकार से जहां पर वो अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है, ऐसी जो स्थिति है वही है अजात, और उस अजातता की प्राप्ति के लिए ही सारा प्रयास होता, और रोज प्रयास में जो सफल हो जाता है उसका फिर जन्म ही नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु नहीं होती, और जन्म मृत्यु नहीं होती है तो न तो बाल्या वृद्धा और एवा आदि अवस्थाएं आती हैं, न उसमें कोई आमय आते हैं, सारे दुखों से वो रहित हो जाता है। ऐसा यहां इस उपनिषद का तात्पर्य है, उसी को लेकर के यहां चर्चा की जा रही, अब आगे चर्चा कल करेंगे। ओम।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. ओम नमः शिवाय।
3: श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का छठा मंत्र है। छठा मंत्र का पाठ करिए। अग्निर्यत्राभिमच्छते वायुर्यत्राभिरुज्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। इसी का भाष्य चल रहा था। तो इसमें तीन बातें बताई गई है। इस मंत्र में ख्याल आए, तीन बातें बताई गई है, अग्नि, वायु और सोम। अग्नि से मतलब है वाणी का, तो वाणी को रोक दो। वाणी तीन प्रकार की है, परापश्यंती और वैखरी। परावाणी, पश्यंती वाणी और कोई भी वाणी हो, कोई भी भाग हो, समझे कि नहीं, इसको रोक दो। तो अग्नि शब्द से या अग्नि देवता उपलक्षित वाणी लेना, तो वाणी को रोक दो पहला। दूसरा क्या, वायु अभिमच्छते ही यत्र, और जहां पर वायु माने या प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि का है ना, ये पंचवायु है। तो पंचवायु उपलक्षित या प्राणायाम, यानी प्राण अपान के जो है ना प्राणायाम के चक्कर में मत पड़ो, बाण को रुक दो वहां। और तीसरा सोमो यत्र अतिरिच्यते, सोमरस, जहां पर तुम्हारे मन जो सोमरस पान करके अर्थात आनंद का अनुभव करके शांत हो जाता है, ऐसी जो रस सोमरस है बात, सोम माने चंद्रमा, सोम माने सोमरस, सोम माने आनंद, ये तीनों। जहां मन को आनंद मिलता है वहां ही मन क्या कहते संजायते है। ये तीन बातें आप याद रखना इस मंत्र का ध्यान के लिए। अभी तीन ध्यान कहाँ करोगे ये बात बता रहे हैं। ध्यान कहाँ करोगे, ध्यान की जगह कहाँ है, पहले आपको यहाँ बतलाया था ना, प्राणा भागी नहीं, ध्यान करने के लिए प्राणवंश उत्तरारणिम, स्वदेह मरणिम कृत्वा प्राणवंश उत्तरारणिम, ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवं पश्येत निगूढ़वत। ये भूल गया, देवता का दर्शन करना, आत्मा साक्षात्कार करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्व अपने देह को अरण्य बनाओ, आधा अरण्य, प्राणव को, ओंकार को, आनी बात क्या बनाओगे, ऊपर का अरण्य, उत्तरारण्य। तो उत्तरारण्य या आधारण्य क्या करेगा, इनका मंथन करोगे। तो मंथन करने से जैसे दूध से अथवा दही से घी निकलता, मक्खन निकलता है, समझे कि नहीं, ऐसे प्राण अपान का मंथन करोगे, उत्तरारणी और आधारणी का मंथन करोगे, तो उसमें से क्या निकालेगा, देवम प्राणव तो अरणी हो गया, देवम आत्मानम पश्चित जानियत बिजानियत, आत्मा का जानो, आत्मा को जानो, ये बताया था। निगुड़ कहते छिपा हुआ, जैसे दूध के अंदर, दूध के अंदर अथवा दही के अंदर मक्खन छिपा हुआ है ना, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपा हुआ है, अग्नि कहाँ है, लकड़ी के अंदर छिपी हुई है कि नहीं, तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है, दूध के अंदर जो है ना मक्खन छिपा हुआ है, स्रोत के अंदर जल के अंदर स्रोत के अंदर जल छिपा हुआ है, नमक के अंदर खरापन छिपा हुआ है, अन्य गन्ना के अंदर मीठा छिपा, शक्कर छिपा हुआ है, ऐसी आत्मा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। छिपा हुआ का मतलब समझ में व्यापक है, व्याप्ता है। क्यों? गन्ना को जब जब घिसो चूसोगे नहीं तो मीठा शक्कर नहीं आएगा। हाँ, नमक के अंदर से खारापन कैसे निकलेगा? नमक के अंदर खारापन है, दिखता है? क्यों? नमक के खारापन जानने के लिए रसना इंद्रिया चाहिए, समझोगे नहीं। लकड़ी की अग्नि को जानने के लिए मंथन करना चाहिए, घर्षण करना चाहिए। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए उत्तरारणी और अधरणी के मंथन करोगे। ओम या जो है ना उद्गीत है, ऊर्जस्वर से जोर से बोलो। जोर से बोलने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। ओंकार के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है। हमारे यह कहावत है ना, किसने पूछा था महाराज ये सब मंगलाचरण क्यों किया जाए, शांति पाठ क्यों किया जाए? अरे शांति पाठ नहीं करोगे क्या, अशांति पाठ करोगे क्या? घर में अशांति अशांति, अशांति को दूर करना तो शांति पाठ करना। भद्रम करने भी श्रृणुया मदेव भद्रम वैसे माक्षवीर जत्रा स्थिर रंग सुनो भीर व्यसे मदेव हितम तथा ही मंत्र क्या है? भद्रम करने भी श्रृणुया मदेव। हाँ सुने सुने, क्या सुने? भद्रम श्रृणुया। तो तुम भद्र को सुनोगे नहीं, अच्छा को सुनोगे नहीं, मंगलमय का बात सुनोगे नहीं, अच्छा लगे ऐसी बात सुनोगे नहीं, मधुर वाणी सुनोगे नहीं, वाणी में मधुरता नहीं आएगी तो क्या सुनोगे? इसीलिए मंगलाचरण जो हम लोग करते हैं ना, शांति पाठ करते दस शांति पाठ है। यहाँ तो अभी बंद हो गया ना, पहले होते थे यहाँ भी, शुरू शुरू में शांति पाठ यहाँ पूरा होते थे और धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उस श्रेणी में उस समय का एक ही रह गया, कुशल भाई नहीं सेठी रह गया। कुशल भाई तो बाद में आया। ये उस समय शुरू शुरू से सुशील रुंगटा, सुशील कुमार रुंगटा थे, डॉक्टर मेहना विनोद भाई, विनोद मेहता जी थे। हाँ वो वहां रहता था ना तीर्थ में रहता था। बीमार पड़ा था एक बार, भयंकर बीमार पड़ा था, हम गए थे देखने के लिए। तो रोंगटा था, एक बलसाड़ा था, बलसाड़ा हाँ नहीं बात। ये बैठते थे, ये आते थे, सेठी पूरा रास्ता सही है आज का नहीं। वो हम लोग पावलोवा में थे ना उस समय में, वहाँ कार पार्क में आते थे, कार पार्क आते ना, फिर ईश्वर मैदान, ईश्वर भवन आप यहाँ है, कई जगह में बदला है। बड़ा सत्संग है। और एक और भी कई थे, सरस्वती बहन है, सरस्वती बहन तो भूल गया मैंने। तो कहने का मतलब ये सब जो है ना, पहले शांति पाठ जो है ना होते थे। अभी भी हमारे बिल्ले पाले और घाटकोबर संन्यास आश्रम और उल्लासनगर, इस पर 10 शांति पाठ होते हैं, 10 शांति पाठ। कहने का मतलब बस देखो सहना भव तो सहनो भुनक तो सह भी गया, कितना बढ़िया मंत्र है ये। हाँ क्यों नहीं करेंगे। ये सब जो है ना मंगलाचरण करना चाहिए, वैदिक मंगलाचरण है, क्योंकि सबकी आयु खत्म हो रहा है ना। हाँ वही है। देखो शांति पाठ शांति लाता है, तो चलिए। तो ये तीन जो है ना, तीन बातें इस मंत्र में बतलाया गया ध्यान करने के लिए, याद रखना। हाँ, ध्यान करने के लिए। अभी इसका दूसरा अर्थ भगवान भाष्यकार जो है ना कर रहे थे, द्वितीय ख्याल है कि नहीं। आग्ने जत्र अभिमच्छते इत्यत्र अपरा व्याख्या, पेज नंबर 144 देखना। अपरा व्याख्या आपको मिला नहीं ना? अच्छा, छठा मंत्र का 20 में तो कहते हैं कि भाई इसका दूसरा व्याख्या सुनो भाष्यकर का। अग्नि ही जत्र अभिमच्छते, इसके अंदर अग्नि को अलग कर दिया तो अग्नि का अर्थ परमात्मा कर दिया। अग्नि परमात्मा है, क्यों किया अग्नि का अर्थ परमात्मा? अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव दो है, दायिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति। याद रखना, हर वस्तु का शक्ति स्वभाव अलग अलग है। अग्नि का स्वभाव दायिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति। हाँ, तो दायिका शक्ति पे क्या करेगा? दाह करेगा। दाह करेगा माने जलाएगा, अग्नि दाह करेगा जलाएगा। तो परमात्मा को यहाँ अग्नि बता दिया, तो परमात्मा रूपी जो अग्नि है ये अग्नि किसको जलाएगा? तो कहते हैं कि यहाँ बता दिया अविद्या और तत्कार्य, तत्कार्य से दाहकत्वात्, इसीलिए अग्नि का परमात्मा, अग्नि को परमात्मा कहा। अविद्या, अविद्या का जो कार्य उस कार्य को दाह करता है। तो अविद्या क्या से जाए? अतस्मिन तद बुद्धि, जो वस्तु जैसा नहीं है उसको वैसा बता देना अविद्या का काम है। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिषे पंच क्लेशा, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम। अविद्या क्या से जाए? न विद्यते विद्या जात्र अविद्या, विद्या से भिन्न जो है उसका नाम अविद्या। तो अविद्या का कार्य क्या है? अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ, तो अविद्या सुखे अनित्य असुचि दुख अनात्मा सु नित्य सुशी सुख आत्मख्याति अविद्या। अविद्या क्या से जाए? तो योग दर्शन कहते अनित्य असुशी दुख अनात्मा में नित्य सुशी सुख आत्मख्याति, अन्य में अन्य का अतस्मिन तद्बुद्धि, जो वस्तु जैसा नहीं है उसको वैसा बता देने का नाम अविद्या है। सीधी बात, उल्टा ज्ञान, समझे क्या नहीं? तो अनित्य, अनित्य को अनित्य का नित्य, दुखात्मक संसार को सुखरूप, अपवित्र संसार को शरीर को, ये अपवित्र शब्द शरीर ले लेने का, सारा संसार को मत लेना अभी। अपवित्र शरीर को पवित्र बना देना, बा हमें कितना सुख, स्नान करके आया पवित्र हो गया, पाउडर लगाया तेल लगाया कपड़ा पहना पवित्र हो गया, पहले व्यवहारिक पवित्रता है ठीक है, परंतु श्रुति कहती है अभी देहो देहो नित्य पवित्र है, देह जो है नित्य पवित्र है। क्यों नित्य पवित्र है? तो हम अपवित्र क्यों मानते हैं? आत्मा का संबंध है इसीलिए पवित्र मानते हैं। पवित्र जो है ना, क्यों? नित्य सुख स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा का निवास है, इसीलिए हमको इस शरीर को पवित्र मानते हैं। तो अशुषी को सुशी मानना, अनित्य को नित्य मानना, दुखात्मा को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या का काम है। तो काम है का मतलब जो वस्तु जैसा नहीं उसका ऐसा बतला देने का नाम अविद्या, ये समझ लेने का। तो हमारे शरीर पवित्र है कि अपवित्र है? अरे इसमें तो अस्थि मांस मेद मज्जा बाघ पित्त कप मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तु का थैली है, समुदाय है, तो इसको हमने पवित्र माना, अशुचि को शुचि माना, अनित्य संसार को नित्य माना, दुखात्मक संसार को सुखात्मक माना। तो अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम, तो अविद्या का खेत उत्तर, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये चारों का कारण कौन है? अविद्या है। ऐसी अविद्या और अविद्या के कार्य समुदायों को जला देने के कारण इस आत्मा का नाम अग्नि रखा है। परमात्मा का हो अग्नि का हो बात एक ही है, अग्नि का हो परमात्मा का हो। दागत्वा उक्तम स, कहा भी है, कहा कहा गीता में, अहम अज्ञान अदम तम नाशयामी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भाष्यता, अहम अज्ञान अदम तम नाशयामी आत्मभावस्थ, आत्मभावस्थ आत्मभाव में स्थित होकर के मैं आपको नहीं मिला डॉक्टर साहब को क्या बताइए 135 नंबर नहीं मिला आपको? हाँ ठीक है, क्योंकि पन्ना उलट रहता था देखता अकेला मिला नहीं। हाँ ये तो बात है ना। तो देखो अहम अज्ञान असम तम नाशयामी, अहम नाशयामी मैं नाश करता हूँ, क्या नाश करता हूँ? अज्ञानजम तम अज्ञानात जायतेति अज्ञानज, अज्ञान से पैदा होने वाला, क्या अज्ञान से पैदा होने वाला? अंधकार, तम मानी अंधकार। अहम अज्ञानजम तम नाशयामि, कैसे नाश करते हो दीपक लेकर के? आत्मभावस्थ ज्ञान रूपी दीपक देता हूं। अभी इसमें आया ना, उसमें गीता में ही आया है, अभी से शू दुरासारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसतेश, आगे नहीं, अभी से शू दुरासारो दुरासार आसार दुरासार अन्य बात कैसे आसार है दुरासार, अपिचित यदि तुम दुरासारी हो, अत्याचारी अनासारी व्यभिचारी दुरासारी कोई आसारी बनते ना, वेदांत आसारी न्याय आसारी ये भी तो आसारी आसार वो आसार है ये आसारी है। अपिशेषु दुरासारो भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन करता है, कैसे भजन करता है? तो अनन्य अनन्य मानी न रहते अन्य जस्मिन, जिसमें अन्य नहीं रहता है अर्थात भेद नहीं रहता है। अनन्य चिंतन तो माम द्वि जना परिउपासते तेषाम नित्याभिषुक्ता नाम जुगक्षम वहाम हम, आया कि नहीं गीता में आया है अनन्य। और स्वामी महाराज अखंडानंद जी महाराज जी ने गीता में लिखा, गीता में नहीं ये किस पुस्तक में लिखा है, तो एक बल्लभ आचार्य के आचार्य गया वृंदावन, तो परिक्रमा में गया, तो परिक्रमा के रास्ता में एक महात्मा का एक दिन पड़ाव डाला महात्मा के आश्रम के पास में, तो पूछा कि इस जगह में कोई महात्मा रहते? बोला हाँ महात्मा एक रहते हैं। बोले किधर? दर्शन कर आऊं, चलो। तो महात्मा के दर्शन करने गए, है नहीं बात? आप लोग यात्रा करने जाते हो कभी महात्मा के दर्शन करने जाते हो तीर्थ स्थान में? होता नहीं, कोई नहीं जाता है। हाँ वही जाते होटल में जाते हैं, कौन होटल बढ़िया है कौन दरवाजा बढ़िया है देखते हो, और उसमें अच्छे अच्छे महात्मा जाते हैं ना, तो महात्मा का पहले दर्शन करते हैं तीर्थ स्थान में, पहले महात्मा का दर्शन करो, देव का दर्शन करो, तीर्थ स्थान जल आना गंगा जल जमुना जल नदी आदि का दर्शन करो, ये महात्म होता है। तो दर्शन करने गए उस तक, तो गया था जंगल में गाय के लिए घास लेने के लिए, तो बैठा रहा आया घास का वो गाठरी नीचे उतरा, तो पूछा, आप कौन है, कहां से लेकर आए, कौन है? बोले मैं अनन्या हूं। अनन्या है तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, बोले मैं फनन्या हूं। बोले फनन्या क्या होता है, बोला अनन्या क्या होता है,